0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित एल के पंडित का राग अहिर भैरव में गायन।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को है। आपसे थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने

366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 6:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:27 और 43 सेकंड हुए हैं। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

अभी आप कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा के विचार।

अपनी एक आत्मकथा कही न जाए का कहिए में भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, मनुष्य की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, पाना और खोना। इस पाने और खोने को समर्थ व्यक्ति लेन और देन का नाम देते हैं, लेकिन अपनी विवशताओं और असमर्थताओं से घिरा मैंने इसे हमेशा पाने और खोने के रूप में ही जाना है। इस लेने और देने का सकारात्मक रूप अभिमान है, उस लेने और देने का नकारात्मक रूप कुंठा है। लेकिन पाने और खोने का न कोई सकारात्मक रूप है और न नकारात्मक रूप। मैं अभिमान और कुंठा दोनों से दूर रहा हूँ। इसका प्रथम सुस्पष्ट अनुभव उन्हें मई सन 1942 में हुआ। दरअसल वो इस दौरान अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर राजनाथ गांव से लौट रहे थे। इलाहाबाद में उन्हें कानपुर के लिए गाड़ी बदलनी थी। लंबे सफर की थकान तो थी ही, सेकंड क्लास के जनाना वेटिंग रूम में पत्नी का सामान रखवा कर पत्नी से आराम कर लेने को कहा। खुद अकेले वेटिंग रूम के बाहर बैठे रहे। उधर भोली पत्नी उमा ने अपना ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले और बिना ताला लगाए बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटकर उन्होंने ट्रंक में ताला लगाया और शाम की गाड़ी से दोनों कानपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि ट्रंक से उनके सारे गहने गायब हैं। करीब 150 तोले के गहने थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन जो गया फिर मिलने के लिए नहीं गया था। लिहाजा भगवती बाबू ने स्वीकार कर लिया कि पाने के साथ साथ खोना भी उनके जीवन का अनिवार्य भाग है। इसीलिए वो मानने लगे कि उनके जीवन में कभी किसी तरह की योजना जैसे रही ही नहीं। काल और नियति के हिलकोरों में बहते जाना ही जैसे उनके जीवन का क्रम रहा। अच्छी बात ये थी कि उनमें अपराजित आशावादिता बनी रही। वो घोर संकट को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेते थे और फिर एक नए उत्साह के साथ संघर्षरत हो जाते थे। उनका विचार था कि उनका जीवन नियतिवाद के दर्शन से अनुशासित था। इसका कारण संभवतः उनके बचपन की घटनाएं भी रहीं। एक घटना यूं रही, उनके पिता ने कच्चा मकान रहने के लिए किराए पर लिया था। जब भगवती बाबू महज 2 महीने के थे, एक दिन माँ ने उन्हें कोठरे के फर्श पर लिटा दिया और खुद रसोई में काम करने चली गई। खाना बनाकर जब वो लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेटा सो रहा है और एक नागराज उस पर फन फैलाए बैठे हैं। उनके वहां पहुंचते ही नागराज ने बच्चे को माँ के संरक्षण में छोड़कर विदा ले ली। अब देखिए बचपन की इस घटना को बड़े होकर वो किस तरह देखते हैं। कोई सांप रेंगता हुआ मेरे पास से निकल गया होगा और माता राम ने इस घटना पर रंग चढ़ा दिया होगा। भगवती बाबू ने आत्मकथ्य के एक अध्याय में एक अनोखा प्रयोग किया है। यहाँ वो एक पौराणिक आख्यान को अपनी शैली में सामने रखते हुए अपने समय की एक बड़ी समस्या पर चिंतन करते हैं। कलियुग महोदय तेजी के साथ द्वापर युग को धकेलते हुए बढ़े जा रहे थे। द्वापर के अंतिम सम्राट राजा परीक्षित ने ये तय कर लिया कि कलियुग को आने ही न दिया जाए। बड़े जबरदस्त राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कलियुग को खदेड़ा। अब आगे आगे कलियुग भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए और पीछे पीछे राजा परीक्षित कि हम तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेंगे। अंत में राजा परीक्षित ने कलियुग महोदय को दबोच लिया। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोला, हमें तो आना ही है, विधि का विधान कुछ ऐसा ही है और आकर हमें अंत तक रहना भी है।

0: तो राजन हमें ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम चैन से रहें आपसे बिना संघर्ष किए हुए। बड़ी बुद्धि लड़ाई राजा परीक्षित ने और बुद्धि काम दे गई। बोले तुम स्वर्ण में रहो एव वस्तु कहकर कलयुग महोदय स्वर्ण में प्रविष्ट हो गए। भगवती बाबू के अनुसार ये आख्यान इस संदर्भ में है कि कलयुग स्वर्ण में यानी कि सोने चांदी में जमकर बैठा हुआ है, इसीलिए कलयुग ने वित्त को इतनी महत्ता प्रदान की है।
1: अभी आप कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बालकांड 112।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहों ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: अभी आप रामचरितमानस सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः

0: प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड

0: as thousands of supporters gathered to pay their final farewells. And in the FIFA World Cup, France stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston, USA. The teams were goalless at half-time, but France took control in the second half with Kylian Mbappe scoring in the 60th minute and Ousmane Dembele doubling the lead in the 66th minute. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज आप सुनेंगे कमलकांत चौहान के गाए भजन। तबले पर हैं रितु मिश्रा, सितार पर संगत की है रईस अहमद ने और हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष। आइए सुनते हैं संगीतिका।

अभी आप संगीतिका कार्यक्रम में कमलकांत चौहान के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। उदासियों को अलविदा कहिए, एक नई सुबह का आगाज कीजिए। उदासियों को अलविदा कहिए, एक नई सुबह का आगाज कीजिए। सूरज के इन पहली किरणों के साथ अपने हौसलों को नई उड़ान दीजिए। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, सुबह का ये वक्त कितना खूबसूरत और सुहावना है ना, जब पूरी कायनात एक नई उम्मीद के साथ जागती है। परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवा के झोंके, बारिश की फुहार और साथ में चाय की प्याली से उठता हुआ धुआं, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमसे कह रही हो, उठो, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है, ये वक्त तुम्हारा है।

दोस्तों, सुबह का समय कितना बिजी होता है ना। इधर से ऑफिस, उधर से बच्चों के स्कूल जाने का समय, उनका लंच पैक करना, फिर उनको बस स्टॉप पर छोड़ कर आना, लेडीज की कितनी टफ जॉब है। एक कहावत है कि बच्चे मिट्टी के उस ठेले की तरह होते हैं, जिन्हें जैसा रूप दिया जाए वे वैसे ही ढल जाते हैं। लेकिन इस कच्ची मिट्टी को मुकम्मल और खूबसूरत आकार देने का हुनर किसके पास है? यकीनन एक महिला के पास, एक माँ के पास। इसी पर निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है। बेसन की सौंधी रोटी पर आंचल की छांव, बेसन की सौंधी रोटी पर आंचल की छांव और मिर्च हरी, माँ की गोद में सिमट गई बच्चों की सारी दुनिया ही।

बिल्कुल दोस्तों, सबका ख्याल रखते रखते मम्मी यानी औरत अपना ख्याल रखना भूल ही जाती है। उसका मन कितना अजीब है ना, वो पूरे घर को तो गुड मॉर्निंग कह देती है लेकिन खुद से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहना भूल जाती है। कहते हैं कि औरत से ही घर में रौनक होती है, लेकिन इस रौनक को बनाए रखने के लिए आपका स्वयं अंदर से मुस्कुराना भी तो ज़रूरी है। जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच में स्वयं को भूल जाना भी कोई अच्छी बात तो नहीं। अपने आप से भी प्यार करना सीखिए।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी सभी फ्रेंड्स से यही कहना चाहूंगी कि अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, जिसमें आप एक कप चाय की प्याली सुकून के साथ पीजिए और साथ ही खुद को शाबाश भी दीजिए, क्योंकि आप सारा दिन घर परिवार बच्चे सभी को संभालती हैं।
1: ओके शिवा।

दोस्तों, मौसम भी सुहाना है और साथ में चाय और मौसम का आनंद भी लीजिए हंसते मुस्कुराते हुए। और हमें लिखिएगा ज़रूर कि हम आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। और इसी के साथ अपनी दोस्त अर्चना सचदेवा को गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4थे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

0: है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया।

0: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
1: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमरीका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Naithal and Champawat districts. An orange alert has also been issued for Dehradun, Haridwar, Pauri and Bageshwar district, where heavy rainfall is expected. Other districts of the states are also likely to experience heavy rainfall at isolated places along with lightning and strong winds. In view of the warning, all government and private schools as well as Anganwadi centers have been closed today in Rudraprayag, Tehri, Chamoli, Champawat, Bageshwar, Dehradun, Nainital, Pauri, Uttarkashi and Haridwar district. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: Former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been laid to rest at the Imam Reza Shrine in Mashhad as thousands of supporters gathered to pay their final farewells. His eldest son, Sayyid Mustafa Khamenei, performed the ritual prayers. Ayatollah Ali Khamenei was killed in U.S.-Israeli strikes on the 28th of February this year, triggering a widespread conflict across the West Asia region. In football, France stormed into the semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final clash in Boston, USA. Here is a report.
2: Both the teams were goalless at half-time, but France took control in the second half with Kylian Mbappe scoring in the 60th minute and Ousmane Dembele doubling the lead in the 66th minute. Mbappe became the first player ever to score 20 World Cup goals before the age of 30. With this, France reached a third consecutive World Cup semi-final for the first time in history. Now Spain will face Belgium in the second quarter-final clash tonight. The remaining last eight clashes will see Norway take on England, while defending champions Argentina will face Switzerland on Sunday morning. Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, hosts England defeated India by 9 wickets in the fourth T20 international at the County Ground in Bristol last night. With this, England clinched the 5-match series, taking an unassailable lead of 3-0, giving a major setback to the men in blue who have lost the second consecutive T20 international series. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England. It'll be the first ever women's test to be held at Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. The match comes after India's early exit from the T20 World Cup, providing the team with valuable preparation time. This will be the 16th test meeting between England and India women. England have won only once, while India have 3 victories, while the remaining 11 matches ended in draws. The last test between the two sides in England in June 2021 ended in a draw. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
3: Thank you, Sunil. Prime Minister Narendra Modi's three-nation tour is the top headline in most dailies. India secures landmark uranium deal with Australia, headlines in the Sun Times. Three antiquities from Tamil Nadu dating back to 11th and 12th centuries are to finally come home with Australia, writes the Indian Express. Pakistan-occupied Kashmir is on the boil, with the Joint Awami Action Committee pledging to avenge Pakistani atrocities, reports the Asian Age. India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalise their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a 2-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, "Secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure." Maharashtra government formed 7-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in fourth T20 international to take 3-0 lead in 5-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
5: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
4: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी।
6: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
4: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
5: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
4: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
5: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
4: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार, अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
7: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
4: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
8: ये मीटिंग वाज़े इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटजिक शराकत दारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदामात की भी तायीद की। ये बातचीत सियासी तब्दीलियों के बावजूद सिक्योरिटी और तवानाई के अहम शोबों में मुसलसल और मुस्तहकम तआवुन को यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
4: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है।
9: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
4: न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है जो उम्मीद यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी 2 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
10: ऑकलैंड में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहां आबाद भारतीय अफराद के साथ साथ न्यूजीलैंड के कई लोग भी रिवायती माओरी इस्तकबाल किया ओरा मोदी के साथ उनका खैरमकदम करने के मुंतजिर हैं। न्यूजीलैंड के माली और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर खवातीन नौजवान कारोबारी रहनुमा तालीमी और कम्युनिटी अरकान जनाब मोदी के इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि इससे तिजारत तालीम सरमायाकारी खेलों और सकाफती तबादलों के शोबे में इश्तराक मजीद मुस्तहकम होगा। भारतीय बरादरी के अरकान का कहना है कि तकरीबन 40 साल बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा उनके लिए बड़े फख्र और गहरे जज्बात का लम्हा है। न्यूजीलैंड के लोगों का भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
4: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमबनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे जिसमें गुज़श्ता 2 साल में खासतौर पर तिजारत कॉमर्स और दिफा के शुबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि एक महफूज सरहद खुशहाल सरहदी खत्ता और मुस्तैद मुआशरा मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। नई दिल्ली में सरहदी अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने यह बात कही। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में दरंदाजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए एक मुतहरिक तरीक़ाकार कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत वाली हुकूमत ने सरहद पर बुनियादी ढांचे में साइंसी तौर पर 400% का इजाफा किया है। درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ

0: में उन्होंने ये ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय आईन में सरकार की पॉलिसी से मुतालिक रहनुमा उसूल हर रियासत पर जोर देते हैं कि वो यकसां सिविल कोड के निफास पर गौर करे। ये कमेटी आइंदा 6 माह के अंदर रियासती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के तनाजुर में कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे टी20 बैन अलावामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सुरेश अय्यर ने 49 गेंदों में 80 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मुकाबले को यादगार बनाना चाहेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
1: शुक्रिया अर्जुमंत। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम माहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौक़िफ़ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतल्लिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फ़रोग देने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्राम के आगाज़ की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इतफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 और 16 सेकंड हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सईद अहमद खान का सितार वादन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की है विनोद पाठक ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सईद अहमद खान का सितार वादन सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की थी विनोद पाठक ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी के व्यक्तित्व पर विश्व प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों का प्रभाव। आलेख एवं स्वर अपराजिता श्रीवास्तव।
1: मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने के पीछे दुनिया के महान विचारकों और लेखकों के दर्शन का एक गहरा समुद्र छिपा था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, विश्व के इस महान वैज्ञानिक ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सादगी की अत्यधिक प्रशंसा की। भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में पीड़ित समुदायों की आवाज उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। साथ ही महात्मा गांधी को विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मैंडेला ने प्रेरित किया। गांधी जी कोई जड़ विचारक नहीं थे, वे एक खुले दिमाग वाले खोजी थे। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं अपने घर के चारों ओर दीवारें नहीं चाहता और ना ही अपनी खिड़कियों को बंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से बहे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं था, बल्कि यह दुनिया भर के महान विचारकों और लेखकों के दर्शन का एक अनूठा संगम था। गांधी जी ने स्वयं स्वीकारा था कि उनके विचारों को गढ़ने में पश्चिम और पूर्व के लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए जानते हैं उन वैश्विक महापुरुषों के बारे में जिन्होंने गांधी जी के विचारों को एक आकार दिया। उनमें पहला नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय का। लियो टॉल्स्टॉय का गांधी जी पर सबसे गहरा प्रभाव था, शायद इसलिए गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जिसका हिंदी में अर्थ है ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इस पुस्तक ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। टॉल्स्टॉय से अहिंसा और प्रेम का सार्वभौमिक सिद्धांत आया। इस पुस्तक ने गांधी जी के मन से हिंसा के प्रति संशय को मिटा दिया और उन्हें अहिंसा के सिद्धांत पर अटूट विश्वास दिलाया। टॉल्स्टॉय के प्रेम के सिद्धांत और शारीरिक श्रम की अवधारणा ने गांधी जी के आश्रम जीवन की नींव रखी। और ऐसे ही जॉन रस्किन की एक छोटी सी किताब अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। गांधी जी ने इस पुस्तक को अपनी यात्रा के दौरान पढ़ा और इसी से सर्वोदय यानी सभी के उदय का सिद्धांत निकाला। रस्किन से शारीरिक श्रम का सम्मान और सर्वोदय का पाठ सीखा। उन्होंने इस पुस्तक से सीखा कि एक वकील के काम की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक बाल काटने वाले की। गांधी जी को ये समझ आ गया था कि व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में ही निहित है और इस प्रेरणा के पीछे थे हेनरी डेविड थोरो। थोरो एक अमेरिकी निबंधकार थे। थोरो ने गांधी जी को वह हथियार दिया जिसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया। थोरो से उन्होंने सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपनाई। उनके निबंध सिविल डिसोबीडियंस से गांधी जी को करबंदी और अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ने की प्रेरणा मिली। थोरो के सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन ने भी गांधी जी को काफी प्रेरित किया। कई विदेशी लेखकों से प्रभावित होने के बावजूद गांधी जी को उनके आध्यात्मिक संकटों में मार्गदर्शन करने वाले कोई विदेशी नहीं बल्कि जैन दर्शनीय श्रीमद् राजचंद्र थे। राजचंद्र जी ने गांधी जी को भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मसंयम की गहराई से परिचित कराया। शायद इसलिए गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। गांधी जी का व्यक्तित्व सिर्फ लेखकों तक सीमित नहीं था, उन्होंने विभिन्न धर्मों के सार को भी अपनाया, जिनमें पहला नाम है भगवद्गीता। इसे वह अपना आध्यात्मिक शब्दकोश स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहते थे। निष्काम कर्म का पाठ उन्होंने यही

0: से सीखा। इनमें दूसरा नाम शामिल है बाइबल का। ईसा मसीह के पर्वतीय उपदेशों ने उनके अहिंसा और बुराई का जवाब भलाई से देने के विचार को पुख्ता किया। गांधी जी का अपना साहित्य इतना प्रभावी और प्रेरणादायक था कि दुनिया के कई जाने माने लेखकों ने उनके विचारों को अपनी रचनाओं में जगह दी। राजा राव, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार राजा राव की प्रसिद्ध कृति कंथापुरा गांधीवादी दर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित थी। मुल्क राज आनंद अपनी यथार्थवादी रचनाओं के लिए जाने जाने वाले लेखक मुल्क राज आनंद के उपन्यासों में गांधी जी की अहिंसा और सामाजिक न्याय की विचारधारा का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी जी ने इन सभी विचारों को केवल पढ़ा नहीं बल्कि अपने जीवन की प्रयोगशाला में भी इनका प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एक ऐसी विचारधारा है जिसने समय और भौगोलिक सीमाओं को पार करके वैश्विक समाज को शांति और मानवता का रास्ता दिखाया। उनकी सादगी और विचारों की मजबूती आज भी दुनिया भर के लेखकों और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। गांधी जी ने इन विदेशी और भारतीय विचारों को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन की प्रयोगशाला में भी आजमाया। उन्होंने टॉल्स्टॉय से प्रेम लिया, रस्किन से सम्मान्यता ली, थोरो से विद्रोह की कला सीखी और गीता से कर्तव्य का मार्ग चुना।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी के व्यक्तित्व पर विश्व प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों का प्रभाव। आलेख एवं स्वर अपराजिता श्रीवास्तव।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

ते रत्ना परजाई ने लाड़े दी अख च सुरमा पाया ते नेग भी लिता। ओदी वाटी सरला ते रत्ना परजाई ए दोनों दी भी चंगी दोस्ती हो गई। हुण उन्हां उत्ते अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी वध गई। कल तक खेतां विच दौड़ लाण वाले हीर रांझा गाण वाले मुंडे हुण किसी दे पति सीगे, अपने बच्चियां दे प्यो सीगे। गुरबचन दे वेड़े च धी दी किलकारी पहले गूंजी। रजो दे जन्म दे एक साल बाद रंजीत दे घर भी पुत्तर दा जन्म होया। बाद विच रंजीत दे एक पुत्तर होर होया।

उन्हें खेतों में पसीना वगाया तो जमीन ने भी हमेशा सोना उगलिया। अपनी मेहनत की कमाई नाल उन्हें एक कोठी बनवाई। पिंड विच सब तो वड्डा मकान सी, इसलिए उसका नाम वड्डी कोठी पै गया। वड्डी कोठी दे वेड़े खेलदे रंजीत दे दोनों पुत्र वड्डे हो गए। गुरबचन की रज्जो भी अपने घर सियाणी हो गई। गुरबचन का काम भी बहुत चंगा चलता सी। ईमानदारी तो उसकी रगां विच खून दे नाल नाल वगदी सी। रब की बहुत मेहर सी उसके घर। मौसम आंदे जांदे रहे। दोनों दोस्त हुण पक्की उम्र वाले हो गए सीगे। गुरबचन ने रज्जो ब्याह दित्ती। रणजीत सिंह दे भी दोनों पुत्रां दा व्याह हो गया। पर पुत्रां दे व्याह तो बाद रणजीत सिंह दा घर उदां दा नहीं रहा। नूआं घर आईआं ते दोनों ने अपने अपने घर वालियां दे इर्द गिर्द दायरे बनाने शुरू कर दिते। पुत्र भी खुशी खुशी उन्हां दे नाल ही लग ले। रणजीत दे घर रिश्तेदारियां विच दरारां पैन लगियां। यह सारिया गल्लां रणजीत किन्ने ही दफा अपने दोस्त गुरबचन नूं दस चुका सीगा। ओ यारा, घर विच चार बर्तन होण ना ते खट्टर पट्टर ते चलदी रहिंदी है, तू जी ना छोटा करिया कर यारा, कह के गुरबचन दोस्त नूं दिलासा दिंदा रहा। पर गुरबचना, इस खट्टर पट्टर नाल मेरे घर की नींव हलन लग गई है। रतना दोनों नूहां दे नखरे चुक चुक के थक गई है। दोनों भरा एक दूजे नाल खार खांदे ने। पता नहीं की हो गया उन्हां नूं, मेरे घर नूं खौरे किहदी नज़र लग गई। दोनों ही अपनी अपनी वोटियां नूं चंगा मनदे हन। हर दूजे दिन भरावां विच लड़ाई हुंदी है, गाली गलौज हुंदी है। मेरा घर कलह दा अड्डा बन गया हैगा। गुरबचन नूं अपने दोस्त दे दुख दा बहुत दुख सीगा। उहदी अपनी धी रज्जो ते विआह के ससुराल विच सीगी ते उहनूं परिवार दे इस तरां दे झंझटां दा कुछ ना पता सी। पर रणजीत दे घर दे झगड़े उहदे दिल नूं बड़ा बेचैन कर दिंदे सीगे। सारा दिन निकल गया। बाऊ जी, मेरे लिए होर कुछ काम है, नहीं तो मैं छुट्टी कर लवां। बबलू की आवाज़ सुन के गुरबचन ख्यालों तो बाहर निकलिया। बबलू उहदी दुकान ते काम करता सी। कोठी समान भेजना सी, कढ़ना सीगा, पर कुछ सोच के उन्हें कह दिता, अज माल मैं आपे कढ़ांगा, तुसी बस पहुँचा आना बबलू जी। फिर उस तो बाद रणजीत ने सारा समान आप कढ़िया। आखिर उहदे यार दे घर जाना सी। सीमेंट, रेता, बजरी, इट्टां, सरिया सब इकट्ठा कर लिया। फिर बबलू दे हाथ सब कुछ भिजवा दिता कोठी ते। शाम नूं गुरबचन घर आया ते सरला ने चाह बनाई। चाह दे नालो भुन्ने चने, घर दियां तलियां फुलबड़ियां सब कुछ ले आई। थोड़ी देर बाद वेख्या घर वाले ने किसे चीज़ नूं हथ भी ना सी लाया। चाह भी ठंडी हो गई सी। की गल है जी, कुछ थक्यो लग रहे हैगे हो, सब चंगा है ना, सरला ने पुछया सीगा। गुरबचन ने घरवाली नाल एक नज़र चुक के देखिया, फिर अपनी अखां नीवियां कर लईयां। हौली जी बोलिया, कुछ चंगा नहीं है पागवाने, कुछ चंगा नहीं है। अज तेरे घर वाले का ईमान खराब हो गया। जिंदगी विच पहली बार तेरे घर वाले ने बेईमानी की अपने सौदे विच, ते वह भी अपने जिगरी दोस्त दे नाल। तुसी होर बेईमानी मैं नहीं मनदी, ऐदा कदी नहीं हो सकता। यह ओनी अटल गल है जिवें कि ध्रुव तारा। सरला दे मन का पूरा विश्वास उहदी गल्लां झलक रहा सीगा। गुरबचन थकी जी वाच बोलिया, ओ नहीं सरला, अज मैं सचमुच सीमेंट विच रेता मिलाया है, इट्टां मैं कच्चियां भेजियां ने, सरिया मैं पुराना भेजिया है अपने यार दे घर। वाहेगुरु, मैनू इस बदनीयती ते बेईमानी लई माफ करी वाहेगुरु। सरला दियां अखां फैल गईयां। पर क्यों किता तुसी? ईमानदारी दा सौदा करन दा वचन तुसी तोड़ दिता? मिलावट वाला घटिया समान भेजिया, वह भी रणजीत भराजी दे घर, ते होर फिर मैं की करदा सरला? अज मेरे यार दा घर बन नहीं रहा, टुट रहा है। खरा माल मैं किद्दां दे दिंदा सरला? ओए, अज उस दे वेड़े दवार खड़ी हो रही है। दोनों पुत्र घर दा बंडवारा कर रहे ने। दोनों नूआं दी आए दिन लड़ाई हुंदी है। पुत्र एक दूजे दे वैरी हो गए ने सरला। रोज़ रोज़ दे क्लेश तो तंग आके रणजीत ने कह दिता, अलग हो जाओ पुत्रो, वंड लो तुसी घर नूं। रत्ना भरजाई नूं जिवें सदमा पै गया है। रिश्तियां दी नींव नूं आखर बैर दी दीमक झट गई है। सरला, ऐ दवार है ना, ऐ मेरे दोस्त ते मेरे भरजाई दे दिल नूं चीर के रख देगी। ऐस मनहूस दीवार नूं पक्का बनाने लई मैं खालिस समान किंज दे सकदा सीगा। रब करे ऐ दवार इन्नी कच्ची

0: ने इन्नी कच्ची बने कि चार दिन ना चले, पहली बारिश ही टह जावे। मैं इन्ना ही कर सकिया अपने यार दे वास्ते। रब्बा मैनू माफ़ करी, यारा तू भी मैनू माफ़ करी, कह के गुरबचन ने एक ठंडी सा छड़ दिती। ओदी अखां तो बह बह के हंजू गलना ते वग आए सी। ओदे हाथ फुलबड़ियां नू छोटे छोटे टुकड़ियां विच इस तरह तोड़ रहे सीगे जिवें ओ किसे कच्ची दीवार नू तोड़ रहे होन। अज बेईमानी दे सौदे विच रिश्तियां दे लई किन्नी इमानदारी सीगी।
1: हुणे असी सुन रहे सी उमंग सरीन तो कहानी जिसका सिरलेख सी बेईमानी। आओ हुण सुनदे हां पंजाबी फिल्म संगीत। सब तो पहला शमशाद बेगम दी आवाज विच गीत फिल्म यमला जट तो। इस गीत नू लिखा है अते संगीत नाल शिंगारिया है वर्मा मलिक ने। लम्मा लम्मा बाजरे दा सिट्टा, आओ सुनदे हां ए गीत।

एहसान शमशाद बेगम ते फिल्म यमला जट। प्रोग्राम दी अगली पेशकश आशा भोसले दी आवाज विच, फिल्म दा नां तेरी मेरी इक जिंदड़ी, शब्द रचना इंद्रजीत हसनपुरी दी ए अते संगीत एस मोहिंदर दा।

एसन आशा पोंसले। लो हुन पेश है फिल्म निम्मो दा गीत सुरेश वाडकर अते सलमा आगा दियां आवाजां विच। शब्द रचना बल्ला राम मस्त दी अते संगीत कमल कांत दा। एक तू होवे एक मैं होवां एक चरखे दी होवे गुज मित्रा।

गीत असी सुनिया सुरेश वाडकर अते सलमा आगा दियां आवाजां विच। इस नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक दा समा हुण खत्म हुंदा है। असी उम्मीद करदे हां तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम पसंद आया होवेगा। हुण रविंदर नूं इजाजत दिओ।

0: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र

0: विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi, along with Australian Prime Minister Anthony Albanese, visited the iconic Melbourne Cricket Ground today. The visit highlights the growing role of sports diplomacy in India-Australia relations. The discussions between both the leaders focused on cricket cooperation, sports infrastructure, athlete development, knowledge sharing, the IPL-BBL partnership and collaboration ahead of major global sporting events, including the 2032 Brisbane Olympics and India's 2036 Olympic bid.
1: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है सुबह के ठीक 10:10 और पूरे 17 सेकेंड्स, और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: Hey girls, hey, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी हाँ, आरबीआई की माने और अपने पैसों को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ हमारे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें यहाँ से प्रसारित किए जा रहे खूबसूरत गीत और खूबसूरत कार्यक्रम। फिलहाल आप सभी जुड़े हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ और आज बहुत ही खूबसूरत बातों को लेकर आई हूँ मैं और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक भी है आज आप सभी के लिए। आई होप आप सभी उस टॉपिक से जुड़ेंगे और अपने जो संदेश हैं उस टॉपिक से रिलेवेंट वो मुझे भेजेंगे और संदेश भेजने का तरीका तो आप सभी को पहले से ही पता है लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है आपको बताने का, अवगत कराने का कि आप किस तरीके से अपने संदेशों को हम तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने संदेश हमें ईमेल आईडी हमारी जो है इंद्रप्रस्थ रेडियो दिल्ली iprediodelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ और साथ ही साथ बात भी कर सकते हैं हमसे।

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई फिरकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो।

बताइए कहानी कैसी लगी आपको। आई होप आपको इस कहानी को सुनकर मजा आया होगा और आई एम श्योर कि आप अपने बचपन में भी वापस जा चुके होंगे, उन यादों में जा चुके होंगे। जी हाँ, पहले के समय में जब मोबाइल, टीवी और इंटरनेट नहीं होते थे ना दोस्तों, तब दादा दादी और नाना नानी बच्चों को रात में सुलाने के लिए कुछ लोक कथाएं, कुछ कहानियां, परियों की कहानियां, कुछ तिलस्मी कहानियां है ना, और कुछ ऐसी कहानियां जो हमेशा हमें सीख देती थी, ऐसी कहानियां सुनाते थे। इनमें कल्पना भी होती थी और जीवन की सीख भी होती थी। तो बस

आज हम आपसे ना कुछ ऐसे ही टॉपिक पर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कभी आपकी दादी नानी ने बचपन में कहानी तो सुनाई होगी ना, और उस कहानी को सुनकर आपको सीख भी मिली होगी, और कुछ ऐसी भी कहानियाँ होंगी जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते होंगे। तो बस बताइए, ऐसी ही कहानियाँ जो आपने अपनी बचपन में अपनी दादी और नानी से सुनी होंगी, जो आपको अभी तक याद है और जिसे सुनकर आज भी आप अपने बचपन में लौट जाते हैं, खो जाते हैं उस यादों में। और साथ ही एक प्रश्न भी है आपसे कि क्या आपने कभी वो कहानियाँ अपने बच्चों को भी सुनाई हैं। तो बस ये दो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें हैं जो आपको अपने बचपन में ले जाएंगी और आपके नन्हे मुन्नों का बचपन भी संवार देंगी, क्योंकि ये जो कहानियाँ हम सुनते हैं ना दोस्तों, उनसे हमें बहुत सीख मिलती है, मोरल मिलती है। और ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी भेजिए अपने संदेश हमें। वैसे तो संदेश हमें मिलने शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप ना रेलिवेंट जो मेल है वो हमें भेजेंगे। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, प्रश्न मैंने आपको बता दिया, फटाफट से अपने संदेश हमें भेजिए और सुनिए और साथ ही जुड़िए हमसे इस कार्यक्रम में।

संदेश बहुत सारे मिल रहे हैं, संदेशों की शुरुआत करते हैं लेने की। सबसे पहले मैं संदेश मिला है मधु किरण जी का। ये कहती है, मेरी दादी ये कहानी सुनाती थी कि वे कहती थी एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये पता है मैंने भी बहुत बार सुनी ये वाली कहानी। यही सुनते थे, और जब भी दादी नानी हमें सुनाती थी तो बस कहते थे ना, जरा सी अपनी आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए अपने बचपन में लौट जाइए। गर्मी की छुट्टियां हो, घर की छत या आंगन चारपाई बिछी हुई हो, ऊपर टिमटिमाते हुए तारे हो और पास में बैठी आपकी दादी नानी हो, और बस वो यही कहती थी कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। हम क्या साउंड करते थे, हमें क्या सुनाई देता था कि दोनों मर गए, खत्म कहानी। बल्कि जबकि असली जो शब्द थे वो थे कि दोनों मिल गए, खत्म कहानी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग होती थी राजा रानी के मिलने से। बस हमारी सारी शरारतें इस कहानी को सुनने के बाद वही खत्म हो जाती थी और हम कहानी की दुनिया में खो जाते थे। बट क्या करें, आज के जो बच्चे हैं

के पास मोबाइल है, कार्टून्स है, वीडियो है, सोशल मीडिया है, लेकिन शायद वो सुकून नहीं जो दादी नानी की आवाज में सुनी इन कहानियों में हमें मिलता था। ये लिख कहाँ से रहे हैं? ये लिख रहे हैं हमें दिल्ली से ही इन्होंने हमें लिखा है। और बस इन्होंने एक छोटी से शब्द में, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए खत्म कहानी में, इन्होंने अपनी पूरी जो मेल है वो सिमेट दी है। तो थोड़ा सा और कुछ एलैबोरेट करें, कुछ और बताएं। बहुत अच्छा अच्छा सा सुना होगा सभी ने, तो आई होप आप सभी ने कहानियां तो सुनी होंगी, तो उन्हें जल्दी जल्दी हमें भेजिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है उत्तम सिंह जंघेल जी का, और ये लिखते कहाँ से हैं, कोहका भिलाई। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल साथ में हैं। धमधमा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, औशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। ये कहते हैं कि अर्चना जी, हम भी बचपन में कहानियाँ सुने हैं, इन्होंने भी कहानियाँ सुनी है, कहने का मतलब है, और आज भी हम अपने नाती को बंदर नदी में नहाने वाले कहानी सुनाते हैं। जब कहानी शुरू करते हैं तो मोबाइल को छोड़ देते हैं और कहानी सुनते सुनते खुद कहानी कहने लगता है। 2.5 साल का है हमारा नाती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखा, मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, शुरुआत में, कि क्या आप अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो कहानियाँ सुनाते हैं जो आपने अपने बचपन में अपनी दादी और नानी से सुनी थी। एक एग्जाम्पल तो हमें भेज दिया है जंघेल साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चे सीखते हैं, मोबाइल से दूर होते हैं और साथ में आपके मिलकर उस कहानी को कहने भी लगते हैं। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत संदेश के लिए।

चलिए अगला संदेश लेते हैं सतीश अनेजा जी का। ये कहते हैं, नमस्कार, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका भी हमारे आपके अपने खुद के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बचपन को कैसे भुलाया जाता है अर्चना जी? जब छोटे थे तो बच्चों की आंखों में सुरमा डाला जाता था, जब आनाकानी करते थे तो दादी ऐसे ही बनावटी राजा रानी की कहानी सुनाकर सुरमा डाल देती थी। हम कहानी में मस्त हो जाते थे और हिलते नहीं, और दादी का काम अपना, दादी जो है वो अपना काम कर जाती थी। वो सुनाई कहानियाँ अब भी याद आ जाती है। बिल्कुल, बस आज का वो जो दिन है ना, वो मैंने यही मतलब करने के लिए आपके साथ आज जुड़ी हूँ मैं, कि आपको आपके बचपन में ले जाऊँ और आपको आपकी दादी नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों को एक बार से रिकॉल करें।

अगला संदेश हमें मिल रहा है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, और ये लिखते हैं कहाँ से, स्टेशन रोड जमशेदपुर से लिखते हैं, साथ में एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया हैं इनके साथ। ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल एंड ऑलवेज बी हैप्पी, आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं कि मैंने अपने नानी दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और मैंने अपने बच्चों को भी सुनाई है, अब बच्चे कहते हैं फिर सुनाओ, हमें अच्छा लगता है। देखा कितनी अच्छी बात है ना, आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और वो वापस से उन्हें सुनने की डिमांड करते हैं। तो सोचिए ज़रा, उन कहाँ वो जो कहानियाँ हैं उनके जहन में उसी तरीके से अपनी यादें बना लेंगे जिस तरीके से आपके जहन में वो यादें बनी हुई हैं, और आज भी आप उन कहानियों को बाय हार्ट याद रखते हैं और अपने बच्चों को सुनाते हैं। थैंक यू सो मच ये संदेश हम तक पहुँचाने के लिए।

0: अगला संदेश लेते हैं गुलाबदास मानिकपुरी जी का। ये लिखते हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, साथ में है राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ये कहते हैं, हमने बचपन में दादी जी की जुबान से एक बंदर और लोमड़ी की कहानी सुनी थी जो आपस में मित्र हुआ करते थे, लेकिन समय आने पर लोमड़ी ने बेवफाई कर दी जो नहीं करनी थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मित्र के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। ये कहानी आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अभी तक आपके जहन में ताज़ा होगी। जैसे मेरे भी है, मतलब एक जैसे खरगोश और कछुए की थी, और बंदर और मगरमच्छ की थी, चूहे और शेर की थी, प्यासे कौवे की थी, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम ढूंढेंगे ना, अपने दिमाग में टटोलेंगे ना, बहुत सारी निकल निकल कर आएंगी। बस वही कहानियाँ हम तक पहुँचाइए, जल्दी जल्दी पहुँचाइए कौन कौन सी कहानियाँ सुनी, और क्या आप आज अपने बच्चों को भी सुनाना पसंद करते हैं वो कहानियाँ जो आपने अपनी दादी नानी से सुनी थी।
1: क्यों कौन सी थी हो इनको भला है दिल।

अगला संदेश रोशन दिवांगन जी का मिल रहा है। ये कहते हैं कि हम अपने नाती प्रियांश पोती भव्या को हाथी का किस्सा सुनाते हैं। एक मोटा हाथी घूमने चला। ये तो रीसेंट की है, राइम है ना, ये अभी रीसेंट की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। बहुत ज़्यादा पुरानी जो कहानी आपने बचपन में आपने सुनी है उसे शेयर कीजिए साथ में। आपके कौशल्य देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से आप लिख रहे हैं हमें। जल्दी जल्दी भेजिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं, निकालिए उन्हें फटाफट से।

आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही है हमारे इस कार्यक्रम में। बात चल रही है दादी नानी की कहानियों की जो हमने अपने ज़माने में सुनी थी, और बात हो रही है यहाँ पे कि क्या आप आज के दौर में अपने उन बच्चों को, छोटे बच्चों को वो कहानियाँ सुनाना पसंद करते हैं, सुनाते हैं, और अगर सुनाते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, अगर ये भी बता देंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। संदेश मिल रहा है हमें बोधराज खोरवाल जी का। ये कहते हैं, बचपन में हमने कहानियाँ बहुत सुनी हैं, वो भी अपने मामा जी से। वो बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, पर अफसोस ये कि अब वो एक भी कहानी याद नहीं है। लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश खोरवाल। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त, याद नहीं है कहानी? एक तो याद होगी, जल्दी से भेज दीजिए बहुत सारी। अगर मामा जी ने आपको कहानियाँ सुनाई, आई एम श्योर डैम श्योर कि आपको ज़रूर याद होंगी, तो जल्दी से बता दीजिए।

0: अगला संदेश हमें मिल रहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टिगड़ी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शंभूचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ये कहते हैं कि अक्सर ऐसी कहानियां होती थी जिनमें राजा किसी मुसीबत में फंस जाता था और एक बुद्धिमान मंत्री जैसे बीरबल या फिर तेनालीरामन अपनी चतुराई से उन्हें बचाता था। बिल्कुल ये कहानियां भी बहुत इंस्पिरेशनल होती थी, बहुत आपको इंस्पायर करती थी कि किस तरीके से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते करके किस तरीके से उस मुसीबत से निकल सकते हैं।
1: और करूं क्या, मेरे सर पे ठंडा पानी डालो, मैं चला गड़बड़ हो गई, अरे से टी बज गई।
0: चरण बिंदल जी का हमें संदेश मिल रहा है, ये कहते हैं हमारे समय में भूत प्रेत की कहानी सुनते थे इसलिए सुनसान मकान के आगे गुजरते हुए डरते थे। राजू अग्रवाल, चरणदास, रेखा चौधरी बस हिसार से ये हमें लिख रहे हैं। वाकई में उस वक्त ना ये भूतों वाली कहानियां सुनने का भी एक क्रेज था और इसे सुनकर ना वाकई में लगता था कि भूत हमारे आसपास में है। तो भाई साहब, किसी खाली मकान, किसी खाली जगह से, दुकान के आगे से नहीं निकलना है, नहीं तो भूत आके आपको पकड़ लेगा। ऐसा जो फील है ना, वो आता था इन कहानियों को सुनकर।

अगला संदेश हमें मिल रहा है हमारे रेगुलर लिसनर मोहम्मद सईद अब्बासी जी की तरफ से। ये कहते हैं कि हमें तो एक ही कहानी याद है जो हमें दादी सुनाया करती थी। चांद में बुढ़िया चरखा काट रही है और हमने बच्चों को फिल्म मिस्टर नटवरलाल की कहानी सुना सुना कर बड़ा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और अगर आपने ये कहानी सुनाकर अपने बच्चों को बड़ा किया है तो वाकई में आपको अपनी दादी नानी की कहानियाँ जो है ना वो जहन में अभी भी ताज़ा हैं। तो बस इस बात को ना यूँ ही कंटिन्यू रखें, उन्हें बताते रहिए। आपके साथ में आप लिख रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर से, साथ में निघत शहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य आपके साथ लिख रहे हैं हमें संदेश।

हीरामन शिंदे जी का हमें संदेश मिल रहा है। ये कहते हैं, बचपन से मुझे मेरी दादी कहानी सुनाती थी। कहानी सुनते सुनते मैं सुनते सो जाता था, दादी फिर मुझे जगाती थी, फिर सो जाता था। एक दिन परी की कहानी सुनाई तो मैं सपनों में ही खो गया। वाकई में पता है, उन जब वो दादी नानी हमारी कहानी हमें सुनाती थी ना, वाकई में हमें ऐसा लगता था कि हम उन परियों के देश में, उन राजा महाराजों के देश में है और खूब मज़े कर रहे हैं। आप हमें लिख रहे हैं किशोर नगर अमरावती, हीरामन शिंदे और सिद्धार्थ गुंडाने ने हमें ये संदेश भेजा है। वाकई में आपकी बात सुन के तो मैं भी परियों के देश में शायद चली जाऊँ।

अगला संदेश हमें मिल रहा है शीशपाल वर्धन जी का। ये कहते हैं, जी मैंने नानी तो नहीं देखी, दादी ने कभी भी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन मेरी माँ ने खूब कहानी सुनाई है गजब से। शीशपाल अकेला ये हमें संदेश लिख रहे हैं। वाकई में जरूरी नहीं है कि सिर्फ दादी और नानी ही सुनाए कहानी, कहानी तो कोई भी सुना सकता है। और जो बच्चों के मन को जानता है, उन्हें पता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, संभाला जा सकता है, वो कहानी आप सुनाकर उन बच्चों को सिखा सकते हैं और सुना सकते हैं, उन्हें अपनी ओर कर सकते हैं और उनका दिल बहला सकते हैं। वाकई में माँ से बढ़कर अच्छी कहानी शायद ही कोई सुना सकता हो, लेकिन दादी और नानी जो होती है ना, वो माँ और पापा के भी मम्मा होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कहानी सुनाती है। लेकिन अगर किसी की नहीं है या अगर कोई नहीं सुन पाया है तो नेवर माइंड, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिसने भी आपको कहानी सुनाई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुनाई होगी आई होप, और वो कहानी आपको याद तो होगी, बस उस कहानी को हमारे साथ शेयर कर दीजिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है तुलसी मस्किन जी का, ये कहते हैं अर्चना जी गुड मॉर्निंग, मैडम जी हम भी रेगुलर कनेक्ट हैं और आज के टॉपिक पर इतनी सुंदर नाना नानी और दादा दादी की दादा की सुनाई कहानी पर सुंदर कहानी भेजी है, कोई रिस्पांस नहीं, ऐसा क्यों, प्लीज़ मेरी कहानी खोज कर पढ़ें, थैंक्स नाइस सॉन्ग। आप इसी के साथ अटैच कर दे तो शायद अब मैं उसको पढ़ पाती, बट कोई नहीं, अगर मैं मेरे को मिलती है तो मैं ज़रूर उसको इस शो में शामिल करूँगी। आई होप अगर नहीं भी मिलती तो एक बार और फिर से आप हमें संदेश भेज सकते हैं। आप लिख रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव रिधान खुराना।

अगला संदेश हमें मिल रहा है अनिल जैन जी का, ये लिखते हैं कहाँ से, मलियाना सरथना मेरठ से ये हमें लिख रहे हैं। ये कहते हैं कैसे हैं आप, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आप क्या, आई होप आप भी बढ़िया होंगे। ये कहते हैं दी बचपन में हमें कहानी हमारी भूत सुनाती थी, भूतों वाली परियों वाली, ये समझ नहीं आया क्या लिखा आपने, बट जो भी सुनाते थे कहानी आपको भूतों वाली सुनाते थे, आपको शायद इंटरेस्ट उसमें होगा, क्योंकि पता है बच्चों का इंटरेस्ट बहुत बहुत बहुत सारी चीज़ों में होता है, और ख़ासकर उन चीज़ों में जिन्हें उन्हें जानने के लिए सख्त मनाही होती है कि उन्हें नहीं जानना इसके बारे में, उसको नहीं बात करनी है इस टॉपिक पर, तो वो बच्चे जो होते हैं ना उसी टॉपिक पर बात करते हैं और उसके बारे में खोजबीन करते हैं। आई होप आपको भूतों में शायद इंटरेस्ट रहा होगा, तो आपको भूतों वाली कहानियाँ भी बेहद पसंद आई होंगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी भूतों वाली कहानियाँ, बट एक टाइम के बाद ना डर लगने लगता था। आई होप आपको भी डर लगता होगा, क्योंकि बचपन में तो डर लगता ही है ना।

चलिए हमारे एक बर्थडे बॉय का जो है ना संदेश हमें मिला है, जिनका आज बर्थडे है और वो चाहते हैं कि आप सभी श्रोताओं के साथ और हमारे आकाशवाणी के परिवार के साथ उनके इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। और इनका संदेश हम पहले ले चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एक बार और हमारा जो संदेश है अपने कार्यक्रम में शामिल करें ताकि इनके इस बर्थडे को कुछ स्पेशल बनाया जाए। जी हाँ, ये है हमारे रेगुलर

अगला संदेश हमें मिल रहा है डीकेपी परिहार जी का। ये कहते हैं, आपकी पसंद आदरणीय मैडम अर्चना जी को नमस्कार, बेहतरीन विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं और आप हमें बचपन में ले गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्त, हमने नानी को नहीं देखा, परंतु नाना जी और दादी हमें बहुत प्यार करते थे और अच्छी अच्छी कहानियां और किस्से सुनाते थे। हम भी अपनी पोती भांजे को कहानियां सुनाते हैं। शिक्षाप्रद और संस्कृति संस्कार की कहानियां सुनानी चाहिए। वो दौर आज भी याद आता है। वाकई में वो दौर बहुत खूबसूरत था दोस्त। अगर आप उस दौर के हैं और आपने दादी नानी की कहानियां सुनी हैं, तो वाकई में वो दौर बहुत खूबसूरत है और अनफॉरगेटेबल है। ये वैसे आज भी होता है, आज भी दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करती है इंस्टेड ऑफ दादी नानी की कहानियां सुनने में। आप लिख रहे हैं हमें भोपालगढ़ राजस्थान से, साथ में कपिल छीपा, धर्मेंद्र छीपा और पूजा परिहार।

अगला संदेश हमें मिल रहा है नीतू मल्होत्रा जी का, साथ में है इनके नरेश लक्ष्य लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद। ये कहते हैं कि जान पहचान वाले सभी लोगों का शामिल कर लेते हैं संदेश, गैरों को छोड़ देते हैं। दीदी जी बाकी आपकी मर्जी है। अरे सर, मैंने कितनी बार नोटिस किया है कि आप हमेशा हमें यही वाला मेल कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं। अगर आप सुने ना ध्यान से हम क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आई होप आप उस कार्यक्रम को इंजॉय कर सकेंगे और उससे अपने आप को कनेक्ट भी कर सकेंगे। आप प्लीज़ उससे रिलेवेंट कोई भी जो है आप कुछ भी हमें भेज सकते हैं, संदेश उससे भेज सकते हैं, मिलता जुलता आप हमें भेजिए। सिर्फ शिकायती मेल भेज के काम नहीं चलेगा दोस्त, नहीं, दोस्ती में सिर्फ शिकायतें नहीं होती हैं फरमाइशें भी पूरी की जाती हैं जैसे हम करते हैं। तो प्लीज़ आप भी हमारी फरमाइश पूरी कीजिए, हमारी पसंद पूरी कीजिए, भेजिए कि क्या आपने नानी दादी की कहानियाँ सुनी हैं तो क्या आज आप अपने बच्चों को सुनाना पसंद करते हैं या वो सुनना पसंद करते हैं।

भी वक्त हो चुका है आपको वक्त से अवगत कराने का। फिलहाल हो रहा है वक्त 10:46 और ये हुए पूरे के पूरे 40 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट

संदीप मक्कर जी का हमें संदेश मिल रहा है। ये कहते हैं कि बचपन में नानी के यहाँ जाना, बहुत कुछ खाने को मिलना, वो दिन भूल नहीं सकते। दोस्त, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है कि आप नानी के घर जाते थे तो क्या करते थे और आप क्या नहीं भूल पाते। हम ये कह रहे हैं कि दादी नानी ने कहानियाँ सुनाई आपको बचपन में, अगर वो कहानियाँ सुनी हैं तो आपके जहन में आज भी कोई एक कहानी तो होगी जो आपके जहन में अभी भी ताज़ा होगी, तो क्या आप उस कहानी को अपने बच्चों को सुनाना पसंद करते हैं और क्या वो सुनना पसंद करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो बस इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं हमें कहाँ से, पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से ये हमें लिख रहे हैं। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी हमें संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश हमें भेजा, थैंक यू सो मच। बट एक कहानी भी भेजिए ना, कौन सी कहानी सुनते थे, भूतों की, परियों की, राजा की, या कुछ कहते हैं ना तिलिस्म वाली

अगला संदेश हमें मिला है चरण बिंदल जी का, और ये कहते हैं कहानियां शिक्षा देती हैं, मनोरंजन होता है। पुराने लोगों ने बहुत तकलीफ सहन की थी, संतुलन बनाकर जीवन जिया जाता था। आज के बच्चे उल्टा सीधा फैसला ले लेते हैं। राजू अग्रवाल, प्रीति रेखा चौधरी बस हमें भेज रहे हैं संदेश। आपने कहानी का कोई जिक्र नहीं किया आप कहानी का भी जिक्र कर रहे हैं ना इसके अंदर कि आपने कौन सी कहानी सुनी। आज के जनरेशन जो कर दिए, देखिए उस टाइम पे जो हम करते थे हमें उतनी समझ होती थी, और आज की जनरेशन जो करती है वो अपनी समझ से काम करती है। तो फिलहाल आप इस टॉपिक पर स्टक रहिए और भेजिए अपने संदेश को किसी कहानी में लपेट कर हम तक।

बबल 363 का संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं दीदी जी हमने ना तो दादी और ना ही नानी को देखा है, कहानी तो दूर की बात है, कहानी तो किताबों में पढ़ी है, किताबों की कहानियों से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और ये लिख रहे हैं मोहाली पंजाब से, साथ में है ओम प्रकाश मल्होत्रा। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि कोई आपको नानी मामी दादी कोई भी आपको कहानी सुनाए तो ही आपको सीख मिले। और कहते हैं ना दोस्तों कि जो किताबें होती हैं वो आपकी सच्ची दोस्त होती है, और जो सच्चा दोस्त होता है आपको कभी भी बरगलाता नहीं, आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता है। तो अगर आपने किताबों से कहानियां सुनी हैं या पढ़ी हैं तो बहुत ही अच्छा किया है, और वाकई में ऐसा करना भी चाहिए। अगर कोई नहीं है आपके पास कहानी सुनाने के लिए तो कहानियाँ सुनने को, कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे पास हमारा अपना सच्चा दोस्त तो है जो कि है किताबें।

अगला संदेश हमें मिल रहा है, ये कहते हैं दीदी जी हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम आपका जो है पसंद आ रहा है, शो में मज़ा भी आ रहा है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, जगमोहन प्रजापति, करनाल में भी आ जाओ जी। अभी थोड़े दिन पहले मैं घूम कर आई हूँ सर उस तरफ में, आई होप नेक्स्ट ट्रिप लगेगा तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। लेकिन आपने ना रिलेवेंट जो क्वेश्चन हमने किया है उससे रिलेटेड कोई भी आपने जिक्र नहीं किया बात का। आपने कहानी नहीं सुनी क्या? सुनिए तो जल्दी से भेज दीजिए ना।

भाई हमारे श्रोताओं के लिस्ट में ना बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्हें हमारा सिर्फ कार्यक्रम पसंद आता है, हमारा टॉपिक पसंद नहीं आता, हमसे बात करने का मन बिल्कुल नहीं करता शायद ऐसे श्रोताओं का। उनमें से एक है मांगेराम जी और ये कहते हैं, अर्चना जी नमस्कार, अपने सभी श्रोताओं के कहानी के ऊपर मेल शामिल किया, हमने सुना, बड़ा मजा आया, आपको बहुत बहुत बधाई, किसी भी गीत में शामिल करें। बिल्कुल, आपने हमारा कार्यक्रम सुना, हमसे जुड़े नहीं, पर आपने सिर्फ संदेश भेजा, आपने कहानी नहीं भेजी, आपने कौन सी कहानी सुनी थी ये तो बताया ही नहीं आपने। और बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमारे साथ मेल के जरिए जुड़े हुए हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन दोस्त आत्मा तो वहीं रह गई ना, आपने भेजा ही नहीं हमें कुछ लिखकर, आप भेजिए हमें लिखकर, अभी है थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से भेज दीजिए, कितनी देर लगती है मेल आने में, आप भेज दीजिए आपने कौन सी कहानी सुनी, दादी से सुनी, नानी से सुनी, मामा से सुनी या किसी और से सुनी।

अगला संदेश हमें मिल रहा है डॉल राणा जी का, और ये कहते हैं, अब बड़ी नानी की कहानियां अतीत की बात हो गई है और अब कहानियों की जगह मोबाइल ने ले ली है। डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से ये हमें लिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो कहानियां हैं, कहानियां तो छोड़िए, बहुत सारी चीज़ों की जगह मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने ले ली है, और अब कहते हैं ना, अब इंसान की जगह भी समझ रहे होंगे कि इंसान की जगह भी अब जो है ना मशीन ने ले ली है, अगर देखा जाए तो कोई बात नहीं, कहानी आप कहीं से भी सुने, मशीन से सुने, किताबों से सुने, दादी नानी से सुने, सुने जरूर।

जल्दी जल्दी अगला संदेश ले लेते हैं। ये लिखते हैं प्रकाश वर्मा हमें छत्तीसगढ़ पलारी से। ये कहते हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियां ईदगाह, इसमें हामिद नाम का एक 4-5 साल का अनाथ बच्चा अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के पास ईद के मेले के लिए केवल 3 पैसे हैं, जबकि बाकी बच्चे खिलौने और मिठाइयां खरीदते हैं। हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। यही कहानी मेरी नानी जी ने मुझे सुनाई थी। बिल्कुल, बहुत ये आपकी नानी, आपकी दादी ने नहीं सुनाई, ये सभी की नानी दादियाँ जो है ना, उन्होंने अपने बच्चों को ज़रूर सुनाई होंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल जो है ना कहानी है, जिससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें किस तरीके से अपने बड़े बूढ़ों की कद्र करनी चाहिए। अपना जो है, कहते हैं ना कि पैसे को बचत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अपने एंजॉय के लिए वो पैसा रखना चाहिए।

वक्त हो चुका है 10:56 और पूरे 30 सेकेंड्स, और साथ ही साथ ना वक्त हो चुका है मेरे यहाँ से जल्दी रुखसत होने का, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है बस कुछ ही पलों का और मेहमान है। लेकिन जाने से पहले ना एक संदेश और लेती हूँ, कोशिश करती हूँ।

अगर कोई और भी मेल आया है रिलेवेंट तो वो जरूर लूंगी। ये मांगे राम जी ने हमें संदेश भेजा, ये कहते हैं बहन अर्चना जी नमस्कार, मेरे एक पड़ोसी ने मुझे कहानी सुनाई, शेर की कहानी, मुझे बहुत पसंद आई, सुनकर बड़ा मजा आया और वो मुझे याद आ रही है, शुक्रिया धन्यवाद। आपने भेज ही दिया आखिर हमें संदेश, वाकई में देखिए याद आई जाती है, अगर याद करेंगे ना कि आपकी दादी नानी ने आपको क्या कहानियां सुनाई वो आपको याद आ ही जाती हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल जो वक्त है ना बहुत थोड़ा सा रह गया है, आई होप आप सभी लोगों को ये, अपने सभी श्रोताओं को ये जो कार्यक्रम है वो बेहद पसंद आया होगा, और जिन सभी श्रोताओं ने हमें संदेश भेजे उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जिनके संदेश हम नहीं ले पाए उनके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ मैं, और चाहती हूँ कि आप अपना प्यार है ना हमें इसी तरीके से हम पर लुटाते रहे और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे मेल्स के जरिए, अपने संदेशों के जरिए और इस इन खूबसूरत कार्यक्रमों के जरिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की, जल्दी ही आपसे फिर से मिलूंगी और लेंगे कोई और बढ़िया सा मज़ेदार सा चटपटा सा टॉपिक जिस पर बात करेंगे, जिसके साथ आप जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, और फिलहाल अपना ख्याल रखें, स्वच्छता रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 11 बजने को है। ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को समाचार सुनवाने का। सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की।

0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic, and security ties between the two democratic giants. The economic momentum ignited early with the India-Australia CEOs Forum, where business leaders celebrated a 55% surge in two-way trade driven by the 2022 ECTA agreement. To unlock further potential, Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese fast-tracked negotiations for the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA. The bilateral talks scaled a historic milestone in clean energy with the finalisation of the administrative arrangement enabling long-term Australian uranium supply to India, reviving a foundational 2014 framework. Strategic security also took centre stage as both maritime powers adopted a joint declaration on defence and security cooperation alongside a maritime security collaboration roadmap to ensure a free and open Indo-Pacific. The tour's unparalleled public resonance was on full display at the Melbourne Meets Modi Diaspora Rally, where an ecstatic crowd of around 25,000 at Marvel Stadium

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। आइए अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति गुरदास मान की आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सब रस। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 11:25 और 55 सेकेंड्स हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जसबीर जस्सी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 11:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जावेद अली खान द्वारा राग जौनपुरी में गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर प्रसून चैटर्जी और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद।

Mama,

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जावेद अली खान द्वारा राग जौनपुरी में गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर प्रसून चैटर्जी और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर

0: देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर
2: और रश्मि कुकरेती। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और रश्मि जी, कैसी हैं आप?
2: जी बढ़िया।
1: और आज जो हम कार्यक्रम सुन रहे हैं और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं वो एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
2: और सिमरन, हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न पूछते हैं अपने श्रोताओं से, तो आज का प्रश्न आप क्या लेकर आई हैं?
1: देखो, आज है खास विशेष हमारा कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो आज का हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं अपने श्रोताओं से, वो रहेगा हमारा परिवार को एकजुट रखने का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है।
2: जी, अपने विचार हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com इस ईमेल पर, क्योंकि देखिए सिमरन, परिवार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है ना, तो कई बार मतभेद भी हो जाते हैं। लेकिन आपके ऐसे कुछ अनुभव रहे होंगे जरूर कि किस तरह से हम परिवार को जोड़कर रख सकते हैं, तो जल्दी से लिख भेजिए ये जवाब कि परिवार को किस प्रकार जोड़ सकते हैं आप।

0: मिलजुल कर कुछ कम कम करें। बिल्कुल। और अभी आप सुन रहे थे एक गीत हमारे तुम्हारे फिल्म से, और गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार।
1: और सिमरन, जो हमारा प्रश्न था ना कि परिवार को जोड़कर रखने का मूल मंत्र क्या है, बहुत सारे जवाब दोस्तों इस गीत में छुपे थे, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने, क्योंकि जब आप परिवार की बात करते हैं तो परिवार में तो हर तरह का सदस्य होता है और हर तरह के मिजाज होते हैं उनके अलग अलग
1: जी, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बात धैर्य के साथ सुने, छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखें और हर सदस्य को ये एहसास कराएं कि वो परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, तो विश्वास कीजिए रिश्ते मजबूत जरूर बने रहेंगे, है ना?
0: बिल्कुल बने रहेंगे। और रश्मि जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो इस सच है कि वरिष्ठ जन हमारे घर की नींव होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत भाग्य वालों को नसीब होता है, और इसीलिए सभी को अपनों से बड़े और वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए।
1: बुजुर्गों के अनुभव और सीख से हम जीवन में आई विपत्तियों से तो पार पा ही सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे समाज की अनमोल विरासत होते हैं।
0: और रश्मि जी देखिए, हम अपने जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हमारे घर की तरक्की हो सकती है पूरी तरह से।
1: भाई, बड़ों का होना अगर है तो सुरक्षा है, संस्कार है, संवेदना है, ज्ञान है, और जो अपनी पारिवारिक जड़ें हैं ना, उनको जोड़े रखने के लिए तो ये अति आवश्यक है। उनका जो जीवन जीने की कला सिखाने का जो तरीका होता है ना, वो तो प्यार और दुलार से भरा हुआ होता है।
0: और उनके साथ खड़े होना परिवार की जिम्मेदारी है। उन्हें सम्मान, प्यार और देखभाल दें, जैसा कि उन्होंने आपको तब दिया था जब आप उन पर निर्भर थे, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना?
1: जी बिल्कुल।

घटे सीधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म थी खूबसूरत।
1: और सिमरन बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि भाई परिवार को साथ रखने का मूल मंत्र है प्यार और विश्वास। भाई ये एक दूसरे के साथ अगर मान होता रहे एक दूसरे का तो परिवार एक साथ जुट रहता है। और मधु किरण हमें कह रही है भाई एक चुप सौ

0: सुख।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी बात है परिवार के
0: हाँ,
1: लिए।
0: और प्रकाश चंद गोगिया भी जुड़ गए हैं, उनका भी यही कहना है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ गए हैं। नवीन भाटिया कह रहे हैं कि बुजुर्गों को इज्जत दें और छोटों को प्यार दें, उनकी भी बात सुने, और कभी क्रोध जो अगर आ जाए तो शांति बनाए रखें। मोतीनगर से आप हैं, और साथ डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं।
1: कि भाई हर हफ्ते के जो फिक्स फैमिली टाइम रखिए, जिससे डिनर के लिए छोटी मीटिंग जा, मतलब मेरा कहने का मतलब इनका ये है, और मेरा कहने का भी मतलब ये है रश्मि जी, कि सब बैठ के इकट्ठे खाना खाएं, बुजुर्ग भी साथ में बैठ के प्यार से खाना खाएं, तो कितना अच्छा लगता है। अकेले खाना ना खाएं,
0: जी,
1: उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए,
0: और
1: है
0: साथ
1: ना।
0: में एक और हमारे पास मेल आ गई है, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन परिवार को एक साथ रखना सबसे ज़्यादा स्त्री का काम है, माँ का काम है, वही कोशिश मैं भी करती हूँ। मैं तो शाम को सब एक साथ डिनर करवाने की कोशिश करती हूँ, सब एक साथ आएं, सब मिलकर दिन भर की बातें करें, और रविवार को टीवी पर कोई एक साथ मूवी देखकर
1: भाई
0: गप्पे मारते हैं।
1: बहुत बढ़िया है
0: तो
1: ना,
0: क्या कहेंगी आप सिमरन?
1: बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने इतनी अच्छा लिखा है, और ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से भी, ये बिल्कुल सही है ना।
0: मुझे लगता है कि स्त्री का तो काम है ही, लेकिन बाकी सबका भी काम है, चाहे वो घर के
1: घर के
0: पुरुष हो
1: पुरुष हो
0: या
1: या
0: घर के वरिष्ठ हो, सभी को कोशिश करनी
1: जितने भी
0: चाहिए।
1: सदस्य घर में रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर काम को करें तो बहुत अच्छा होता है।
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की,
1: तो बात तो ये हुई है कि जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, तो इसके साथ साथ मैं एक बात करना चाहती हूँ रश्मि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ बातों का शुरू से ध्यान रख लें तो कितना अच्छा हो जाए, इस परेशानी से हम बच सकते हैं।
0: हाँ, यानी कहना चाहती हो कि अगर हम 60 और 55 के हो जाएं तो भाई किस प्रकार से दिनचर्या को व्यवस्थित रखें कि हम स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित एक्सरसाइज करना हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही एक प्राकृतिक मूड बूस्टर है। पैदल चलना या तैरना जैसी हल्की एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद साबित होती है।
0: और इसके साथ अगर नियमित स्वास्थ्य जांच हो जाए तो ये एक ऐसी
1: ऐसा
0: सावधानी है जिसमें हम समय समय पर अगर जांच करवाते रहेंगे तो हम जरूर उसमें जो भी हमारे स्वास्थ्य में कमियां हैं वो पकड़ पाएंगे, डॉक्टर से उचित समय पर परामर्श ले सकेंगे।
1: रश्मि जी, एक बात ये है कि जब तक हम अपनी नींद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा महत्व क्या है। अच्छी नींद के लिए गुणवत्ता वाली नींद हमें दुगनी ऊर्जा देती है।
0: और ये भी होता है सिमरन कि जब उम्र बढ़ती है तो हमारी प्यास की अनुभूति इतनी तीव्र नहीं रह जाती, तो पानी की पूर्ति करना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहें।
1: और इसके अलावा तनाव की मौजूदगी नहीं, बल्कि हम उससे कैसे निपटते हैं, सबसे ज्यादा

0: होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की। बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

0: अभी आप सुन रहे थे गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी कल आज और कल।
1: और एक बहुत अच्छा मूल मंत्र हमारे पास आ गया है। आप हैं गौरी शंकर नागलोई से, आप कह रहे हैं सिमरन रश्मि राम राम। राम राम जी, समय का पहिया रुकता नहीं है और आज के समय में परिवार को संभालना

0: और टेढ़ी खीर है भाई, सही
1: बहुत
0: कहा।
1: अच्छा कहा ना
0: और फिर
1: इन्होंने
0: भी
1: रश्मि।
0: कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, आपने सही कहा, गलतियों को माफ करने में अच्छाई है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, इसी में समय खुशी से बीत जाएगा। बाकी आप सब, आपको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में रश्मि जी, मेरे पास एक और मेल आ गया है। मेरे पास आया है सुनैना गुप्ता, नीना गुप्ता और नीतू गुप्ता का। ये आया है मेरठ से। इन्होंने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कविता लिख के हमें भेजी है। इन्होंने कहा है कि बड़े बुजुर्ग जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बन के खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। कितनी खूबसूरत कविता लिख के भेजी है इन्होंने।
0: और एक और मेल हमारे पास आ गया मयूर विहार से। सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि उनके अनुभव में परिवार को जोड़कर रखने में सबसे जरूरी है रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखा जाए। कई बार छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराकर पहल कर दे तो मनमुटाव खत्म हो जाता है। परिवार में केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। जब बड़े प्यार और धैर्य से मार्गदर्शन करें और छोटे उनका सम्मान करें, तब घर में अपनापन बना रहता है। आखिरकार परिवार वही जगह है जहां बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है। भाई
1: कितना
0: बहुत
1: अच्छा,
0: खूबसूरत
1: बहुत ही, मुझे तो
0: बात।
1: बहुत अच्छा लगा इनकी बातें। इन्होंने बहुत प्यारा मेल भेजा है। और अब बात करते हैं रश्मि जी कुछ बुजुर्गों की, बुजुर्गों की तरफ फिर से आते हैं।
0: जी
1: जब परिवार की बात हम कर ही रहे हैं तो साथ में बुजुर्गों के लिए योजनाओं की बात कुछ कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसलिए सरकार ने खास उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं।
0: जी
1: अगर इस समय योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन आराम से बीत सकता है और सिस्टमैटिक प्लान भी बुजुर्गों के इनकम का एक जरिया हो सकता है।
0: जी और सिस्टमेटिक प्लान की जब आपने बात कही तो इसमें SIP और म्यूचुअल फंड की भी हम बात कर सकते हैं। आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ अपने म्यूचुअल फंड चुने।
1: बिल्कुल। और सरकार ने 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी शुरुआत की है।
0: जी और इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने सरकार लेकर आई है, और टैक्स में छूट का फायदा लेने के लिए इस योजना में, हालांकि जो 60 से जो कम उम्र के नौकरी पेशा लोग हैं वो भी निवेश करते हैं, लेकिन इस स्कीम में निवेश करने के लिए करीब जो रिटर्न है वो जो सामान्य FD होती है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और 1,000 से लेकर 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है। तो फिर आगे सिमरन कुछ कहना चाहोगी?
1: मैं कहना चाहूँगी रश्मि जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि खाता किसी भी अधिकृत बैंक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक और या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक में जाकर नज़दीकी डाकघर पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं,
0: जी
1: है
0: ये
1: ना?
0: बहुत सुरक्षित निवेश है, इसलिए
1: बिल्कुल।
0: कर सकते हैं।
1: तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत, फिल्म थी सितारा। और रश्मि जी, मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को बता दूं कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन के साथ आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgold@gmail.com। तो हमें रहेगा आपका इंतज़ार, जल्द से जल्द फटाफट हमें मेल भेज दीजिए।
1: जल्दी से लिख भेजिए। और इस बीच में और मेल्स जो आ गई हैं वो पढ़ देती हूँ। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने मूल मंत्र जो लिखकर भेजे हैं वो है, सबसे बड़ी सीख है अपनों से हार जाना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और जहां बुजुर्ग हैं वहां बरकत है। और वो कहते हैं, परिवार वो सुरक्षा कवच है जहां हर कोई शांति महसूस करता है।
0: बहुत बढ़िया लिख के भेजा है इन्होंने रश्मि जी, ये तो बहुत ही अच्छा लिख के भेजा। और सच में परिवार वही जगह है।
1: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कुछ कह रही हैं,
0: ये कह रही हैं कि मैंने एक बात पढ़ी थी रिश्तों और परिवार के संदर्भ में, मतलब परिवार के बारे में, बहुत फिट बैठती है कि सब कुछ अच्छा बनाना पड़ता है अपने आप को, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से।
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात
1: यानी,
0: है। तो
1: यानी अंदाज भी हो और नजर अंदाज भी हो। और एक और हमारे पास मेल आ गई है, आप हैं गुड़गांव से जितेंद्र, आप वो कह रहे हैं कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे बड़ा मंत्र अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि रिश्तों में जीतने की नहीं निभाने की कोशिश कीजिए। यही ऐसा ही कुछ संदेश पहले भी प्राप्त हुआ था। और वो कहते हैं कि परिवार एक पेड़ की तरह होती है जिसकी जड़ें हैं संस्कार, तना

0: है विश्वास और शाखाएं हैं रिश्ते और फल हैं खुशियां। भाई वाह, क्या बात है।
1: अच्छा लगा।
0: यदि जड़ों को प्यार, सम्मान और संवाद का पानी मिलता रहे तो चाहे कितने भी तूफान आए, परिवार मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी यही जरूरत है। तो मोबाइल पर कम समय बिताएं और परिवार के साथ ज्यादा बिताएं। सिमरन, एक बात और कहती हूँ, मेरी एक बात हो रही थी, हमारे जानकारी में है एक और बहुत बड़ा परिवार है उनका, करीब करीब 20 सदस्यों का बड़ा भरा पूरा परिवार है, अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं। जब उनसे बात हुई कि किस प्रकार आप साथ रहते, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये आदत है कि जो छोटे हैं बच्चे, वो सवेरे उठकर बुजुर्गों के पांव छू लेते हैं और कोई किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन अगले दिन अगर छोटा जब आके बड़ों का पांव छूते हैं तो बड़ा भी जो है हंस के माफ करना सोचता कि चलो अब ये झुक ही गया। तो क्या अहंकार रखना, क्या गुस्सा रखना। जी जी, तो ये छोटे छोटे ऐसे मंत्र हैं कि अगर आप झुक जाएं तो फिर समझिए,
1: फिर तो फिर कोई लड़ाई नहीं, कोई बात ही नहीं। और देखो, परिवार में तो रश्मि जी ये होता ही है कि कोई किसी स्वभाव का होता है, कोई किसी स्वभाव का। और कहते हैं ना, मुट्ठी बंद रहती है तो वो बहुत अच्छी रहती है ना, जब खुल जाती है तो अलग अलग। तो सबकी मुट्ठी एक साथ बंद रहे और हर काम एक साथ करे तो बहुत अच्छा रहता है।
0: और मैं तो ये कहूंगी कि अगर जो छोटे बच्चे हैं वो दादा नानी दादी के साथ, नाना नानी के साथ रहे तो बहुत अच्छा लगता है। भाई दादा दादी और नाना नानी के पास बहुत सारे अनुभव सीख होते हैं, वो कहानियों में भी सुनाते हैं वो अनुभव और सीख, है ना।
1: सही कहा और आपने। और देखो, ये बात में मैंने आपकी बात मानी है कि पहले टीवी नहीं, मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी एक चीज होती थी, कहानी। और वो कहानी सुनाते थे दादा दादी नाना नानी हमारे, और संस्कार और सीख कहानियों

0: से मजबूत हुई और शब्दों का खजाना भी बढ़ा।
1: और एक बात मैं कहूंगी रश्मि जी कि नानी वाली कहानियों से गांव, खेत, त्योहार, लोकगीत और आ जाते थे। हमें पता चलता था कि हमारे पूर्वज कैसे जीते हैं। यही कहानियां हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती हैं और कहानी संस्कार देती हैं।
0: और सच बताऊं, जब दादा दादी और नाना नानी की गोद में सर रखकर कहानी सुनते थे ना, तो बड़ा सुकून मिलता था। जो बच्चों बचपन में मन में कभी एंजाइटी, दुख, कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि नींद नहीं आ रही भाई, जब दादी ना अपनी आवाज़ में धीरे धीरे कहानी सुनाते, तो सच बताऊं सुनते सुनते ही हम सो
1: हाँ,
0: जाते
1: तुझे
0: थे।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहानी के साथ एक लाइन हमेशा आती थी, बेटा हमारे समय में, यानी कि वो एक लाइन 50 किताबों से ज्यादा सिखा देती थी। हार, संघर्ष, त्याग सब कहानी सुनकर आता
0: तो
1: रहता।
0: हम यही कहेंगे कि भाई रोज 10 मिनट जो है बुजुर्गों के पास बैठिए, और बच्चों को जो बुजुर्गों की कहानियों से कभी दूर ना होने दें, क्योंकि ये जो सीख है ना, ये तो मैं कहूंगी भाग्यशाली बच्चों को ही मिलती है ना।

0: आइए सुनते हैं गीत। फिल्म है मिस्टर नटवरलाल और आवाज है किशोर कुमार की।
1: आओ बच्चों,
0: आवाज है अमिताभ बच्चन की।
1: शेर की कहानी सुनोगे?

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: तो भाई वाह सिमरन, कहानी की बातें हो रही थी और तुमने तो गीत में ही कहानी सुनवा दी। और सच बताओ मजा आ गया ये कहानी
1: है, मजा
0: सुनकर।
1: आया ना
0: जी
1: भाई। दादा दादी, नाना नानी की कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं, आज भी मन करता है जरा टाइम मिल जाए, समय मिल जाए तो बैठ जाए उनके
0: और
1: पास आराम
0: देखिए
1: से।
0: एक और मेल आ गया हमारे पास, पढ़िए। महेश
1: हाँ
0: अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई परिवार जो है वो चमकते जा रहे हैं और जमीन छोटी होती जा रही है, रहन सहन छोटा होता जा रहा है, और ना ही लोगों के पास समय रहा कि जो परिवार के साथ मिलकर बैठें। तो ये यही हमें रोकना है, हमें मिलकर भी बैठना है, एक दूसरे से रिश्ते बनाए भी
1: निभाने भी
0: रखने
1: हैं।
0: हैं।
1: बिल्कुल सही कहा
0: और
1: रश्मि जी आपने।
0: जी
1: और क्योंकि साथ में जब रहेंगे तो वो प्यार, वो सम्मान, वो रिश्ते पक्के मजबूत तभी तो होंगे। और मोबाइल को साथ में हटा के, ये नहीं कि साथ में उसे जोड़ के रखे, है ना।
0: जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राघव दिलशाद गार्डन से। वो कहते हैं कि एक बार मेरी माँ ने कहा था कि थाली में दाल चावल सब्जी रोटी और अचार, सबका स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जब सब साथ होते हैं तभी भोजन पूरा लगता है। परिवार में भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, कोई शांत, कोई गुस्से वाला, कोई भावुक,
1: वही
0: जो जैसा है उसे वैसे ही
1: वैसे ही
0: स्वीकार
1: रहने
0: करें।
1: देना।
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: खूबसूरत जी
1: बहुत अच्छा लिख के भेजा है इन्होंने।
0: जी
1: और एक और अभी तो आया है ना मेल
0: जी
1: रश्मि
0: जी
1: जी आपके
0: जी
1: पास।
0: एक और हमारे पास मेल आ गया है शालीमार गार्डन से। आप हमसे जुड़ गई हैं उमा जी। ये कह रही हैं कि मेरी दादी कहा करती थी, घर जो बड़ा होता है वो कमरों से नहीं होता, दिलों से होता है। जब भी परिवार में किसी बात पर नाराजगी होती है तो वो सबसे पहले चाय बनाती है और सबको एक साथ बैठा देती है। आधी समस्या तो साथ बैठने से ही खत्म हो जाती,
1: लीजिए,
0: और संवाद जो है वो चलता रहता
1: वो तो
0: और
1: सबसे
0: रिश्ते भी
1: बढ़िया है
0: चलते
1: और
0: रहते।
1: रिश्ते मजबूत हो जाते हैं,
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: और इसके अलावा रश्मि जी एक और मेल आया है, ये है ये रीता, नीना और रितिका का, है ना।
0: जी
1: ये
0: ये
1: आया है,
0: उत्तम नगर से
1: ये
0: है।
1: उत्तम नगर से आया है। ये है एक लिखा है इन्होंने कि गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। इनका कहना, आंधी आई बारिश आई पर वो हमेशा खड़ा रहा रहता था, क्योंकि दादाजी कहते थे कि इसकी वजह जड़ों में है, खास तौर पर क्योंकि परिवार भी ऐसा है। हमारी जड़ें हैं, संस्कार है, विश्वास है, प्रेम है, और अगर जड़ें मजबूत रहें तो जीवन में कोई भी कभी भी आंधी आ जाए लेकिन परिवार कभी नहीं हिल सकता।
0: भाई सिमरन, हमारे जो श्रोता हैं वो कितने गुणी और कितने समझदार हैं। आज
1: उनको
0: मुझे
1: ये बता
0: बहुत कुछ सीखने को
1: मुझे,
0: मिला है उनसे,
1: है ना।
0: सच
1: और
0: सच।
1: हमारे जो जो कार्यक्रम का जो ये जो प्रश्न है उनके साथ साथ मेल हमें बहुत ही खूबसूरत भी आए हैं, हमें लिख के भेज रहे हैं जो मेल। अच्छा एक बात मैं और कहूंगी रश्मि जी, कि आजकल मौसम बदल रहा है, खास तौर पे हम बुजुर्गों की जब बात करते हैं तो उनके खान पान का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था के साथ होने वाले विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को देखते हुए बदलते मौसम बुजुर्गों के खान पान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
0: और सिमरन देखो, जब उम्र बढ़ती है तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, तो हमें उन पदार्थों को शामिल करना चाहिए अपने खाने में जिनसे इन पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। जैसे कि कैल्शियम के लिए हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और सूर्य का प्रकाश लेना तो बहुत ज़रूरी है ही। साथ में उम्र बढ़ने के साथ जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, तो थोड़ा जिंक भी हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, और नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोटेशियम को अपने भोजन में शामिल करना बेहद जरूरी है।
0: और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी हृदय संबंधी रोगों की संभावना 50% तक कम हो जाती है, तो इसे भोजन में शामिल करना ना भूलें।
1: और शरीर के खराब जहरीले पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी की जरूरत तो होती ही है।
0: तो ये कहना सही रहेगा सिमरन कि अकेले खाने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम
1: अभी
0: परिवार
1: मैं अभी कहने वाली थी रश्मि जी
0: को
1: कि अभी मेल भी इसी बारे में आया था कि
0: जी
1: अकेले खाने
0: बिल्कुल
1: से बचना चाहिए, बैठ के सबके साथ खाना खाना चाहिए, क्योंकि
0: हाँ
1: इसी में प्यार है और प्यार की परंपरा हमेशा रहनी चाहिए
0: जी,
1: बरकरार।
0: पोषक खाना खाइए और सब मिलकर खाना खाइए, मिलकर रहिए।

0: रश्मि जी, एक और मेल आया है मेरे पास. मैं साथ चाहती हूँ कि चलते चलते मैं उनको एक मेल और अपने श्रोताओं को बताऊँ. शालिनी अग्रवाल, रचना अग्रवाल और रीना गोयल का चंद्र विहार से. इन्होंने दो लाइनें लिखी हैं रश्मि जी, लेकिन बहुत प्यारी लिखी हैं कि हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है. उन्होंने ही तो सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है.
1: जी, और एक मेल मेरे पास आया है. आप कह रहे हैं कि दो भाइयों में, इन्होंने कहानी लिखकर भेजी है सिमरन, कह रहे हैं दो भाइयों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया. एक दिन एक बड़े ही वहाँ आया तो बड़े भाई ने कहा, हमारे खेतों के बीच जो है ऊंची दीवार बना दो. बड़ई ने शाम तक वहाँ काम किया और जब दोनों भाई शाम को आए तो वहाँ पता क्या था, वहाँ दीवार नहीं थी बल्कि एक सुंदर लकड़ी का पुल बना था. तो दोनों भाई एक दूसरे की ओर बढ़े और गले मिले और उनकी सारी नाराजगी खत्म हो गई. भाई वाह, रिश्तों में तो दीवार नहीं होनी चाहिए, पुल ही होना चाहिए. पुल होना चाहिए ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें. और ये खूबसूरत कहानी हमें लिखकर भेजी थी विकासपुरी से उमेश जी ने.

0: रश्मि जी, अब देखिए समय तू धीरे धीरे चल गाना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है धीरे धीरे चलने का।
1: तो समय हम यही कार्यक्रम
0: कहना चाहते कि हम यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फ़र्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

0: जी कनक।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a two-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate a century of sporting ties, hockey remains a strong bridge of friendship, connecting the people of both countries and inspiring future generations. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said clean energy met over 50% of the country's electricity demand for the second time. In a social media post, Mr. Joshi said renewable sources contributed 50.2% of the power supply on the 6th of this month. The minister called this a testament to the growing strength and reliability of India's clean energy ecosystem. He said, under the leadership of Prime Minister Modi, India continues to power sustainable growth with speed and determination. Niti Aayog member Dr. Joram Anya held interaction with UNICEF India representative Cynthia McCaffrey and her delegation in New Delhi to strengthen collaboration on child-centric development, school education and human development. According to Niti Aayog, the discussions focused on safe and inclusive learning, foundational literacy and numeracy, teacher education, student well-being, cyber safety and digital security, particularly in aspirational districts and blocks. The India Meteorological Department

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने 80 के दशक में हर दिल को छू लिया था।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1981 में रिलीज़ हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म एक दूजे के लिए। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार इमोशनल प्रेम कहानी में से एक बना दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था साउथ के मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंद्रन ने। मूल कहानी और पटकथा भी के बालाचंद्रन ने ही लिखा है। डायलॉग इंदर राज आनंद का है और निर्माता थे LV प्रसाद। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी जो फिल्म है वो है एक दूजे के लिए। ये फिल्म उन्हीं की उनकी तेलुगु फिल्म मारो चरित्र का हिंदी रीमेक थी, जिसमें भी हीरो कमल हसन ही थे, लेकिन इस बार उनके ऑपोजिट थी खूबसूरत और टैलेंटेड रति अग्निहोत्री जी, और साथी कलाकारों में थे माधवी रजा मुराद, अरविंद पदेश पांडे, राकेश बेदी, शोभा खोटे, मधु मालिनी असरानी, सत्येंद्र कपूर और सुनील थापा। कमल हसन और रति अग्निहोत्री की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इस फिल्म ने दोनों को हिंदी सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया। कमल हसन की ये पहली हिंदी फिल्म थी और इस फिल्म के बाद वे रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनके शानदार अभिनय और बालाचंद्रन के जबरदस्त निर्देशन ने इसे एक आइकॉनिक फिल्म बना दिया। और एक बार एक बात और, रति अग्निहोत्री इस फिल्म में जब इन्होंने इस फिल्म को साइन किया था तो वो सिर्फ महज 16 साल की थी। तो चलिए सुनते हैं इसे फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है एक दूजे के लिए। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये कहानी उत्तर और दक्षिण के प्यार की है। कहानी थी एक उत्तर भारतीय परिवार की लड़की सपना और एक तमिल लड़के वासु की। दोनों के परिवार गोवा में पड़ोसी हैं। दोनों का प्यार घर वालों को पता चलता है तो तूफान आ जाता है। मोबाइल और इंटरनेट टाइप की चीज़ तब दुनिया में आई नहीं थी। तब घर वालों ने शर्त ये रखी थी कि अगर दोनों पूरा एक साल बिना एक दूसरे से किसी भी तरह का संपर्क किए बिना बिता लेंगे तभी दोनों की शादी हो सकेगी। वासु हैदराबाद चला जाता है। रोज सपना को एक खत लिखता है लेकिन पोस्ट नहीं करता। एक विधवा युवती संध्या से हिंदी सीखने की कोशिश करता है। संध्या उसे भरतनाट्यम भी सिखाती है। फिर वासु और सपना में गलत

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है एक दूजे के लिए। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की, जो अपने समय में सुपरहिट साबित हुआ। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने, और इन गीतों को आवाज़ दिया था लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा और एस बी बाला सुब्रमण्यम ने। खास बात ये थी कि इस फिल्म के लिए सिंगर एस बी बाला सुब्रमण्यम को जब चुना गया तो साउथ के जाने माने गायक थे वो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को शुरू में संदेह था कि क्या वे हिंदी गानों को के साथ न्याय कर पाएंगे, लेकिन इस पर बालाचंद्रन ने तर्क दिया कि जब हीरो का किरदार ही साउथ इंडियन है तो वो गाने शुद्ध हिंदी में कैसे गाएगा। बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में साउथ इंडियन टोन फिल्म और गाने दोनों को ही ऑथेंटिक बनाएगा, और एस बी बाला सुब्रमण्यम ने आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। श्रोताओं, फिल्म के जो डायरेक्टर थे के बालाचंद्रन, राज कपूर को बहुत पसंद करते थे। वह अपनी फिल्म पूरी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसे राज कपूर को ही दिखाया। उन्होंने पूरी फिल्म तो अच्छी लगी, लेकिन वो चाहते थे कि फिल्म

0: की हैप्पी एंडिंग हो। उन्होंने ये बात बालाचंद्रन को कही, लेकिन बालाचंद्रन ने मना कर दिया और बोला, जो टीस या जो दर्द आपके मन को परेशान किए हुए है, वही टीस वही दर्द जब दर्शकों के मन में भी उठेगी तो फिल्म सुपर हिट होगी। तो श्रोताओं, चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: श्रोता, हम आपको बता दें कि जब ये फिल्म बनके तैयार हुई तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नुकसान हो जाने के डर से ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो प्रोड्यूसर लक्ष्मण प्रसाद को खुद ही एक दूजे के लिए रिलीज़ करनी पड़ी। फिल्म से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए शुरुआत में कुछ ही प्रिंट्स निकले, लेकिन हफ्ते भर में ये फिल्म का क्रेज़ इतना बढ़ा कि नए प्रिंट्स जोड़ने पड़े। महज 10 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ से ज़्यादा कमाए। इतना ही नहीं, एक दूजे के लिए पूरे 2 साल तक सिनेमाघरों में लगी रही और नेशनल अवार्ड समेत 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दिलों पर भी राज किया। वासु और सपना की प्रेम कहानी, लैला मजनू, हीर रांझा जैसे क्लासिक लव स्टोरीज़ की लिस्ट से जुड़ गए। हालाँकि फिल्म का अंत बहुत ही इमोशनल था और कई दर्शकों की आंखें नम हो गई थी, लेकिन यही तो है असली सिनेमा की खूबसूरती, जो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। तो श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, तो ये आखिरी गीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं आपके जो मेल आए हैं उनको। ये मेल आया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस का, और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित गोस्वामी, रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, और इनके साथ हैं पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुलराल और अविराज जी हैं गाँव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर ये जुड़े हुए हैं जालंधर पंजाब से। तो श्रोताओं, अगला गीत जो है और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है, आइए उसे सुनते हैं। और ये जो गीत है, इस गीत में सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके जो बोल हैं सिर्फ हिंदी फिल्मों के नाम से तैयार किए गए हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम।
0: अच्छा
1: चोरी मेरा
2: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की फिल्म एक दूजे के लिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन 3 बजे फिर से मिलना नहीं भूलिएगा मैटनी मेलोडीज में।
0: बेशरम।

0: संग मेरे जीवन साथी प्यार किए जा।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिन के दौरे के तीजे ते आखिरी गेड़ विच अज न्यूजीलैंड पहुंचणगे। महाराष्ट्र सरकार ने सूबे लिए 61 सिविल जाबते का खरड़ा तैयार करने लिए 7 मैंबरी कमेटी के गठन का ऐलान किया। पंजाब विच विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लिए सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते कल तो 2 दिन विशेष कैंप लगाया जाएगा। मौसम विभाग वालों अज उत्तराखंड विच भारी मीह लई अलर्ट जारी। अगले 3 to 4 दिन विच हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश ते दिल्ली विच भी भारी मीह पैण दी पेशेनगोई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अज लंडन विच मेजबान इंग्लैंड खिलाफ दोपहर बाद 3:30 बजे इतिहासक इको इक टैसट मैच खेडेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया का अपना इतिहासक और महत्वपूर्ण सरकारी दौरा अधिकारित तौर पर मुकम्मल कर लिया। इस दौरे ने भारत आस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भाईवाली लई एक नवी दिशा और भविख लई एक मजबूत बुनियाद प्रदान की है। इस दौरे दौरान दोवां मुल्कां विचकार कूटनीतिक, आर्थिक ते सुरक्षा संबंध नवीं उचाइयां ते पहुंचे ने। इस दौरे की शुरुआत भारत आस्ट्रेलिया CEO फोरम नाल हुई, जिथे व्यापारक आगुआं ने साल 2022 दे आर्थिक सहयोग ते व्यापार समझौते नाल दुवल्ले व्यापार च होए 55% दे वाधे दा स्वागत कीता। इस गति नूं अगे वधाउण लई प्रधानमंत्री मोदी ते आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते ते गलबात विच तेजी लाउण लई सहमत होए। दोवां मुल्कां ने साफ सुथरे ऊर्जा खेतर च इक इतिहासक मील पत्थर हासिल कीता। भारत नूं आस्ट्रेलिया तों यूरेनियम दी लंबे समें दी सप्लाई नूं यकीनी बनाउण लई प्रशासकी प्रबंधां नूं अंतम रूप दित्ता गया। इक आजाद ते मुक्त हिंद प्रशांत खेतर लई दोवां मुल्कां ने रख्या ते सुरक्षा सहयोग ते इक सांझा ऐलाननामा अते समुंदरी सुरक्षा सहयोग लई इक ढांचा अपनाया। इस दौरे दा सब तों प्रभावशाली जन संपर्क प्रोग्राम मेलबोर्न दे मार्वल स्टेडियम विखे आयोजित मेलबोर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारती सम्मेलन रहा, जिस विच करीब 25,000 लोगां ने शिरकत कीती। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल दे करीब 10 लाख आस्ट्रेलियाई लोगां नूं दोवां मुल्कां दरम्यान एक जीवंत पुल दस्या। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी भारतीय भाईचारे की शलाघा करदिआं कहा कि बहु सभ्याचारक ताकत आस्ट्रेलिया की खुशहाली विच महत्वपूर्ण योगदान पा रही है। यह दौरा प्रसिद्ध मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड विखे खेड कूटनीति के एक इतिहासक प्रोग्राम के नाल खत्म होया। दोवां नेतावां ने भारत आस्ट्रेलिया खेड सहयोग ढांचा जारी किया, जो खेड विज्ञान ते खेड बुनियादी ढांचे के खेतरां च सहयोग नूं नवीं गति देवेगा। यह पहलकदमी अजिहे समय शुरू की गई है जदों भारत 2030 दीआं राष्ट्रमंडल खेडां की तैयारी कर रहा है ते आस्ट्रेलिया 2032 दे ब्रिस्बेन ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इस मौके क्रिकेट

0: coming for the free trade agreement signing, and that's very significant, of course, but to have sport involved as well, because I think that's very important, because it ties countries together. We play against each other both here in India and in New Zealand.
1: इस 100 साल के खेल सफर ने साबित कर दिता है कि हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं है, सगो भारत और न्यूजीलैंड विचकार दोस्ती, विश्वास और लोगों तो लोगों संबंधों का एक मजबूत पुल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं काजल।
2: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ इतिहासक एको एक टेस्ट मैच खेडेगी। मैच भारतीय समय मुताबिक दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। यह पहली बार है जदों लॉर्ड्स मैदान च महिलावां दा टेस्ट मैच खेडिया जाएगा। इस चार रोजा टेस्ट मैच विच रिकॉर्ड 33,000 तो वध लोगों ने पहला ही सीटां बुक करवा लिया ने। आखिर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने 3 दिन दौरे के तीजे ते आखिरी गेट च अज न्यूजीलैंड पहुंचणगे। पंजाब विच विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लई सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते कल तो 2 दिन विशेष कैंप का आयोजन होगा। मौसम विभाग वालों अज उत्तराखंड विच भारी मीह लई अलर्ट जारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अज लंडन च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ दोपहर बाद 3:30 बजे इतिहासक इको एक टेस्ट मैच खेडेगी। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलयकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुजश्ता 2 साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज की इस बातचीत से जामे इक्तसादी ताउन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुजाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दोतरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का यादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तावुन, नीज एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। ये दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में

0: अख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरक खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामनिकार से।
1: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, ख्वा वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या एमसीजी में खेलकूद की सिफारत हो, दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेहकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने तीन मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराह रास्त न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुँच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जाब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल नशीली दवाओं के जाब्तों को मुस्तहकम बनाना है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल दवाओं के लिए लाइसेंस की ज़रूरत में मौजूदा इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12% से ज्यादा एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल वो दवाएं जिनकी मकदार 30 मिलीलीटर से ज्यादा है, अब इन पर शेड्यूल के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की मसनूआत के लिए अब नशीली अशिया और कॉस्मेटिक्स कानून 1940 के तहत लाइसेंस की ज़रूरत होगी। भारत ने महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और उसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती, इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म व ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, ईजा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि साफ सुथरी तवानाई की मुल्क की बिजली की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि काबिल तजदीद वसाइल से इस महीने की 6 तारीख को बिजली की सप्लाई का 52% हिस्सा हासिल हुआ है। वजीर मौसूफ ने इसे भारत के माहौल के लिए साजगार तवानाई के ईको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत और इन्हिसार का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत बिजली के मैदान में रफ्तार और अज़्म के साथ लगातार तरक्की कर रहा है। नीति आयोग की रुकन डॉक्टर जोरामानिया ने यूनिसेफ भारत नुमाइंदा सिंथिया मैकैफ्री और उनके वफद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसका मकसद बच्चों पर मरकूज तरक्की, स्कूल तालीम और इंसानी तरक्की से मुतालिक इश्तराक को तकवीत देना था। नीति आयोग के मुताबिक बातचीत में महफूज और सबकी शमूलियत वाली आमोजिश, बुनियादी खानदगी और असातिज़ा की तालीम, तलबा की खुशहाली, साइबर हिफाजत और ख़ासतौर पर उमंगों वाले ज़िलों और ब्लॉकों में डिजिटल सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि इस साल नवंबर के आखिर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जो 2006 के बाद से पहले इंतखाबात होंगे। सदर अब्बास ने एक सदारती फरमान जारी करते हुए 28 नवंबर 2026 बरोज हफ्ता को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में जम्मू कश्मीर ने मरदम शुमारी 2027 के पहले मरहले यानी मकानात की फहरसाजी का अमल 100% डिजिटल डाटा जमा करने के साथ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि यहाँ अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद से

बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इधर आज रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज उस वक्त तारीख रकम करेगी जब वो लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाने वाले खवातीन का ये अब तक का पहला टेस्ट मैच होगा। ये इंग्लैंड और भारत खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान 16वां टेस्ट मैच होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिंसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाएकार करार दिया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
5: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
2: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
2: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
7: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
2: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
0: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये अंदाजा आप जरूर लगाइएगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं।

0: इस गीत के बाद कुछ लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को सिनेमा में जुबान दी, जिन्हें भोपाल की मिट्टी से उठकर बॉलीवुड तक अपना नाम लिखा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसे भारतीय हिंदुस्तानी कवि और गीतकार की जिनका नाम है असद भोपाली। इनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के पुत्र के रूप में हुआ था। असद भोपाली का असली नाम असदुल्लाह खान था। बचपन से ही शायरी का शौक मुशायरों में पढ़ते थे, लेकिन उनकी यही लगन उन्हें मुंबई खींच लाई। 50 के दशक में मुंबई आए, जेब में शायरी थी और दिल में सपने।
1: जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
2: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं, दरअसल
1: बेलें अज़र साहब ने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, गीत लिखते लेकिन लोग सुनते नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद फिल्मी दुनिया ने उन पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया और उनके अंदर सबको एक कलाकार नज़र आने लगा। असद भोपाली साहब को पहला ब्रेक 1958 में आई फिल्म मुजरिम से मिला। 60 और 70 का दशक असद भोपाली साहब के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। राज कपूर, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र सबकी फिल्मों के लिए लिखा। असद साहब की खासियत थी उनकी शायरी। उनकी शायरी बहुत आसान थी, कोई भारी लफ्ज़ नहीं थे, सीधे दिल में उतर जाती थी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं असद भोपाली साहब। असद भोपाली साहब ने फिल्मों के अलावा बहुत बड़े शायर भी थे और मुशायरों की जान थे। असद साहब दोस्तों की महफिल में बैठकर घंटों शायरी किया करते थे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। बात हो रही है असद भोपाली की। तो असद भोपाली साहब, भोपाल से मोहब्बत उनकी आखिरी दम तक रही। भले ही वे मुंबई में रहते थे, पर कहते थे कि मेरी जुबान में भोपाल बसता है। 1989 में आई हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए असद साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

जिंदगी के आखिरी सालों में असद साहब बीमार रहने लगे। 9 मई 1990 को मुंबई में उनका निधन हो गया। आज भी जब दुनिया बनाने वाले गीत बजता है तो असद भोपाली साहब हर किसी को याद आ जाते हैं। उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों के लिए लिखा और कई अवार्ड जीते। तो दोस्तों, ये थी असद भोपाली साहब की कहानी, भोपाल के एक लड़के से लेकर बॉलीवुड के माने हुए गीतकार तक का सफर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी निधि वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशमय दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, आज साल 2026 में हमारे पास बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और दिल की बात कहने के लिए इमोजीज हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए, आज से 60 से 70 साल पहले यानी 1950 और 60 के दशक में जब ये सब नहीं था, तब लोग प्यार कैसे करती थी, उनके दिल की बातें कहाँ होती थी। आज मैटिनी मेलोडीज़ के इस बेहद खास शो में मैं आपको लेकर चलूंगी उन 6 खास ठिकानों पर जो 50 और 60 के दशक के रोमांच की जान हुआ करती थी। तो चलिए यादों के इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ और चलते हैं हमारे पहले ठिकाने पर। आज का हमारा पहला ठिकाना है घर की खिड़की। आज जब किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइल देखते हैं, लेकिन 50 और 60 के दशक में ना प्रोफाइल थी, ना स्टेटस, ना ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर। उस दौर का सोशल मीडिया थी घर की एक छोटी सी खिड़की, गली के मोड़ पर बने उस घर की लकड़ी की खिड़की जिस दिन खुल जाए आशिक का पूरा दिन बन जाता था, और अगर पर्दा ज़रा सा हिल जाए तो समझिए दिल की धड़कन दोगुनी हो जाती थी। सारा रोमांस उस एक खिड़की के इर्द गिर्द घूमता था। बिना एक शब्द बोले सिर्फ खिड़की से मिलने वाली एक नज़र दिल के तार छेड़ देती थी। तो आइए सुनते हैं उसी शर्मीली खिड़की और आँखों के इशारों को बयां करता ये बेहद खास सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, ओ निगाहें मस्ताना, वेलकम बैक दोस्तों। आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ठिकाने की, जो कोई जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। वो एहसास है चिट्ठी। आजकल तो हम दिल की बात टाइप करते हैं और एक सेकंड में सेंड कर देते हैं और सामने वाले के लास्ट सीन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उस दौर में नीले रंग के अंतर्देशी पत्र या पोस्टकार्ड पर स्याही से दिल का हाल लिखा जाता था। कई बार एक चिट्ठी लिखने में पूरा दिन निकल जाता था। एक एक शब्द को सोचकर मोतियों की तरह सजाकर लिखा जाता था और कभी कभी तो उस कागज पर इत्र भी छिड़का जाता था। और उस चिट्ठी को पोस्ट करने के बाद इंतज़ार का असली मतलब था डाकिये की साइकिल की घंटी। और जब जवाब आता था तो उसे एक बार नहीं कई कई बार पढ़ा जाता था। इस इंतज़ार में जो मीठा दर्द था वो आज की जनरेशन कभी महसूस नहीं कर पाएगी। आइए सुनते हैं कागज़ पर लिखे उसी प्यार की एक बेहद सुरीली धुन। ये गीत लिया है हमने फिल्म कन्यादान से।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और देखिए, सच बात है, आज वो खत तो नहीं है पर उस खत की महक आज भी इन गानों में जिंदा है। अब चलते हैं हमारे तीसरे ठिकाने की ओर। वो ठिकाना है घर की छत। 50 और 60 के दशक में घरों की छतें सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए नहीं होती थी, वो मुलाकातों का सबसे महफूज ठिकाना था। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता था, तब छत पर जाकर पतंग उड़ाने के बहाने या बालों को सुखाने के बहाने जो दो दिलों की नज़रें मिलती थी, वो भी कमाल था। और रात के वक्त तारों की छाँव में चांद को गवाह मानकर जो खामोश बातें होती थी, उनकी बात ही कुछ और होती थी। आइए सुनते हैं उसी छत के रोमांस को समेटे हुए ये बेहद लाजवाब सा गीत।

हिंदी प्रेस चैनल पर आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो चलिए बात करते हैं हमारे चौथे ठिकाने की, जो हर लड़की के कमरे का सबसे बड़ा राजदार होता है, और वो है आईना। प्यार में सबसे पहले बदलाव चेहरे पर दिखाई देता है और उस बदलाव का पहला गवाह होता है आईना। वो बार बार बालों को संवारना, आईने में खुद को ही देखकर मुस्कुरा देना और फिर शर्मा जाना। आईने के सामने की गई वो बातें उस दौर के रोमांस का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। तो आइए सुनते हैं आईने के सामने बीते उन हसीन पलों की याद दिलाता ये एक बेहद मीठा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, मैं तो सज गई रही सजना के लिए। तो देखिए, प्यार में दर्पण का, आईने का कितना बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उसी के सामने हम सब कुछ अपने मन की बात कह देते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे पांचवें ठिकाने की तरफ। पांचवा ठिकाना है हमारा शाम की सैर और फुटपाथ। आज डेट का मतलब कैफ़े, मॉल या रेस्टोरेंट हो सकता है, लेकिन उस दौर में सबसे खूबसूरत डेट होती थी शाम के वक्त सड़क के किनारे फुटपाथ पर धीरे धीरे साथ चलना। हाथों में हाथ नहीं होते थे, ना कोई सेल्फी ना कोई फ़ोटो, बस साथ साथ चलते हुए कुछ बातें, कुछ खामोशियां और ढेर सारी धड़कनें, हवा का चलना, पेड़ों से पत्तों का गिरना और उस रास्ते का कभी ख़त्म ना होना, यही दुआ होती थी दोनों दिलों की। तो आइए चलते हैं उसी शाम की सैर पे, धीमी रफ्तार की उस मोहब्बत के साथ।

0: सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए, सोचेंगे खोए खोए, कोई था उन पे निसार हो गया, जी प्यार हो गया।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मैटनी मेलोडीज़ और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपके मेल आ गए हैं, मैं उन्हें पढ़ लेती हूँ। ये मेल आया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का और इनके साथ हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, किशनगंज बिहार से रवि मोहनदास, आशा देवी और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं हमारे इस सुहाने सफ़र के आखिरी और सबसे रोमांटिक ठिकाने का। वो एक काला छाता दोस्तों, आज की बारिश में लोग भीगने से बचने के लिए तुरंत कैब बुक कर लेते हैं, लेकिन 50 और 60 के बारिश का सबसे बड़ा सहारा था वो एक काला छाता। जब अचानक तेज बारिश शुरू होती थी और दो लोग उस एक छोटे से छाते के नीचे आ जाते थे, तो वो छाता पूरी दुनिया से अलग उनका एक छोटा सा मखमली कोना बन जाता था और दिलों की दूरी भी कम हो जाती थी। शायद इसीलिए पुरानी फिल्मों में बारिश सिर्फ मौसम नहीं, मोहब्बत का दूसरा नाम थी। तो चलिए सुनते हैं उसी छाते के नीचे पनपती मोहब्बत का ये अमर तराना।

तो श्रोताओं, आज के मैटिनी मेलोडीज में बस इतना ही। इसको, इन खूबसूरत और मासूम एहसासों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिएगा। अगले शो में कुछ और ऐसी ही बातों के साथ वापस आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। खुश रहिए और मस्त रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

उर्दू मजलिस के प्रोग्राम महफिल समा के साथ हाजिर खिदमत हूँ मैं नगमा नईम आदाब अर्ज है। समईन आज के इस प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम आपको सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन कव्वालियाँ और साथ साथ बातचीत करेंगे आलमी योम तवानाई खुद मुख्तारी यानी ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे पर। तो आइए बातचीत करते हैं ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे पर। यह एक बैनुल अक्वामी मुहिम है जो हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया को गैर काबिल तजदीद तवानाई जैसे कोयला तेल और गैस से छुटकारा दिलाकर साफ और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शमसी हवाई और पानी की तरफ मुंतकिल करना है। दुनिया भर में रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए जो रिवायती ईंधन इस्तेमाल होता है वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। दूसरा ये कि इस फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन गैस पैदा होती है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इस दिन को मनाने का एक मकसद ये भी है कि इस आलूदगी को कम करना जो कि रिवायती ईंधन से फैलती है, और आलूदगी को कम करने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग असरात से ज़मीन को बचाना है।

समय नबी आप सुन रहे थे चंचल भारती और साथियों से ये कव्वाली। और समय हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे पर, यानी आलमी यौमे तवानाई खुद मुख्तारी पर। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा पैगाम है खुद इनसारी, यानी सेल्फ डिपेंड। कोई भी मुल्क या खित्ता जो बाहर से तेल और गैस दरामद करने के बजाय अपने कुदरती माहौल से बिजली या ईंधन को पैदा करता है, वो ज़्यादा महफूज रहता है। इससे बैरूनी दबाव, कीमतों के उतार चढ़ाव का खतरा कम होता है। यानी हर मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात ज़्यादा से ज़्यादा अपने वसाइल से पूरी करे। इसके अलावा एक बुनियादी मकसद इस दिन को मनाने का ये भी है कि माशी इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रोज़गार के मौके पैदा होना। काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी से नए नए रोज़गार पैदा होते हैं। ये दिन हुकूमतों और इदारों को इस बात की तरगीब देता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी और पॉलिसियों को फ़रोग दें जो तवील मुद्दत के लिए सस्ती और पायदार हों।

सामाईन अभी आप जाफर हुसैन खां बदायूनी और साथियों से कव्वाली सुन रहे थे। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे की तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो इस दिन का इंतखाब इत्तेफाक नहीं है। 10 जुलाई अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने जदीद बिजली के निज़ाम और काबिल तजदीद तवानाई के नज़रियात की बुनियाद रखी थी। ये दिन उनके साइंसी विजन को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन बहुत अहम रुकात पर रोशनी डालता है, जिसमें बताया जाता है कि तवानाई के मुतबादल ज़रा यानी अल्टरनेटिव सोर्सेस क्या हैं, और वो हैं सोलर एनर्जी यानी सूरज से रोशनी बनाना, विंड एनर्जी यानी हवा से तवानाई हासिल करना, हाइड्रो पावर यानी बहते हुए पानी से बिजली बनाना वगैरह। तो समय ये थी मुख्तसर जानकारी ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे पर।

0: समय नबी आप अख्तर जियाई कव्वाल और साथियों से ये कव्वाली सुन रहे थे और इसी के साथ महफिल समा प्रोग्राम खत्म करने की अपने मेजबान नगमा को इजाजत दीजिए। पेशकश थी इंतजार सैफी की। खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज शिमला के भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में वंदे मातरम एक यात्रा प्रदर्शनी के उद्घाटन और सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्याएं बनाई गई हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमों को और कठोर बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एथिल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के अंतर्गत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कल जवाब प्राप्त हुआ था। 1 जुलाई को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले में परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर सुशासन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार और रविवार को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। ये शिविर सवेरे 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 28 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार वर्षा की आशंका है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour, where he received a warm ceremonial welcome from New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The two leaders shared a warm embrace as Prime Minister Luxon personally received Mr. Modi on the red carpet at Auckland Airport. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception on the tarmac with representatives of the Indian and New Zealand Armed Forces in attendance. Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade, commerce and defence. The visit to New Zealand will be the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, the Prime Minister will address a large gathering of the Indian diaspora during the visit. Earlier, Prime Minister Narendra Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia comprehensive strategic partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for the warm hospitality during his visit. In a social media post after his Australia visit concluded, Mr. Modi said the outcomes of the visit have further strengthened the India-Australia partnership and opened new avenues for cooperation across diverse sectors. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. In a social media post, Mr. Meghwal said a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. The central government has amended Drug Rules 1945 to strengthen regulation of high alcohol-containing drug formulations. The Ministry of Health and Family Welfare has removed the existing exemption from licensing requirements for formulations containing ethyl alcohol. According to the notification issued by the Ministry of Health and Family Welfare, all formulations containing more than 12% per volume of ethyl alcohol in quantities exceeding 30 milliliter will no longer be covered under the exemption provided to them under Schedule K. Such products will be required to obtain the requisite licenses under the Drugs and Cosmetics Act 1940. The amendment is expected to strengthen regulatory oversight over those medicinal products containing alcohol, ensuring their supply only through the regulated pharmaceutical supply chain. Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today chaired the third meeting of the Mission Steering Group to review the progress of the Ayushman Bharat Digital Mission. During the meeting, it was noted that the Ayushman Bharat Digital Mission has emerged as one of the world's largest digital health ecosystems, with around 94 crore Ayushman Bharat health account numbers created and 105 crore health records linked. It also highlighted that 5.33 lakh health facilities and around 10 lakh healthcare professionals have been registered on the National Digital Health Registries. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said the government is planning to introduce E85 fuel, which would be about 20 rupees per litre cheaper than standard E20 petrol. He said E85 would be restricted to vehicles specifically designed to use the fuel. Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. The Sensex rose 828 points to close at 77,569. The Nifty also climbed 244 points to settle at 24,207. And in the FIFA World Cup, France stormed into the semifinals after defeating Morocco 2-0 in the first quarterfinal in Boston, USA. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। खोए हुए व्यक्ति का नाम है रजत सिसोदिया, पुत्र राजेश सिसोदिया। इन्हें अंतिम बार 10/5/2026 को कल्याण कुंज बरोला सेक्टर 49 नोएडा में देखा गया। इनकी आयु 32 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 2 इंच। ये बोलने में असमर्थ हैं। ये घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है कुमारी शिवानी। इनकी आयु 19 वर्ष है। आंख नाक कान औसत, लंबाई और कद 5 फीट 5 इंच। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी इकोटेक गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें। अगली जो सूचना है वो है हिमांशी, पुत्री सौदन सिंह। इनको अंतिम बार हनुमान मंदिर के सामने वाली गली ग्राम सिराना कासना गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। इनकी आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत, ऊंचाई और कद 5 फुट 5 इंच। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना कासना गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें। अगली जो सूचना है वो है श्रुति सैनी की। इनकी आयु है 22 वर्ष। शरीर की बनावट इकहरा शरीर, ऊंचाई और कद 5 फीट 2 इंच। ये घर से स्कूल के लिए गई फिर वापस नहीं लौटी। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है रानी, पुत्री विजय। इनकी आयु 19 वर्ष है। सामान्य शरीर, ऊंचाई और कद 5 फीट। इनके संबंध में जिस किसी को भी कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना कासना गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना आंचल, पुत्री देवरिया, ग्राम फूलपुर थाना जासवा गौतम बुद्ध नगर। इनकी आयु 19 वर्ष है। शरीर की बनावट अकेहरा शरीर, गोल चेहरा, ऊंचाई और कद 5 फीट 2 इंच। ये हरे कलर का सलवार सूट पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है महक, पुत्री जलालुद्दीन। इनकी आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत, ऊंचाई और कद 5 फुट 2 इंच। इनके ओंठ के नीचे 3 तिल के निशान हैं। इनके संबंध में जिस किसी को भी कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है काजल, पुत्री प्रमोद कुमार, निवासी ग्राम गोपालपुर थाना साहबर जनपद कासगंज। इन्हें अंतिम बार मैजिक कंपनी साइट 4 थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में देखा गया। इनकी आयु 18 वर्ष है। सामान्य शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 4 इंच। ये लाल रंग की कुर्ती, मेहरून रंग का प्लाजो और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में

कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना बीटा 2 गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, यह है नई सोच, नए सपनों, नए जुनून को साथ लेकर चलने वाला युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं पृथ्वीराज और आज शुक्रवार को इस कार्यक्रम में होगा कुछ खास, कुछ मनोरंजक और कुछ जानकारी भरी बातें।
1: विष्णु के रूप से लेकर माधुरी दीक्षित के 1 2 3 तक जो नाम सबकी जुबान पर है, वही नाम लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है मोहिनी और आज का युवा वाणी कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं इस गाने के साथ।

0: मोहिनी, तुम्हें पता है, ये सिनेमा ही तो है जिसके पर्दे हमें हमारी साधारण सी दुनिया के परे बड़ी सरलता से ले जाते हैं। दुनिया के कितने ही खूबसूरत नज़ारे घर बैठे दिखाते हैं। चलती ट्रेन के पीछे भागती अंजलि, बरसातों में भीगता मैडी, ये सब अपने दोस्त से नजर आते हैं।
1: तो मुझे याद है पृथ्वी, कि मैंने आखिरी बार वो कौन सी फिल्म देखी थी जिसमें मैंने कोई ऑकवर्ड सीन आने पर मम्मी पापा से नजरें चुराई या वॉशरूम का बहाना लेकर रूम छोड़कर नहीं गए थे। और वो थी रब ने बना दी जोड़ी। पर आज के टाइम पे वो मूवीज बड़ी सोच समझ के चूज करनी पड़ती हैं।
0: सही कहा मोहिनी। अच्छा, और फिर तुम्हारा आज की ओटीटीज के बारे में क्या सोचना है?
1: पृथ्वी, कल की बात है, मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुम रियलिटी शोज देखना क्यों पसंद करती हो, दूसरों की जिंदगी में या झगड़े में तुम्हें क्या इंटरेस्ट है। तो पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर स्क्रिप्टेड सिनेमा की जगह किसी रियल इंसान को देखना पसंद किया जा रहा है, आप उससे रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज ही क्या है।

0: मोहिनी, ओटीटी का तो सही कहा तुमने। ये बताओ, तुम्हें सीरियल्स का कंटेंट ड्रामेटिक नहीं लगता? जैसे आजकल के कुछ टीवी चैनल्स के सीरियल्स काफी वायरल हो रहे हैं।
1: देखो पृथ्वी, अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो संजय लीला भंसाली का सरस्वती चंद्र, जो कि गोवर्धन राम त्रिपाठी के क्लासिक गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र पर आधारित नियति से जुड़े दो प्रेमियों की एक विस्तृत कहानी है। टीवी श्रृंखला के एक धनी रईस की कहानी है, जो पहले तो गांव की सुंदरी से अपनी तय शादी को ठुकरा देता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वही उसकी सच्ची मोहब्बत है। उनकी ये यात्रा पारिवारिक विश्वासघात, अलगाव और खलनायकों द्वारा उन्हें अलग करने के प्रयासों से भरी हुई है। तो मुझे तो इस तरीके के सीरियल्स पसंद आते हैं। अच्छा पृथ्वी, तुम भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि एक कलाकार के लिए आज के टाइम का सबसे बड़ा डिलेमा क्या है?
0: अब मोहिनी, जैसे देखें तो दिलजीत दोसांझ जैसे आर्टिस्ट को देखकर ये साफ समझ में आ जाता है कि कभी ना कभी उनके दिल में कोई शंका जरूर रही होगी कि जिसमें हम अच्छे हैं, यानी कि सिंगिंग को फॉलो करें या उसे करें जिसे दिल चाहता है, जैसे कि एक्टिंग। जरूर उनकी एक्टिंग स्किल्स कमाल है, मगर अपनी सिंगिंग से जो मैसेज वो युवाओं तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। और आइए इसी के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत गाना।
2: स्टार्ट होने लग गया।

पृथ्वी, अगर हॉलीवुड की बात की जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स, चाहे माइक, स्टीव, हेनरी, ये लोग अट्रैक्टिव तो थे पर कहानी को असली सक्सेस का दर्जा दिलाने वाली कोई और नहीं, एक फीमेल कैरेक्टर थी, इलेवन। तो यानी आज की डेट में फीमेल कैरेक्टर्स भी अपने दम पर कोई भी फिल्म या वेब सीरीज हिट कराने का दम रखती हैं। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं खूबसूरत सा गाना।

0: चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक। सिनेमा ओटीटी से चलते हैं अब लिटरेचर की तरफ। मैं भरसक प्रयत्न करती हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को प्रेमचंद, कृष्णचंद, विश्व साहनी जैसे लेखकों की जानकारी मिले। ये बात किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक रूसी इंडोलॉजिस्ट ने कही है, डॉक्टर ल्यूदमिला खोकलोवा।
1: पृथ्वी, तुम्हें पता है डॉक्टर खोकलोवा ने कई दशकों तक रूस के छात्रों को संस्कृत, हिंदी, भारतीय दर्शन, साहित्य और इतिहास पढ़ाया। उन्होंने रूसी, अंग्रेजी, हिंदी और 6 पुस्तकें और 92 शोध पत्र लिखे, जिनके माध्यम से हजारों छात्रों और शोधकर्ताओं ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझा।
0: हाँ मोहिनी, और इसी वजह से भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार में उनके आजीवन योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। आइए अब चलते हैं आगे। एक समय था जब पत्रकारिता एक मिशन था, एक संकल्प था, और आज इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, प्रोफेशन बन चुका है। चलिए अब आपको सुनाते हैं वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पांडे जी के साथ संतोष द्विवेदी जी के बात। शीर्षक है साहित्य कल, आज और कल।
2: जयप्रकाश पांडे जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद संतोष जी।
2: दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक साहित्य और पत्रकारिता में क्या अंतर संबंध है, और दूसरा कि आप अपने आप को एक साहित्यकार के तौर पर चाहते हैं जाना जाए या फिर एक पत्रकार के तौर पर।
3: संतोष जी, देखिए, एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपने किया। दरअसल 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बीच की बात है, पश्चिमी समाज में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, साहित्य और पत्रकारिता बटे हुए नहीं थे। भारत में भी हम देखते हैं तो साहित्य और पत्रकारिता दो अलग अलग चीजें नहीं रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हों या मुंशी प्रेमचंद हों या

0: तिलक हूँ या महात्मा गांधी हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी हूँ, जो भी जितने भी हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, ये सभी एक साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। दरअसल साहित्य और पत्रकारिता को हमें समझने की जरूरत है। इन दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर, और वो अंतर ये है कि पत्रकार जहाँ केवल घटनाओं को संप्रेषित करता है, वहीं साहित्य उससे जुड़ता है। वह जो लेखक है वह अपनी कल्पना को भी उसमें स्थान देता है, भावनाओं को भी जोड़ता है, और वह यह प्रयास करता है कि समाज में कुछ परिवर्तित हो जाए। इसीलिए जब हम स्वतंत्रता संग्राम के समय को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितने भी हमारे साहित्यकार थे वह कहीं न कहीं पत्रकार भी थे, और यह क्रम लगभग 80 के दशक तक आता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो पहले के जो हमारे समाज के अगुवा थे या जिन्होंने समाज को दिशा दी, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, या गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे महान पत्रकार रहे हों, तो वो अलग अलग तरह से पत्रकारिता के तौर पर, सामाजिक सुधार के तौर पर, या यूं कहें कि समेकित स्वरूप में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसे दिशा दे रहे थे। मानते भी हैं कि भारतीय पत्रकारिता का जो जन्म है एक तरीके से साहित्य की गोद में हुआ है। अगर हम समझना चाहें, आज के श्रोता जो हमारे हैं, इस बात की समझ अगर विकसित करना चाहें, तो उस दौर की पत्रकारिता को देखते हुए और आज की दौर की पत्रकारिता को अगर हम देखें, तो आप दोनों में कुछ समानता या असमानता कैसे देखते हैं आप इसको?
0: देखिए, अभी उस समय की सामाजिक सरोकारों की तुलना तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो माध्यम बदल चुका है, दूसरा उद्देश्य बदल चुका है। आज पत्रकार घटनाओं को रिपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक तो समय की सीमा में बंधा हुआ है सब कुछ। पुराने समय में समय की सीमा नहीं थी, हमारे सामने एक लक्ष्य था, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के पास या स्वतंत्रता सेनानियों के पास। हम अंग्रेजी शासन के अधीन थे, हमें जनता को जागरूक करना था, हमें जनता को नेतृत्व करना था, हमें एक स्वरूप प्रस्तुत करना था, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, बाबा साहेब हों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों। तो एक साथ आप देखेंगे कि उस दौर के लोग बराबर काम करते थे। अब आज अगर हम सोचें कि कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार, दरअसल ये दोनों बट इसीलिए गए कि 80 के दशक के बाद, 70 के दशक के बाद जिस तरह से समाज अपने को परिवर्तित करने लगा और दूसरे माध्यम लगातार आने लगे, तो उद्देश्य बदल गए। आज के समय में साहित्यकार अपनी कृतियों का सृजन करता है, वह अपनी कल्पना की बातों को या अपनी सोच को, अपने अनुभवों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। पत्रकार भी वही काम करता है, लेकिन पत्रकार का उद्देश्य तात्कालिक है। वर्तमान समय में जो हमारा पत्रकार समुदाय है, उसके पास चूंकि तकनीक का अंतर है, उसके पास वो समय नहीं है, तो वो बतौर साहित्यकार अपने को स्थापित नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं अलग है। और जो साहित्यकार है वो पत्रकारिता में अपना योगदान उस रूप में नहीं कर पा रहा है।
1: जैसे आपने कहा कि जो पत्रकारिता है वो तात्कालिक लक्ष्यों को साधता है, तो वहीं जो साहित्यकार होता है वो दीर्घकालिक चीजों को देखता है, समाज को दिशा देता है। इसी में जोड़ते हुए जयप्रकाश जी, अगर हम देखें जो पत्रकारिता का जो एक तरह से बदलाव आया, मिशन से प्रोफेशन, या फिर आप कहें कि मीडिया इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है, आज के समय में अगर समाज को दिशा देना है और साथ के साथ जो एक और चलन बढ़ गया कि सबसे तेज या सबसे पहले, तो इसको एड्रेस करते हुए जो आज का पत्रकार है वो कैसे समाज का अगुआ बने?
0: आज का पत्रकार अपने को अगुआ के रूप में देख भी नहीं रहा है। दो चीजें हैं हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार है वह अपने को सेलिब्रिटी के तौर पर देख रहा है, जो एंकर है, तो वह अपने काम से जितना नहीं जाना जाता उतना अपने चेहरे से जाना जा रहा है, जबकि पुराने समय में ये बात नहीं थी। इसी तरह से साहित्यकार, साहित्यकार जो वर्तमान में बदलाव हुआ है उससे अपने को जोड़ने में जूझ रहा है। मैं बड़े से बड़े साहित्यकारों की बात करूं तो मेरा निरंतर उनसे संवाद होता रहता है, वो अभी तक तकनीक के बदलाव को भी नहीं समझ पा रहे हैं। स्वाभाविक है, हम एक बुजुर्ग से 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र के लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तकनीक को समझ लें, लेकिन जो आज का युवा है उसे यह समझना पड़ेगा और पत्रकार को भी समझना पड़ेगा कि आप स्थायित्व तो तभी पाएंगे जब आपके अंदर गुणवत्ता होगी, आप समाज से जुड़े हों।
1: जी बिल्कुल, पहले की किताबों को भी आपने देखा है, आज की किताबों को भी आप देख रहे हैं, तो जो पहले के साहित्यकार हैं और या जो अब का जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें भाषा की बात हो या उनके सामाजिक सरोकारों की बात हो, उसमें क्या

0: कोशिश कर रहा है। इस बिंदु पर हम ये देखेंगे कि जो आज का पत्रकार है या जो नया युवा है जो पत्रकार बनना भी चाहता है वो नई तकनीक से तो वाकिफ, साहित्यकार जो है नई तकनीक से वाकिफ नहीं है, वो अपने युग में है, वह इस बदलाव को नहीं देख रहा है। तो हम उस तरह के स्थायी साहित्य की अगर बात करें तो आज के समय में वैसी किताबें हमें बहुत कम मिलती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी की किताबों में जो भारत के अंग्रेजी लेखक हैं वह आज पौराणिक आख्यानों को लिख रहे हैं और उससे वो चर्चित हो रहे हैं दुनिया भर में। यानी हम वहीं पे स्थापित हो रहे हैं, हम अपने पौराणिक काल में जा रहे हैं, महाभारत की कथाओं में जा रहे हैं, रामायण की कथाओं में जा रहे हैं और उनको हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं तो हम स्टार और सेलिब्रिटी राइटर बन जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो पुरानी चीजें थी एक तरीके से हम अपने मूल में ही फिर से लौट के जा रहे हैं, भाषा का अंतर है और वो भाषा का अंतर उन्हें सेलिब्रिटी बना दे रहा है। जयप्रकाश जी, जैसे बहुत सारे युवा श्रोता भी हमें इस समय सुन रहे हैं तो उन युवा श्रोताओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भविष्य के पत्रकार हैं या फिर भविष्य के साहित्यकार हैं, दोनों ही तरह के लोग जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा?
0: मेरा मानना है कि जब भी कंटेंट की दुनिया में हम होंगे, यानी जब लिखने पढ़ने की दुनिया में होंगे, बोलने की दुनिया में होंगे, तो हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी। दूसरा ये है कि हमें पढ़ना जरूर चाहिए, बिना पढ़े कोई भविष्य नहीं है। जब आप लिखने पढ़ने बोलने के माध्यम में हैं तो आपकी बुनियाद पढ़ाई लिखाई से ही बनेगी, तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें तकनीक को समझना है, लेकिन समझने के साथ साथ हमें पढ़ने की जरूरत है। और जब तक हम अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपनी अतीत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को अगर नहीं जान पाएंगे तो हम भविष्य में कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। आज भारत का गौरव क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रज्ञा के स्तर पर, आध्यात्म के स्तर पर, सभ्यता के स्तर पर, धरोहर के स्तर पर हम दुनिया की सर्वाधिक लचीली संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुम्बकम को अपना मूल मंत्र मानती रही है। हम हर प्राणी में भी आत्म तत्व देखते हैं। तो हमारे युवाओं को मेरा सुझाव ये है कि अगर आप पत्रकारिता या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर स्थान बनाना चाहते हैं तो पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं।
1: जी बिल्कुल, जीवन में पढ़ाई और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जयप्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुमूल्य जानकारी साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पांडे जी को, जिन्होंने साझा किया पत्रकारिता के बदलते दृश्य को।
3: तो कैसे चूक सकते हैं हम एक प्यारा सा गाना सुने बगैर, चलिए चलते हैं उसी ओर।

0: तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है क्विक बज।
1: क्विक बज की बात है तो क्विकली ये बताओ मोहिनी, तुम्हें पता है भारत में हर साल कितनी फिल्में बनती हैं?
0: लेट मी गेस, लगभग 2000, क्योंकि सिर्फ हिंदी सिनेमा थोड़ी है, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मलयाली, असामी जैसे रीजनल सिनेमा भी तो हैं।
1: अरे वाह, सही पता है तुम्हें।
0: अच्छा तुम बताओ पृथ्वी, ये सिनेमा में एक अवार्ड का नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों है?
1: अच्छा तुम्हें नहीं पता? क्योंकि दादा साहब ने ही तो हिंदी की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हें पता है एक नई फिल्म फीमेल लीड के साथ आई है?
0: जी हाँ, मुझे पता है आप किस फीमेल लीड की बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं बात अल्फा की, जिसने वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ का कलेक्शन कमाया है एक हफ्ते में। और तो और, यश की फिल्म टॉक्सिक का एक नया गाना रिलीज भी हुआ है, जिसका नाम है तबाही, और जिसमें है कियारा आडवाणी।
1: चलो अब सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: क्या हुआ था? 10 जुलाई 2015 को माहिष्मति साम्राज्य के दो भाइयों अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच सिंहासन के संघर्ष और पारिवारिक प्रेम विश्वासघात की एक महाकाव्य गाथा है। इस दिन की सबसे बड़ी घटना ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग का साल 2015 में रिलीज होना है, जिसने भारतीय सिनेमा के पैमाने और कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: आज ही के दिन मोहिनी 1962 में दुनिया का पहला सक्रिय संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट टेलस्टार 1 लॉन्च हुआ। अटलांटिक महासागर के पार पहला टेलीविजन लाइव प्रसारण हुआ।
0: सोचने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ बनाते वक्त नहीं सोचना कि हम क्या कंटेंट बना रहे हैं, बल्कि चुनते वक्त भी चुनना है कि हमें क्या देखने जा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे मस्तिष्क, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं पर बहुत असर पड़ता है।
1: मोहिनी, मुझे लगता है आज कितनी ही वेब सीरीज है जिनके प्रोडक्शन डायरेक्शन में सालों लग जाते हैं, क्योंकि अब निर्माता भी समझ गए हैं कि जरूरी है क्वालिटी सीरीज बनाना, व्यूअर्स को अब क्वालिटी चाहिए।
0: अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
1: मैं पृथ्वीराज
0: और मैं मोहिनी अब लेते हैं आपसे विदा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम 4:15 से 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने का आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो लोक रंजनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम हमारा लोक रंजनी।
1: शीतल बहन, अभी मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है और मानसून ने जो है ना कि पूरे देश को भिगा दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गर्मी थी ना उससे बड़ी राहत मिली है।
0: राहत तो मिली है, और जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे देश को भिगा दिया है, भिगा ही नहीं दिया है, पूरी अपनी चपेट में ले लिया है। यूँ कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा भारत हमारा पानी में है। बाढ़ हर जगह देखने को मिल रही है, पानी इतना ज़्यादा बरस चुका है। जहाँ लोगों को इतने दिन से इंतज़ार था, वो दो दिन का इंतज़ार लोगों को भी मतलब यूँ हो गया कि बस अब बहुत हो गया।
1: हालात दो दिन की बारिश ने पूरा जो है ना मन मतंग को एकदम
0: जी
1: कर दिया है। तो बहरहाल अपने श्रोताओं को हम ले चलते हैं जो है कि अपनी धुन और संगीत की नगरी की तरफ ना, जिसका नाम है लोकरंजनी।
0: जी बिल्कुल। और कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाते अपने श्रोताओं को भूपेंद्र सिंह को।

0: तो श्रोता सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं जो है कि शीतल, ये जो महान बताने की बात इन्होंने बताई ना कि महेंद्र ने कि महिलाएं महान हैं, ये हमारा वेद पुराण बताता सच है। यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात बहुत पहले से कही गई है। तो भूपेंद्र की आवाज़ और उनकी बातें एकदम सही है, लेकिन जो है कि उंगलियां भी कुछ ना कुछ बतलाती हैं, कहती हैं, वेदों पुराणों की ही बात नहीं है। तो हम एक बार अपने श्रोताओं को ले चलते हैं प्रियंका चौधरी की तरफ, जो कह रही हैं कि उंगलियाँ कैसे बातें करती हैं।

0: तो उंगलियां आपस में बतलाएं, प्रियंका चौधरी की आवाज़ में ये सुन रहे थे आप, जिसमें आदमी का अभिमान जो होता है वो कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सीख दी है।
1: जी बिल्कुल। और प्रियंका चौधरी की बात सुनते हैं
0: कर्मपाल शर्मा और
1: जी।
0: मंजू शर्मा को जो ये बता रही हैं कि हंसने में क्या मज़ा है, क्या इसका मर्म है, हंस हंस प्रेम से बोले जा, ये बता रही
1: जी
0: हैं।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर हैं और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: विदुषी वत्स। नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहले जान लेते हैं आज क्या है खास कार्यक्रम में। आज रोज की तरह फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी रोमांचक जानकारियां तो होंगी ही, साथ ही साथ क्रिकेट की बात करेंगे, जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा T20 मैच भी होगा और इस वक्त विमेंस क्रिकेट में जो टेस्ट मैच चल रहा है उसकी लाइव अपडेट भी हम कार्यक्रम के दौरान आपको देंगे। विंबलडन 2026 में क्या है खास वो जानेंगे और आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 में कौन कौन से खिलाड़ी जो है आगे तक पहुंचे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। शूटिंग की बात करेंगे, U23 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या रहा खास वो जानेंगे। मोनेको डायमंड लीग में एक भारतीय, एक सिंगल भारतीय यानी कि एक अकेला खिलाड़ी जो है सर्वेश कुशहारे, वो पहुंचे हैं और उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। साथ ही साथ U19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के साथ विमेंस हॉकी और रेसलिंग भी होगा।

तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्रिकेट से, क्योंकि महिला क्रिकेट में इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारत इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है। 25 ओवर का मैच हो चुका है, लंच ब्रेक है इस वक्त और भारत 3 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना चुका है। और स्कोरबोर्ड पर अगर नज़र डालें तो स्मृति मंधाना बैटिंग कर रही हैं, जिन्होंने 56 रन बना लिए हैं। शेफाली वर्मा आउट हो चुकी हैं 0 पर और यास्तिका भाटिया 12 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं और जेमिमा रॉड्रिक्स भी 35 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं। और स्मृति मंधाना के साथ इस वक्त बैटिंग कर रही हैं हरमनप्रीत कौर।

0: इंग्लैंड के ब्रिस्टल से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया है और श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही मेजबान टीम ने श्रृंखला भी अपने नाम कर ली है। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ब्रिस्टल की उछाल भरी पिच पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी आउट कर दिया। मुश्किल परिस्थितियों में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अय्यर ने 49 गेंदों में नाबाद 80 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल रहे। उनकी संघर्षपूर्ण पारी के बदौलत भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। हालांकि यह लक्ष्य इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने काफी छोटा साबित हुआ। भारत को शुरुआती सफलता तब मिली जब अर्शदीप सिंह ने जॉस बटलर को केवल 8 रन पर आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बनाए रखा। हैरी ब्रूक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए केवल 35 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए, जबकि फिल सॉल्ट ने दूसरे छोर से नाबाद 59 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 146 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 37 गेंद शेष रहते हुए भी मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच बनाए गए। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने इतिहास भी रच दिया है। यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 1 से अधिक मैचों वाली द्विपक्षीय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला अपने नाम की है। अब आइए सुनते हैं इस मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा।
1: This is the transition phase and we will be making a lot of mistakes. Definitely 158 wasn't the perfect total on the board and eventually we saw how quickly they chased down. We fell a bit short in terms of our execution. Definitely happy with my performance, but see, if it's not on the winning cause, it just goes to the side. So disappointed on that aspect because whenever I play, I want to perform and see to it that my team wins. But unfortunately today wasn't that day. Definitely look forward in the next game.

फ्रांस ने फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार अपनी जगह पक्की कर ली है। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर उस

0: की ऐतिहासिक अभियान का अंत कर दिया है। मुकाबले का पहला हाफ काफी रणनीतिक रहा। फ्रांस ने शुरुआत से ही गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और माइकल तथा देजीरे के जरिए लगातार मोरक्को के डिफेंस पर दबाव बनाया। इसका फायदा फ्रांस को 26वें मिनट में मिला, जब नुसैर की चुनौती के बाद किलियन एम्बापे को पेनल्टी मिली। हालांकि मोरक्को के गोलकीपर यासीन ने शानदार बचाव करते हुए एम्बापे की पेनल्टी रोक दी और हाफ टाइम तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने धैर्य बनाए रखा और आखिरकार 60वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली। एम्बापे ने बॉक्स के बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हुए शानदार शॉट लगाया जो सीधा गोल पोस्ट में गया। इसके केवल 6 मिनट बाद फ्रांस ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। इस बार एम्बापे ने 2 रक्षकों को अपनी ओर खींचते हुए उस्मान को शानदार पास दिया, जिसे डेम्बले ने गोल में बदलकर फ्रांस को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी। मोरक्को ने अशरफ हकीमी के जरिए वापसी की कोशिश की, लेकिन फ्रांस की मजबूत रक्षा पंक्ति ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और टीम ने क्लीन शीट के साथ मुकाबला अपने नाम किया। इस शानदार जीत के साथ फ्रांस अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की इस शानदार जीत के बाद अब उसका सामना आगे होगा स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की विजेता टीम से। तो इसी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेन इस मुकाबले में शानदार लहर के साथ उतर रहा है। टीम पिछले 36 प्रतिस्पर्धा मुकाबलों से अजय है। मौजूदा टूर्नामेंट में स्पेन का प्रदर्शन रक्षात्मक मोर्चे पर भी बेहद प्रभावशाली रहा है और टीम ने लगातार 5 मैचों में क्लीन शीट दर्ज की है। स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति में 19 वर्षीय पाओ क्यूबार्सी का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि मिडफील्ड में रोड्री ने अपना अनुभव और संयम टीम को मजबूती के साथ दिया है। स्पेन एक बार फिर अपने पारंपरिक अधिक गेंद पर नियंत्रण रखने वाले खेल के साथ मैदान पर उतरेगा। वहीं आक्रमण में युवा स्टार लामिन यामल विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। हालांकि बेल्जियम को कमजोर आंकना बड़ी भूल होगी। मुख्य कोच रूडी गार्सिया के मार्गदर्शन ने टीम को टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। सेनेगल के खिलाफ अतिरिक्त समय तक चलने वाले इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 में अमेरिका को 4-1 से हराकर मजबूत दावेदारी का प्रदर्शन किया। हालांकि इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले बेल्जियम को बड़ा झटका भी लगा। मिडफील्डर अमादू ओनाना ACL चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब टीम की रचनात्मक जिम्मेदारी अनुभवी केविन डी ब्रायने और शानदार फॉर्म में चल रहे चार्ल्स के पास है। कुल मिलाकर यह मुकाबला 2 अलग अलग रणनीतियों की दिलचस्प टक्कर होने वाला है। एक और स्पेन अपने गेंद पर नियंत्रण रखने वाले खेल के दम पर मैच में पकड़ बनाना चाहेगी, जबकि दूसरी ओर बेल्जियम तेज काउंटर अटैक के सहारे जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। लॉस एंजेलिस स्टेडियम में होने वाले इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का फुटबॉल प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है।
1: एशियाई U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए गुरुवार को पहले ही दिन 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक अपने नाम किए और आज भी एक पदक भारत की झोली में आया है जो शकील ने लिया है 800 मीटर में और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। तो अब कुल मिला के भारत के 6 पदक हो गए हैं। भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता। आस्तिक प्रधान, सेंड्रा मोल साबू, सेतु मिश्रा और श्रावणी सचिन सांगले की भारतीय चौकड़ी 3:18 64 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह दिन का भारत के लिए आखिरी इवेंट था। भारत का पहला पदक भरतप्रीत सिंह ने दिलाया, जिन्होंने पुरुष डिस्कस थ्रो में 52.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। चीन के ली जिक्जिन ने 60.79 मीटर के साथ स्वर्ण और उन्हीं के देश के जियांग हियाओ ने 59.60 मीटर के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में भारत ने 2 पदक हासिल किए। शिवाजी परशुराम ने 14:08.19 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि विनोद सिंह ने 14:23.67 की दौड़ पूरी कर कांस्य पदक अपने नाम किया। जापान की

0: रुई सुजुकी ने समय रहते स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। दिन का पांचवा पदक प्राची देवधर ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में जीता और उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में चीन की यांग यितिन ने स्वर्ण पदक और लियो युस्किन ने रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले संस्करण में भारत की ओर से 53 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और पहले दिन के प्रदर्शन के साथ भारतीय दल ने प्रतियोगिता में दमदार शुरुआत की है और 6 मेडल अपने नाम किए हैं। और अब एक बार मेडल टैली पर नज़र डाल लेते हैं। मेडल टैली पर सबसे ऊपर इस वक्त है चाइना, 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। जापान दूसरे स्थान पर है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भारत 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। मलेशिया की बात करें तो 1 गोल्ड है मलेशिया के पास और मलेशिया चौथे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान 5वें स्थान पर है, 1 भी गोल्ड उज्बेकिस्तान की झोली में नहीं है लेकिन 2 सिल्वर ज़रूर उज्बेकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। और अब बात कर लेते हैं विंबलडन की।
1: अब बात करते हैं टेनिस की, जहां विंबलडन 2026 में इतिहास रचने वाले मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। महिला एकल वर्ग में फाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है, जबकि जूनियर वर्ग में भारत के युवा खिलाड़ी अर्णव ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला एकल वर्ग की, जहाँ फाइनल में इस बार 2 शेक खिलाड़ी आमने सामने होंगी। कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 के बाद यह पहला अवसर होगा जब विंबलडन महिला एकल फाइनल में एक ही देश की 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अब अगर सेमीफाइनल की बात करें तो पहले सेमीफाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना ने विश्व नंबर 7 कोको गॉफ को रोमांचक 3 सेटों के मुकाबले में 6-2, 1-6 और 7-6 से हराया। निर्णायक सुपर टाई ब्रेक में मुचोवा ने मैच पॉइंट बचाते हुए शानदार जीत दर्ज की। आइए जानते हैं कि अपनी इस जीत पे कैरोलिना का क्या कहना है।
2: It was really nerve-wracking. It was roller coaster of emotions up and down. I was just trying to tell myself to keep hitting, to keep going forward, going for my balls and not just like waiting and putting the ball. Honestly, when I was match point down, I was like, okay, if I'm going to lose, I want to lose on my own. That was the only thing I was trying to keep in my head. I lost 6 on the hard court and then I won on a clay and on the grass. So I felt like it was 0-0 on those surfaces. It's different. Maybe I put up a better fight, I would say, but she's, you know, it's always tough to play. Her. She's an unreal athlete. She always gives that one point back, give her even a glimpse of a chance because she just takes it and then you own the roll on the other side. So I'm happy I managed to win the 3 setters last 2 meetings.
1: अब अगर बात करें दूसरे सेमीफाइनल की तो 9वीं वरीयता प्राप्त लिंडा ने यूक्रेन की मार्ता को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल सुनिश्चित किया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मुचोवा ने नाओमी ओसाका को और नोस्कोवा ने मेडिसिन को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी। यह दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है ग्रैंड स्लैम जीतने का और जहां वो अपनी ही देश की खिलाड़ी के सामने उतरेंगी। इसी बात पर लिंडा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
3: It's not gonna be easy, you know, playing against a friend, it's never easy. I have played against my good friends a couple of times and it's a horrible feeling, but this is a grand slam final, so I don't think that either of us will hold back.
1: अब बात करते हैं भारतीय युवा टेनिस खिलाड़ी अर्णव पपराकर की। हालांकि अर्णव का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया लेकिन उन्होंने भारतीय टेनिस इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। 18 वर्षीय अर्णव विंबलडन बॉयज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले 36 वर्षों में पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि वर्ष 1990 में लिएंडर पेस ने हासिल की थी। क्वार्टर फाइनल में अर्णव का सामना अमेरिका के क्वालिफायर जॉर्डन ली से हुआ जहां उन्हें 6-2 और 7-5 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका अभियान यहीं समाप्त हुआ लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने भारतीय टेनिस के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। अर्णव की इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है भारतीय खिलाड़ियों का विंबलडन जूनियर इतिहास। आपको बता दें कि वर्ष 1953 में रमनाथन कृष्णन बॉयज सिंगल्स के उप विजेता रहे थे। इसके बाद 1954 में उन्होंने खिताब अपने नाम किया। वर्ष 1979 में रमेश कृष्णन और 1990 में लिएंडर पेस ने बॉयज सिंगल्स का खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। अब 2026 में अर्णव पपराकर ने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब आपको बता देते हैं आने वाले मैच के प्रीव्यूज। आज पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से भारतीय समय अनुसार

0: जो ब्रॉन्ज मेडल था, और अब एक मेडल और भारत की झोली में आ गया है, और वो है भुवनेश्वरी देवी ने 800 मीटर में इन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है। और अब शूटिंग की बात कर लेते हैं। ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन जो इटली में आयोजित किया गया है, 3 से 13 जुलाई तक ये चलेगा। इसमें ट्रैप क्वालिफिकेशंस चल रही हैं और ट्रैप मैन में इस वक्त हैं पृथ्वीराज, शपथ भारद्वाज, अली अमन, अहवर रिजवी और कियान चेन्नई। और पृथ्वीराज की अगर बात करें तो वो 30वें स्थान पर हैं। और ट्रैप वुमेन के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो नीरू का शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक। 75 टारगेट्स उन्होंने साधे हैं और परफेक्ट 75 अभी इस वक्त उनका स्कोर है। इनके अलावा मनीषा कीर है, विधि सिंह है, आशिमा अहलावत हैं और वर्षा वर्मन भी आज के इस ट्रैप वुमेन के ट्रैप क्वालिफिकेशंस में भाग ले रही हैं।
1: खेल समाचार को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं हॉकी की तरफ, जहां हॉकी इंडिया ने 10 जुलाई को जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। भारतीय टीम की कमान एक बार फिर सलीमा टेटे के हाथों में सौंपी गई है। सलीमा ने हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित FIH नेशंस कप में भारत को खिताब दिलाया था और अब एशियाई खेलों में भी उनसे शानदार नेतृत्व की उम्मीद की जा रही है। टीम मुख्य कोच शौर्य मुरीन ने टीम चयन पर संतोष जताते हुए कहा कि इस दल में जूनियर, अनुभवी और वरिष्ठ खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन है। उन्होंने विश्वास जताया कि हाल ही के महीनों में खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन और फिटनेस दिखाई है, उसे देखते हुए ये टीम एशियाई खेलों की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। गोलकीपर के रूप में हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सविता और बीचू देवी को टीम में शामिल किया गया है। रक्षा पंक्ति में सुशीला, इशिका चौधरी, ज्योति, लालथान तलुवांगी और शिल्पी डबास को जगह मिली है। लालथान तलुवांगी और शिल्पी डबास ने हाल ही में FIH नेशंस कप में अपना सीनियर पदार्पण किया था और शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें इस टीम में भी मौका मिला है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी कप्तान सलीमा टेटे के साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, सुनेली तटोपो, नेहा और दीपिका सोरेंग संभालेंगी। वहीं आक्रमण पंक्ति में लालरेम सियामी, रतुजा दादासो, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। भारत की 20 सदस्यीय टीम अब एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लक्ष्य के साथ जापान में उतरने के लिए तैयार है। श्रोताओं, अब बात करते हैं स्पेन के मैड्रिड में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप यानी आर्चरी विश्व कप के स्टेज 4 की, जहां भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्पर्धाओं में अपनी चुनौती मजबूत बनाए रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कल शाम खेले गए रिकर्व मिक्स टीम यानी मिश्रित मुकाबलों की। भारत ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 5-3 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अब भारत का मुकाबला कांस्य पदक के लिए 12 जुलाई रविवार को इटली से होगा। वहीं अगर बात कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा की करें तो भारत के साहिल राजेश और प्रतिका प्रदीप की जोड़ी का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय जोड़ी को मेक्सिको के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं आज खेले गए व्यक्तिगत रिकर्व मुकाबलों की। पुरुष रिकर्व वर्ग के तीसरे दौर में नीरज चौहान और धीरज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर चौथे दौर में प्रवेश किया, जबकि अतनु दास को जर्मनी के लियोन जेनेला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। चौथे दौर में नीरज चौहान की चुनौती समाप्त हो गई, जबकि धीरज जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्हें भी जर्मनी के लियोन जेनेला के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं महिला रिकर्व वर्ग की ओर, जहां तीसरे दौर में कीर्ति, कुमकुम, अंकिता तीनों ने जीत दर्ज कर चौथे दौर में जगह बनाई। चौथे दौर में कुमकुम और अंकिता का अभियान समाप्त हो गया, जबकि कीर्ति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में कीर्ति ने मेजबान स्पेन की आलिया कनेलिस को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उनका मुकाबला रविवार को तुर्की की एलिफ के खिलाफ होगा। अब चलते हैं कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ओर। बात करेंगे सबसे पहले पुरुष कंपाउंड वर्ग की, जहां तीसरे दौर में ऋषभ ने जीत दर्ज की जबकि साहिल और कुशल अपने अपने मुकाबलों से हारकर बाहर हो गए। चौथे दौर में ऋषभ ने नॉर्वे के

0: मैथियास फुलर्टन को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें जर्मनी के सिमोन मोरिट्स ने हराकर आगे अपना चुनौती बढ़ाई। अब बात करेंगे महिला कंपाउंड वर्ग की, तो तीसरे दौर में प्रतिका प्रतीप और ज्योति सुरेखा ने जीत दर्ज की, जबकि चिकिता को शीर्ष वरीयता प्राप्त सारा लोपेस के खिलाफ हार मिली। चौथे दौर में ज्योति सुरेखा की चुनौती समाप्त हो गई, जबकि प्रतिका प्रदीप ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में प्रतिका ने स्पेन की एंड्रिया मुनेस को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब प्रतिका प्रदीप का सेमीफाइनल मुकाबला शानदार तरीके से शनिवार को मलेशिया की फातिन सलेह के खिलाफ खेला जाएगा। कुल मिलाकर श्रोताओं, मैड्रिड में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में भारतीय तीरंदाजों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा है। अब सभी की निगाहें रिकर्व मिश्रित टीम के कांस्य पदक मुकाबले और कीर्ति तथा प्रीतिका प्रदीप के सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी होंगी।
1: अब बात कर लेते हैं एक और अहम मुकाबले पर। 2026 डायमंड लीग एथलेटिक्स सीजन का 10वां चरण शुक्रवार यानी आज होना है, और इस इवेंट में दुनिया के कुछ बेहतरीन एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ओलंपिक चैंपियन फेथ किपगियोगन और जूलियन अल्फ्रेड के साथ लिट्सिले टेबैगो शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हाई जंपर सर्वेश अनिल कुशारे पहली बार मोनाको डायमंड लीग में हिस्सा ले रहे हैं। यह उनके करियर का डायमंड लीग डेब्यू है। सर्वेश कुशारे की अगर हम बात करें तो हाल ही में उन्होंने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 2.30 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय बने। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें पहली बार डायमंड लीग में आमंत्रण मिला और हाई जंप में प्रमुख प्रतिद्वंदी जो उनके रहने वाले हैं वो हैं कतर के मुताज एसाब अरशीम, यूक्रेन के ओलर डोरोचुक और चेक गणराज्य के जान स्टेफेला। और भारतीय एथलेटिक्स के लिए यह प्रतियोगिता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि सर्वेश 2.26 से लेकर 2.23 मीटर के आसपास की छलांग लगाते हैं तो वे शीर्ष खिलाड़ियों के बीच मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। और अब एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 5वें दिन भारत की अंडर 19 महिला बॉक्सर्स ने जकार्ता इंडोनेशिया में अपनी प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा। 6 बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की, जिससे टीम के लिए पदक की गारंटी हो गई। और नेतृत्व कर रहे चंद्रिका पुजारी 51 किलोग्राम भार वर्ग ने कजाकिस्तान की जादीरा कुलताव के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत हासिल की, जबकि जॉय देवी जो 54 किलोग्राम भार वर्ग के लिए खेलती हैं उन्होंने कजाकिस्तान की मराल को 5-0 से आसानी से हराया। प्राची जो 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं उन्होंने उज्बेकिस्तान की रोबिया रवशनोवा के खिलाफ 5-0 की जीत के साथ अपनी उत्कृष्ट फॉर्म बनाए रखी। और चाहत जो 60 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं उन्होंने कजाकिस्तान के जास्मिन अब्रयान के खिलाफ भी 5-0 से महत्वपूर्ण जीत हासिल की। 48 किलोग्राम श्रेणी में गुंजन ने मंगोलिया की अल्टानजूल के खिलाफ एक कठिन मुकाबले में 3-0 के विभाजीय निर्णय से जीत दर्ज की। और अंशिका जो 75 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं उन्होंने कजाकिस्तान की खिलाड़ी के खिलाफ 4-1 से एक और पदक भारत के खाते में डाला। हालांकि भारत की 2 करीबी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें वंशिका 75 किलोग्राम भार वर्ग में पहले राउंड में रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के कारण उज्बेकिस्तान के रुशान बोनू के से हार गई, जबकि लक्षु जो 70 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं उनको उज्बेकिस्तान की माफतूना के खिलाफ 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। इन परिणामों के साथ भारत ने अब अंडर 19 महिला प्रतियोगिता में 8 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। एशियाई अंडर 19 और 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 5 जुलाई से 16 जुलाई तक चल रही है, और भारत के उभरते प्रतिभाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने और भारत की वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करने का ये एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बीच भारत की अंडर 23 महिला बॉक्सर्स ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया, जिसमें 9 बॉक्सर्स ने क्वार्टर फाइनल में प्रभावशाली प्रदर्शनों के बाद सेमीफाइनल में तो जगह बनाई ही, जिससे देश के लिए और अधिक पदक सुनिश्चित हो गए हैं। महिला बॉक्सिंग में भारत की महाद्वीपीय स्तर पर बढ़ती ताकत और गहराई को दर्शाता है, जिसमें कई बॉक्सर्स अब जो है स्वर्ण पदक के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।
0: तो अब जरा बात कर लेते हैं रोहतक हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 23 कुश्ती

चैंपियनशिप के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे महिला कुश्ती की और कौन सी महिलाएं हैं जो स्वर्ण पदक अलग अलग किलो की कैटेगरी में जीत चुकी हैं। सबसे पहले 50 किलो में बात करेंगे, जीती हैं मध्य प्रदेश की प्रियांशी, 53 में हरियाणा की कीर्ति, 55 में हरियाणा से ज्योति, 57 में हरियाणा से रचना, 59 किलो में जीती हैं फिर से हरियाणा की सिमरन, बात करेंगे 62 में जीती हैं अंजलि, 65 किलो में चंडीगढ़ की खुशी रानी स्वर्ण जीती हैं, 68 किलो में जीती हैं राजस्थान की अश्विनी, 72 किलो में जीती हैं महाराष्ट्र की अमृता, 76 किलो में जीती हैं फिर से महाराष्ट्र से वेदिका। और अब अगर बता दें कि पूरी टीम चैंपियनशिप की रिजल्ट्स क्या है, कौन सी स्टेट सबसे आगे चल रही है, किस राज्य के क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे ऊपर, जैसा कि हमने इन रिजल्ट्स में देखा, सबसे ऊपर हरियाणा है 183 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद महाराष्ट्र 160 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद राजस्थान 113 पॉइंट्स के साथ।

0: और अब वापस क्रिकेट पर ही लौटते हैं और भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम और श्रीलंका अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेली थी और सीरीज़ का आखिरी मुकाबला कल खेला गया था। इस मैच में श्रीलंका ने शानदार खेल दिखाया और मुकाबला आखिरी गेंद पर अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका ने सीरीज़ भी 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत की ओर से वीके विनीत ने शानदार शतकीय पारी खेली थी लेकिन उनका शतक बेकार चला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज और कप्तान यशवर्धन चौहान ने 11 गेंदों में 6 रन बनाए जबकि रजत बघेल ने के बल्ले से 14 गेंदों में 8 रन निकले। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए वीके विनीत ने 136 गेंदों में 131 रनों की पारी खेली और उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के अपने नाम किए। इसके अलावा लक्ष्य रायचंदानी ने 63 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली थी। उनके अलावा कुशाग्र ओझा ने 3 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से सेतमिका ने 4 विकेट लिए जबकि गिमहान मेंडिस को 2 सफलता मिली। 291 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर 9 विकेट के नुकसान पर 291 रन बनाकर मुकाबला 1 विकेट से जीत लिया। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन चमिका हेनातिगला ने बनाए। उन्होंने 68 गेंदों में 84 गेंदों की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा सुनेजा वेकुनागोड़ा ने 59 गेंदों में 67 रन बनाए थे और इसके अलावा किमथा ने 35 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से शाविन विनोद ने 10 ओवर में 41 रन बनाकर 3 विकेट अपने नाम किए और इसके अलावा अनमोल सिंह ने 4 विकेट अपने नाम किए। और एक और बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है।
1: अब आपको एक रोचक अगर खबर बता दे तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग एक अनोखा काम करने जा रहा है, ऐसा काम जो अब तक किसी ने नहीं किया। बीबीएल का अगला सीजन दिसंबर में शुरू होगा। आमतौर पर होता यह है कि लीग का पहला और फाइनल मैच उसी देश में खेला जाता है लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। लीग का पहले सीजन का मैच भारत में होने वाला है
0: और इसके साथ साथ इस वक्त चल रहे मैच पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस वक्त भी लंच ब्रेक ही है और बैटिंग कर रही हैं हरमनप्रीत कौर, 14 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना 56 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं और बॉलर है सोफी जो 8 ओवर डाल चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और
1: मुझे विदुषी वत्स को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, the two leaders expected to discuss ways to further

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी ग्रामीण भाइयों बहनों को
1: राम राम। तो श्रोताओं, ग्राम संसार कार्यक्रम लेके हाजिर हैं हम, और आपको इसमें हम बातचीत सुनवाएंगे, मनोरंजन करवाएंगे और योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे श्रोताओं आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है, बरसात हर जगह हो रही है, मतलब भारत के हर हिस्से में बारिश हो रही है। ऐसा कोई अछूता राज्य नहीं है, क्षेत्र नहीं है, शहर नहीं है जहाँ बारिश ना हो रही हो। ऐसे में माना कि गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, जहाँ गर्मी बहुत परेशान कर रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन इसी मौसम में ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही बारिश बंद हुई, आप भी देखेंगे कि हल्की सी, क्या कहते हैं, उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, और उसमें चिड़चिड़ापन और पूरे में नमी नमी रहती है चारों तरफ। जो वातावरण होता है आप घर में भी देखेंगे, एक हल्का सा हाथ पैरों में नमी, मॉइस्चर हर चीज़ में बना रहता है। तो इसी नमी से आप देखेंगे आपकी जो त्वचा होती है उसमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं।
0: जी हाँ, जो जर्म्स होते हैं ना हवा में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं, वो दरअसल ये मौसम जो है ना, नमी और गर्मी ये दोनों मिलके जो है ना उनको सक्रिय कर देते हैं। उनके लिए बड़ा फेवरेबल
1: लग जाता है,
0: बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है ये, तो वो तेजी से पनपते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। और बड़ी चीज ये है कि जो रोग कारक है ना, वो रोग तेजी से पैदा करते हैं।
1: आप इन्हें इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप जैसे देखेंगे ना, मैं अगर उदाहरण दे पाऊं कि इस सीजन में आप देखते हैं फफूंदी जो होती है, देखते हैं फंगस कितना हर जगह देखने को मिलता है बारिश के बाद, नमी में हर जगह उखड़ जाता है और उगता है ज्यादा तेजी से। ठीक उसी तरीके से जो हमारी त्वचा होती है ना, उसकी जो उसके मतलब त्वचा में जो हमारी नमी के कारण जो क्या कहते हैं,
0: कोई भी जर्म्स
1: होते हैं, विषाणु
0: पनपने लगते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ते हैं,
1: ईचिंग खारिश होती है। तो इसी से संबंधित आपको एक बातचीत सुनवाते हैं मानसून में त्वचा रोग एवं इसके बचाव, और इसमें हिस्सा ले रही हैं डॉक्टर सीमा, आप त्वचा रोग विशेषज्ञ, और इनसे बात कर रही हैं नमोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। वर्षा ऋतु जहां हरियाली और ठंडक लाती है, वहीं नमी, पसीना और भीगने की परेशानियां भी साथ लाती है। ऐसे में दाद, खुजली, फंगल संक्रमण, एलर्जी और बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी से इससे काफी हद तक बचा जा सकता है, और बारिश के मौसम में आने वाली इन्हीं समस्याओं के निदान और उनके समाधान पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा रानी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर सीमा, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल तो यही है डॉक्टर कि बारिश के मौसम में त्वचा रोग आखिर बढ़ते क्यों हैं, और सबसे आम समस्याएं कौन सी होती हैं जो हम देख सकते हैं?
3: सबसे पहले बारिश के समय जो वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ फंगल है, कुछ वायरल है, इनके होने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली स्किन में, क्योंकि इनको ग्रोथ होने के चांसेस मिल जाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनसे आपको त्वचा में फोड़े फुंसी होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को है ना, ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज इन्वायरमेंट फेवर कर रहा है, तो इस वजह से ये सब परेशानी बारिश में देखी जाती है।
2: तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये समस्याएं तो हैं जो हमें दिखती हैं, इसमें कौन से लक्षण हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको वो दिखे अपने स्किन के किसी भी हिस्से पर, अपनी त्वचा के किसी भी हिस्से पर, तो उसे अनदेखा ना करें, तुरंत उसके लिए किसी डॉक्टर की सलाह लें, या फिर जो आप बताएंगे कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको आप घर पर ही किसी रेमेडी से ठीक कर सकते हैं?
3: पहली तो ये है कि कुछ समस्याएं जो होती है जो गंभीर नहीं होती हैं, जैसे जो गर्मी में आमतौर पे देखा जाता है जिसको प्रिकली हीट कहते हैं, है ना, जिसमें रैशेस हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तेज गर्मी और पसीने की वजह से, तो उस वजह से जो हीट रैशेस होते हैं जो बच्चों में ज्यादा होते हैं या बुजुर्गों में,
2: हाँ,
3: तो उसको आप घर पे भी मैनेज कर सकते हो। आप थोड़े कूल वाले, जैसे एसी है, अगर कूलर है तो वहां रह सकते हो, नहीं तो ठंडे पानी की सेकाई कर सकते हो, बर्फ की सेकाई हम बोलते हैं। और अगर ज्यादा खुजली वगैरह होती है तो हम बोलते हैं कि आपको अगर एंटी एलर्जिक्स टैबलेट है या सिरप है बच्चों के लिए, तो आप वो ले सकते हो।
2: और जो टैल्कम इस्तेमाल करते हैं,
3: टैल्कम से ब्लॉकेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट डक्ट्स होते हैं, बट जब आपको लगे कि हीट रैसेस के साथ साथ जो मवाद वाले फोड़े फुंसी भी आ रहे हैं, फिर आपको तो डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन शो कर रहा है।
2: अच्छा।
3: है ना, तो उस कंडीशन में आपको जो भी आपके कंसल्टेंट, जो भी फिजिशियन है, उसे में आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ठीक है? लेकिन मामूली सा जो हीट रैश होता है या फिर जैसे होता है ना बच्चों में खुजली वगैरह, तो उसमें आपको घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि जैसे फंगल इन्फेक्शन मैंने बताया, तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो

0: गया है, जैसे बॉडी का जो फोल्ड है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है, तो उसमें होता है कि इचिंग से स्टार्ट होती है। तो अगर मामूली सी इचिंग है, कोई रैश नहीं है, जैसे होता है ना कई बार टेलकम पाउडर वगैरह स्प्रे कर लेते हैं ताकि पसीना कम आए,
1: जी
0: लेकिन जब आपको रैश दिखने लगे तो आप उपचार करते हो खुद से, या फिर जाकर के आप केमिस्ट से दवाई लेते हो, वो नहीं करना है।
1: जी
0: क्योंकि कई बार होता है ना कि फंगल इन्फेक्शन अगर इनिशियल स्टेज पे आप रोक दोगे उसको, तो एक तो बॉडी के दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड नहीं
1: चलेगा
0: करेगा,
1: नहीं।
0: प्लस ये भी है कि आप दूसरों को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो।
1: जी अगला सवाल मेरा यही था कि कई बार देखा गया है और ऐसा अक्सर हमारे घरों में हम देखते हैं कि कोई स्किन का कुछ भी इन्फेक्शन है या किसी तरह की समस्या दिख रही है, तो हम एक कोई ऑइंटमेंट या ओवर द काउंटर कुछ एक दवा लेकर, पर बाद में पता चलता है कि उसमें स्टेरॉइड्स थे जो उसने सप्रेस तो कर दिया पर उसको क्योर नहीं किया, तो उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे
0: जैसे
1: सुनने
0: मैंने भी
1: वालों को?
0: बताया कि जो फोल्ड होते हैं बॉडी के फोल्ड पे, आमतौर पे गर्मी में या बरसात में, जैसे रेनी
1: जी
0: सीजन में, तो उसमें इचिंग वाली टेंडेंसी बढ़ जाती है। बट इस इचिंग का कॉज केवल फंगल नहीं हो सकता, हो सकता बैक्टीरिया, बिकॉज हमारे बॉडी पे सरफेस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि केवल इचिंग हो रही है और थोड़ी सी रेडनेस है, या स्किन में दिक्कत आ रही है, स्किन में कोई ऐसे लीजन्स आ रहे हैं जैसे स्केलिंग हो रही है, छिलका निकल रहा है, रेडनेस है, कुछ दाने आ गए हैं, तो आप कंसल्ट जरूर कर लो। क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स है उसमें एक तो बहुत सारे हैं जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, जैसे आपने बताया स्टीरॉयड, तो
1: जी
0: उसमें बहुत सारे एंटीफंगल भी रहते हैं, स्टीरॉयड भी रहते हैं, एंटीबायोटिक भी रहते हैं, आई डोंट नो उसका रैशनल क्या है, बट वो यूजुअली दे देते हैं पेशेंट को। उससे
1: जी
0: क्या होता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि इचिंग को वो दबा देता है, बट जो मेन ऑर्गेनिज्म में उसको तो आप नहीं क्योर कर पा रहे हो,
1: जी
0: तो वो धीरे धीरे करके स्प्रेड होता रहेगा। पेशेंट क्या है यूज टू हो जाएगा, जब भी इचिंग होगी वो उसको लगा लेगा, उसे लगेगा नहीं इसे ठीक हो गया। इस तरह से एक दो महीने ऐसे निकल जाते हैं, कई बार तो पेशेंट उसको लगाते लगाते 6 मंथ बाद भी आते हैं, और उससे जो दिक्कत होती है वो दूसरी समस्या हो जाती है, जैसे उनमें स्ट्राया हो जाते हैं, क्योंकि स्किन बहुत थिन होती है वहां पे। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, स्टीरॉयड अब्यूज जो होते हैं ना, बहुत सारे स्किन के चेंजेस हो जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किन जो होती है बहुत पतली हो जाती है, जो नसें होती है वो दिखने लगेगी। कुछ लोगों को होता है रेडनेस काफी बढ़ जाती है, छोटे छोटे दाने जो पस्टुल्स होते हैं ना, पस वाले दाने, वो आ जाते हैं। तो अगर आप जैसे स्किन जो डेलिकेट है, जैसे फेस पे आप लगा रहे हो, ग्रॉइन में लगा रहे हो, तो वो जो होता है स्टीरॉयड इंड्यूस जो भी आपकी ट्रोफी हो रही है, जो स्किन चेंजेस है, वो और वर्सन हो जाती है। जो आपका इन्फेक्शन था वो तो आपका वहीं रह गया, लेकिन उस दवाई की वजह से दूसरे आपके साइड इफेक्ट आ गए, तो वो चीज ना करें, और लंबे टाइम के लिए तो बिल्कुल ही ना करें। जो कि अभी का कंसेप्ट है कि नहीं इचिंग हो रही है, मामूली सी इचिंग है, हम दवाई लेते हैं ठीक हो जाता है,
1: जी
0: कुछ है नहीं, हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, बट वो आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना उस चीज को।
1: ये किसी से जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल अभी दिमाग में आ रहा है। कई बार हमने देखा है घरेलू महिलाएं या फिर कोई भी महिला जिसमें जैसे ग्रोइन एरिया की अभी आपने बात की, तो पसीने के साथ साथ एक पर्टिकुलर तरह की कुछ इचिंग शुरू हुई, और उस इचिंग को ट्रीट करने के लिए कभी वो टैल्कम का इस्तेमाल करती हैं, कभी डिटॉल का, या कुछ इस तरह के एंटी एलर्जिक एंटीसेप्टिक लिक्विड का, तो आपकी नजर में कितना सही या गलत है और इसका सही तरीका क्या है, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए?
0: पहले तो आपने बताया जो स्टीरॉयड इंड्यूस जो भी आपके
1: जी
0: चेंजेस होते हैं वो मैंने
1: जी
0: आपको बता दिया।
1: जी
0: दूसरी चीज है जो एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट होते हैं,
1: जी
0: जैसे आपने बताया डिटॉल या कुछ और है,
1: जी
0: बीटाडीन या कुछ और भी
1: कोई भी,
0: सॉल्वेंट है, लोग
1: हाँ
0: यूज करते हैं कि
1: जी
0: चलो उस एरिया को हाइजीन हमारा मेंटेन रहेगा,
1: जी
0: लेकिन उसके यूज से क्या होता है कि वो इरिटेंट हो जाती है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है,
1: जी
0: जो स्किन को रेडनेस या फिर इन्फ्लेम्ड इचिंग वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो उस कंडीशन में जो आपकी स्किन की कंडीशन है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, आपकी त्वचा में जलन हो सकता है, इचिंग के साथ साथ पेन काफी होगा, तो
1: जी
0: वो कंडीशन होती है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट के यूज से ज्यादा होता है।
1: जी
0: और फोल्ड ऐसा एरिया है कि कुछ भी आप लगाओगे तो वहां पे थोड़ी देर के लिए रिटेंट हो जाता है, क्योंकि वो
1: जी
0: फोल्ड का एरिया, इसलिए हम मना करते हैं कि आप जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट वगैरह यूज करते हो उसको ना करो। सिंपल पानी से आप धो लो और उसको ड्राई रखो, उस एरिया को आपने लगातार पानी से भी लगातार धोते रहे या सॉल्वेंट से, तो उस एरिया में धीरे धीरे करके जो स्किन बैरियर है उसका डिसरप्शन होने लगेगा, नॉर्मल जो बैरियर है वो ठीक नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा, तो फिर आपकी इरिटेंट की पोटेंसी बढ़ जाती है, कुछ भी आपका एलर्जेंस रहेगा वो पेनिट्रेट होगा, फिर वहां जाकर के वो इन्फ्लेमेशन देगा, तो वो इन्फ्लेमेटरी स्किन जो कंडीशन हो उसको और एग्रेवेट करेगा। क्योंकि आप बस उसको क्लीन रखो, नॉर्मल पानी, नॉर्मल साबुन जो हम यूज करते हैं उससे आप क्लीन रख
1: और उसको
0: सकते हो,
1: ड्राई रखना भी एक
0: ड्राई रखना है। अगर पसीना ज्यादा आता है तो हम ड्राई रखने बोलते हैं, क्योंकि किसी किसी को होता है कि पसीना बहुत ज्यादा उसकी वजह से उनको इचिंग होती है, कहते हैं उस कंडीशन में कि तब हम एडवाइस करते हैं कि कुछ एंटीफंगल पाउडर आते हैं तब यूज कर सकते हो आप, लेकिन
1: जी
0: बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं यूज कर सकते हो।
1: जी इसी से जुड़ा सवाल है अगला, कि अभी हमने महिलाओं की बात की, ऐसे ही बच्चे और बुजुर्गों दोनों में कुछ पर्टिकुलर तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स कॉमन जनरली देखी जाती हैं, खासतौर पर बारिश के मौसम में, तो उन समस्याओं के बारे में एक जनरल एक अवेयरनेस के लिए आप अगर कुछ बताना चाहें?
0: देखो बच्चों की स्किन डेलिकेट होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या न्यूबॉर्न हो, इन्फेंट हो, है ना, उनकी स्किन डेलिकेट होती है। छोटे बच्चों में कई बार होती है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। दूसरी चीज ये होती है कि सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे उनको फ्रंकल हो रखा है, पस वाले दाने हो रहे हैं, वो ज्यादा देखा गया इस मौसम में। और दूसरी चीज होती है कि चूंकि इस मौसम में इंसेक्ट्स वगैरह भी काफी ब्रीडिंग टाइम होता है इनका, तो उस वजह से जो मॉस्किटोज का ब्रीडिंग टाइम होता है तो एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं इंसेक्ट बाइट हाइपरसेंसिटिविटी, तो पैपुलर रेटिकेरिया बोलते हैं। छोटे छोटे दाने होंगे और यूजली एक्सेसिबल साइट पे होगा, यूजली जो एक्सपोज एरिया बॉडी का, हाथ पैर है, जैसे बच्चे खेलने जाते हैं तो हाफ पैंट पहन लिया, हाफ टी शर्ट पहन लिया, जो एक्सेसिबल पार्ट होते हैं बॉडी के उसमें ज्यादा देखा गया। तो ये भी एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होती है जो मॉस्किटो बाइट या जो भी इंसेक्ट बाइट की वजह से होती है। एक चीज और होती है, जैसे आपने कहा देखा होगा कई बार लोगों को कि नहीं हमने सुबह उठा तो मेरे स्किन में देखा रेडनेस हो गई है और थोड़े से बीच में येलो हो गई है स्किन, चारों तरफ से रेड हो गई है, तो ये भी एक टाइप का इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो इंसेक्ट के काटने की वजह से होती है। तो यूजली हम इसलिए बोलते हैं कि आप मच्छरदानी लगाइए और जो लाइट है लाइट के अंडर मत सोइए, क्योंकि ये लाइट से कीड़े जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज और परेशानी होती है जिसको बोलते हैं स्वेट डर्मेटाइटिस, स्वेट की वजह से डर्मेटाइटिस होता है, तो उसमें जो स्किन होती है वो जैसे लगती है आपकी बर्न हो गई है, वो भी एक कंडीशन है जो इस मौसम में देखा जाता है गर्मी और खासकर रेनी सीजन में।
1: और अभी आपने मॉस्किटोज का जिक्र किया बच्चों में खासकर, तो आजकल आप देखिए एक प्रचलन में है जो हम स्किन पे मॉस्किटो रिपेलेंट का एप्लीकेशन करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो आपकी नजर में वो कितना सही या गलत है और क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है?
0: देखो एफिकेसी सबकी धीरे धीरे कम हो जाती है, बहुत बड़े वाइड एरिया पे नहीं लगा सकते हो, कुछ एरिया जैसे जो आपका एक्सपोज रहते हैं तो हम बोलते हैं कि आप लगा सकते हो, बट वो ये है कि वो लंबे टाइम के लिए वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। और कई बार होता है कि बच्चों की स्किन भी सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से भी कहीं ऐसा नहीं हो कि फर्दर उनको इरिटेंट डर्मेटाइटिस हो, तो ये भी आपको देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने लिया रेपेलेंट पूरे पैर में लगा दिया, पर्टिकुलर थोड़े एरिया में आप लगा के देखो जो एक्सपोज पार्ट है, अगर बच्चों को सूट कर रहा लगाओ, लेकिन वही है कि वो पूरे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करता इफेक्ट। आप सबसे अच्छा है कि उनको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दीजिए, है ना, फुल स्लीव्स की जो आते हैं कपड़े वो आप डाल के भेजो। और अगर रात में अगर ज्यादा सेंसिटिव है तो हम तो ये कहते हैं आप मॉस्किटो नेट जो सबसे सस्ता भी है और अच्छा उपाय
1: मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और एक सवाल आता है दिमाग में कि बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर अलग अलग तरह की कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, जैसे कुछ निशान पड़ गए, कुछ मान लीजिए चकत्ते से दिख रहे हैं, तो उनको लेकर कुछ मिथक या कुछ भ्रांतियां हैं, तो आपकी नजर में जो सबसे मिस सिम्टम्स हैं या जो जिसको कहा जाए गलत तरीके से समझती है जनता जिसको जनरली, वो ऐसा कुछ सिम्टम आपके दिमाग में आ रहा है जो होता कुछ और है जनरली उसको लोग इग्नोर कर देते हैं?
0: राइट, बहुत सारे वायरल एग्जेंथम भी कॉमन होते हैं, लाइक जैसे एक कंडीशन होती है स्किन की जिसमें भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजी के अनुसार उनको लगता है ये दांत खाद खुजली है लेकिन वो होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये रैश हुआ है मेरे बॉडी पे तो ये जरूर कोई फंगल इन्फेक्शन है, मैं इसकी दवाई कर लेता हूँ, लेकिन कई बार होता है कि वैसा ही रैश बॉडी पे अदर पार्ट्स पे भी स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये नहीं है कि वो फंगल इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो स्किन की कंडीशन होती है मिमिक करती है एक दूसरे से, तो वैसे कंडीशन में तो आपको जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है उसके पास आपको जाना है कि एटलीस्ट पता तो चले कि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी के कई एरिया में आ जाते हैं, पूरे स्प्रेड भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वायरल एग्जेंथम भी होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है जो आपको मैंने बताया जैसे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, बहुत सारे फोड़े फुंसी जो होते हैं पस वाले होते हैं कि यहाँ यहाँ हो रहे हैं, तो कई बार होते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता मुझे क्यों हो रहा है फोड़े फुंसी, तो ऐसे कंडीशन में कई बार जो डायबिटीज वाले होते हैं उनकी भी डिटेक्ट होती है कि शुगर इसी समय आता है कि हाँ मुझे हो रहा है, तो हो सकता है कई बार होता है कि उनको इस सिम्टम्स की वजह से डिटेक्ट होता है कि हाँ आपका शुगर लेवल हाई है, इस वजह से या फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है। और दूसरी चीज है कि बार बार रिपीटेड जैसे पानी में गीले होने की वजह से भी नाखूनों की भी परेशानी होती है, तो जो नेल फोल्ड होता है उसकी स्वेलिंग होती है जिसको पेरोनिकिया कहते हैं,
1: एक्जिमा जैसी कंडीशन जो होती है
0: वो एक्जिमा इज डिफरेंट, एक्जिमा तो जो कंडीशन है वो एक एलर्जिक की कंडीशन होती है,
1: मतलब उसका मानसून से कोई लेना देना
0: नहीं, मानसून में बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। मानसून में कुछ स्किन कंडीशन है जो एग्रीवेट होती है, जैसे एक्जिमा है, एक्ने है, मुहासे जो होते हैं वो एग्रीवेट होते हैं, ठीक है, पसीने की वजह से, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन से उसकी वजह से बढ़ सकते हैं। और कुछ कंडीशंस होती है जो कि आपकी इसी मौसम में देखे जाते, जैसे बोला मैंने हीट रैश, तो ये नहीं है कि आपका फंगल इन्फेक्शन केवल इसी मौसम में दिखाया जाए, इस मौसम में बढ़ जाते हैं। अब ऐसा सिनेरियो आ गया कि फंगल इन्फेक्शन तो हर मौसम में हमें देखने को मिलता है, बट इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर, कि अगर इन जनरल हम बारिश के मौसम की बात करें तो स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो हम इन त्वचा की समस्याओं को थोड़ा दूर रख सकते हैं।
0: कि सबसे पहली बात है कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको रखना है, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आप खान पान

0: आप शूज को एक्सक्यूज कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना,
1: जी
0: बहुत लंबे टाइम के लिए उसको पहनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, खान पान का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब आपका मन भी ठीक रहेगा, तो आपका मन भी ठीक होना चाहिए, आप अच्छे से अपना ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो बाहर जाकर दवाई लेने की बजाय आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट या जो भी डॉक्टर है नियर बाय, उनको जरूर दिखा लें।
1: तो श्रोताओं, बारिश के मौसम का आनंद तभी पूरा है जब हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी त्वचा को साफ रखें, सूखा रखें, पानी पीने का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गीला होने से बार बार अगर बच सकते हैं तो बचें, भीगने के बाद कपड़े तुरंत बदलें, स्वच्छता बनाए रखें अपनी, और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी क्रीम या दवा ना लगाएं, ऐसा अभी अभी हमारे डॉक्टर ने भी बताया आपको। तो ध्यान रखिए और बारिश के मौसम का मजा लीजिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानसून में त्वचा रोग एवं बचाव। डॉक्टर सीमा, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आपको ये तमाम जानकारी दी। और आइए इसी के साथ ले चलते हैं, आपका मनोरंजन करवाते हैं और सुनाते हैं आपको मस्तराम यादव की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: सुन परवाने भरम मेट दो तेरा, ये रागिनी आप सुन रहे थे मस्तराम यादव की आवाज़ में,
1: और ये रागिनी आप सुन रहे थे रेडियो के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो जो एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ मनोरंजन का साधन
0: ये
1: नहीं
0: है, माध्यम है,
1: मनोरंजन का साधन नहीं और साथ ही एक जनसंचार और आपको जानकारी देने वाली चीज़ है।
0: जी हाँ, तो आप बात कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो की बात।
1: जी बिल्कुल, और इसे जैसे कि सामुदायिक रेडियो केवल एक मनोरंजन नहीं है बल्कि गांव की आवाज़ है। ये स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रख कर संचालित किया जाता है।
0: जी हाँ, आप सही कह रही हैं शीतलबहन। ये दरअसल कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट जो है ना, ये अवधारणा जो है सरकार इसीलिए लेके आई थी कि पूरे देश को, पहले इतना विकास नहीं था, गांव-गांव में पगडंडियां थी, रोड सड़क नहीं थे, एक दूसरे से जुड़ने का साधन नहीं था, चिट्ठी पत्री का दौर था। उस दौर में रेडियो लोगों का मनोरंजन करने का, लोगों तक संदेश पहुंचाने का, लोगों को
1: सरकारी योजनाएं बताने का,
0: योजनाओं के बारे में जानकारी देने का, और सारी चीज़ों का इंफोटेनमेंट का, ये कह लीजिए कि एक माध्यम था जो पूरी तरीके से इस गुलदस्ते को, भारत के गुलदस्ते को, जिसमें कई तरह के लोग, कई तरह की संस्कृतियाँ, रस्म व रिवाज हैं, कई मजहब धर्म के लोग हैं, उनको जोड़ने का काम किया।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आशु और दिलदार की आवाज़ में रागनी।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आशु और दिलदार की आवाज़ में ये रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम राम
0: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: शीतल बहन और मैं शाहिद लेकर हाजिर हैं आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें लोकगीतों का ये महासंगम भी है और आपको बहुत सारी जानकारियां भी देंगे, सुझाव देंगे, सब्जी और मिलेट्स की बात भी करेंगे।
1: जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तो आपने कर दी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फल सब्जी और मिलेट्स की बात करेंगे तो श्रोताओं के लिए सबसे पहले यही बात कि जो मौसम की सब्जी हैं सिर्फ उन्हीं का सेवन करें
0: जी हाँ।
1: क्योंकि प्रकृति ने हमें वही सब्जियां और वही फल दिए हैं जो हमारी मौसम के अनुसार होते हैं। आप देखिए गर्मियां होंगी तो हमें ऐसी सब्जियां मिलेंगी जिसमें ज़्यादा पानी हो, हमारे शरीर में पानी मिल सके, तोरई हो, घिया हो, इनमें पानी की

0: मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फल भी ऐसे ही मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कुछ ना करें आप, बाहर का कुछ भी ऐसा ना करें कि हमें अलग से कुछ सलाह लेनी है, कुछ करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मौसम की सब्जी और फलों का सेवन करें।
1: शीतल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ये सब्जी फल जीव जंतु ये जितने जितना भी ये कुदरत का ये पूरा जो करिश्मा है ना, ये करोड़ों साल का एक इवोल्यूशन का नतीजा है
0: जी।
1: और कुदरत ने हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बड़े करीने से उसको जो है कि तय किया है,
0: बिल्कुल सजा हमें, के दिया है। हाँ, हमें कुछ
1: किस
0: करने की
1: मौसम
0: जरूरत नहीं
1: में
0: है।
1: कब खाना है क्या नहीं खाना है कैसे करना है, यहाँ के लोगों को क्या खाना है, रेगिस्तान वालों को क्या खाना
0: जी।
1: है, पहाड़ में क्या खाना है, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो फल सब्जियाँ हैं इनको बड़ा चुनिंदा तरीके से जो कुदरत ने दिया है उन्हीं को इस्तेमाल करें।
0: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, जैसे कि आज के दौर में बदलती जीवन शैली जो है और उसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप देखते हैं आजकल शुगर बहुत आम हो गया है, मोटापा बहुत आम हो गया है, और आजकल तो आप देखेंगे कि हृदय की परेशानी जो आप देख रहे हैं, अटैक आप आए दिन सुनेंगे कि बहुत चलते फिरते इंसान गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई या कुछ, तो ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। अगर ऐसे ही यदि हम अपने दैनिक भोजन में फल सब्जी और मोटे सब्जियों के साथ मोटे अनाज को अगर शामिल कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा शीतल। ये जो मोटे अनाज जो है ना, इनका जब चलन खत्म हुआ है तभी से ये मोटापा, हाइपरटेंशन, बीपी ना, जो है कि शुगर, इस तरह के जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे हमारी जीवन शैली के से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद ही आए हैं। इसलिए मिलेट्स का इस्तेमाल करना
0: बहुत
1: अच्छा
0: जरूरी
1: होगा।
0: है। शाहिद भाई, बातें हम मिलेट्स पे और भी अपने श्रोताओं से करेंगे, अभी फिलहाल अभी अपने श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं अशोक कुमार की आवाज में ये रागिनी।

0: माई मोर धरती बाबा कस्बा, ये किसान की एक पूरी जीवन शैली को, पूरे इसको कल्चर को बयां करने वाला एक लोकगीत अशोक कुमार की आवाज में आपने सुना।
1: और हम बात कर रहे थे फल सब्जी और मिलेट्स।
0: जी हाँ, मिलेट्स दरअसल मोटे वो अनाज जो कि पोषण से समृद्ध हैं, जिनमें तमाम तरह के मिनरल्स हैं। वो सारे मिनरल कमोबेश जो एक व्यक्ति को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेट्स में मिलते हैं। मिलेट्स हैं क्या? वो ज्वार है,
1: ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांवला।
0: जी हाँ,
1: ये जो मोटा अनाज,
0: बिल्कुल ये वो मोटे अनाज हैं जो अब कम पैदा किए जाते हैं। पहले जो है इन्हीं की पैदावार ज़्यादा थी, यही खाया जाता था, यही बोया जाता था, और उसका असर ये था कि जीवन हमारा जो है ना वो बड़ा समृद्धशाली था, रोगों से मुक्ति थी। रोग कभी कभार लोग जो है कि बीमार पड़ते थे, और अक्सर ये देखने को मिलता था कि लोग लंबी आयु, दीर्घायु जीते थे।
1: जी आप देखेंगे असर पहले क्या होता था, पहले लोगों की आयु मतलब 90-95 साल बहुत आम होती थी, लोग 100 साल पार कर जाते थे। क्योंकि क्या होता है, मोटे अनाज में श्रोताओं तत्व जो होते हैं भरपूर होते हैं, चाहे वो फाइबर हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, सभी चीज़ मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि घर में खाए जाते हैं या इनकी रोटी मजबूरन बनाई जाती है। आप देखेंगे मिलेट्स के तो बहुत सारी चीज़ें, चिप्स है, मतलब बाजार में जो आप चिप्स और तरह तरह की चीज़ें जो देखते हैं ना, अलग अलग टेस्ट की, कि लोग आकर्षित होते हैं खाने के लिए, आपको मिलेट्स की भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे।
0: भाई खीर बना लो, रोटी बना लो, सत्तू बना लो, हर तरीके से। अच्छा, पहले ये खाया भी जाता था, वैसे इस्तेमाल होता था। इसकी वजह से चूंकि ये एक संतुलित पोषण है, संतुलित पोषण लेना बहुत ज़रूरी है, वो शायद आज के लोग नहीं ले पा रहे हैं अपनी जीवन शैली के नाते। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मुहैया नहीं हैं, कम पैदा हैं लेकिन मिल रही हैं। और अभी तो जो है कि सरकार ने इस पर खासा जोर दिया है, तो इसकी पैदावार भी बढ़ रही है। तो बेहतर ये होगा कि हमारे भाई बहन जो है वो चाहे शहरों के हों चाहे गांवों के हों, मिलेट्स पे ध्यान दें। ये उनकी जीवन शैली को और उनकी दिनचर्या को बदल के ना, जैसे कि वो खुद बदलेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, और इससे जुड़ा हुआ जो उनके अंदर एक कह लें कि कई तरह के रोग हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, वो शरीर की सारी चीज़ों को सुचारू कर देगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो है कि मधुमेह है, बीपी है, और इस तरह की जो जीवन शैली वाली बीमारियाँ हैं उनसे धीरे धीरे निजात मिलेगी।
1: जी बिल्कुल। और क्या होता है, मोटा अनाज बहुत जल्दी पच जाता है, और जो चीज़ जल्दी पच जाती है वो आपको कभी बीमार नहीं करती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं भूलन त्यागी की आवाज़ में ये रागनी।

0: ग्रामीण भाइयों बहनों, हमारे किसान बहन भाई जो हैं, ये उनके लिए ख़ास प्रोग्राम है। और हम बता दें कि ये अब जो मौसम है ना, मानसून का, जैसा आप शीतल बता रही थी, ये कैच द रेन का मौसम है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये हकीकत में एक नारा भी है जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और हकीकत में ये पूरा जो नारा है वो ये है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स। तो यानी जहाँ भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो बारिश की बूंदों को, पानी को सुरक्षित बचाइए, संचय करिए उसका। इसका मकसद ये है कि ये जो धरती है, ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उनको रिचार्ज करिए।
1: जी बिल्कुल, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आने वाले समय में पानी की बहुत ही दिक्कत होगी। और आप जानते भी हैं कि जल है तो जीवन है।
0: बिल्कुल,
1: और अब बात हो रही है जल की, और बात ना हो मछली की तो बहुत ही अन्याय होगा।
0: अरे बिल्कुल, आपने याद दिला दिया, आज तो नेशनल फिश डे है।
1: जी बिल्कुल, जी। और जब हम पानी की बात करेंगे तो मछली को क्यों ना हम याद करें। हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली दिवस मनाते हैं। और चूंकि मछली बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है और उसमें बहुत पौष्टिक होती है, कई राज्यों में ये मुख्य आहार के तौर पे भी यूज किया जाता है।
0: वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए ये आय का अतिरिक्त स्रोत है। और बड़ी चीज ये है ना कि हमारे कल्चर में इसको जो है कि खाद्य से अलग जो है ना, इसकी जो कह लें कि परंपराओं से जुड़ी जो इसका महत्व रहा है, ठीक है, इसको जो है कि मछली हो और चाहे जो है कि कछुआ हो, इसका जो है कि अलग ही महत्व है।
1: जी बिल्कुल, आज देश के वैज्ञानिक, तकनीकों, सरकारी योजनाओं और किसानों की बढ़ती रुचि के कारण जो मछली का उत्पादन है ना, बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि इससे क्या है, हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। वो खेती तो कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक उसमें ये मत्स्य पालन भी बहुत ही मुख्य आय का स्रोत है। तो चलिए,
0: हम जल संचय भी करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं, तो इससे जो है हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों की, खासतौर से किसान भाइयों बहनों की आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगा,
1: और उनके जो व्यक्ति स्तर है, उनका जो रहन सहन है, वो बहुत सुधार होगा।
0: जी हाँ, तो आइए अब आगे चलते हैं और आपका कराते हैं मनोरंजन।

0: हवा मिले।
1: तो श्रोता सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज़ में ये रागनी पर्यावरण की करो सुरक्षा। और यकीनन जो ये मौसम है और जो मानसून का मौसम चल रहा है तो पर्यावरण को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पौधा आप ज़रूर, जैसे कि आजकल हमारी मुहिम चल रही है हमारे सरकार की तरफ से छिड़ी हुई है कि एक पौधा माँ के नाम, तो एक पौधा आप भी ज़रूर अपने किसी अच्छे दिन के लिए, जन्मदिन पे, किसी भी अच्छे मौके पे एक पौधा लगाएं। क्योंकि इस मौसम में अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी पनपता है और बढ़ता है, क्योंकि इस समय जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और जड़ें बहुत जल्दी जम जाती हैं ज़मीन में और वो जल्दी उग जाता है। तो इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। इस कार्यक्रम के
2: प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं गजल और कवाली। कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत सी गजलें।
1: एक तो ये कि भूपेंद्र के गीतों में वहां के अवाम की तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए बस अब से कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की। दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर बढ़ाई सख्ती। यातायात नियम तोड़ने पर इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए। और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इंद्र

0: विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामूहिक प्रयासों से राजधानी के विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पार्षदों ने ये निर्णय लिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।
1: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सभी मिलकर राजधानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं और विकास कार्यों को नई दिशा दे सकते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा परिसर में संस्कृत महाकाव्य मंगल महर्षि चरितम का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन का प्रत्येक प्रयास देश के भविष्य में किया गया निवेश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषाओं में से एक है। इसकी तार्किक व्याकरणिक संरचना आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर में भी प्रासंगिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। विश्व बैंक और पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 8,300 करोड़ रुपए का 7 वर्षीय कार्यक्रम राजधानी में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम की 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% योगदान दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर गति और दृढ़ संकल्प के साथ सतत विकास को गति दे रहा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री जाधव ने 70 लाख से अधिक स्वदेशी और जलवायु प्रतिरोधी वृक्षों के प्रस्तावित वृक्षारोपण, 70 से अधिक जल निकायों के विकास और लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने की सराहना की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 CM श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

0: सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL और NGO एहसास के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुए इस समझौते के अंतर्गत IGL अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पहल के माध्यम से परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए गए हैं, जबकि रेड लाइट और ओवर स्पीड उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से 17,21,000 से अधिक ई चालान जारी किए गए हैं। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों में 2,187 FIR भी दर्ज की गई है। राजधानी में ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए 8 प्रमुख सड़क कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बना दिया गया है। अनावश्यक ट्रैफिक सिग्नल हटाने, यू टर्न की सुविधा देने और चौराहों को फिर से डिजाइन करने जैसे उपायों से इन रास्तों पर ट्रैफिक का प्रभाव बेहतर हुआ है। यातायात जाम को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट, आनंद विहार, आश्रम चौक, मजनू का टीला और अन्य प्रमुख स्थानों पर आधारभूत ढांचे में सुधार किए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हुई है। यातायात पुलिस ने कहा है कि इंजीनियरिंग सुधार, आधुनिक तकनीक, प्रभावी परिवर्तन और जन भागीदारी के माध्यम से राजधानी में सुरक्षित और यात्री अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली परिवहन निगम DTC ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित बनाने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड धारक महिलाओं को ही DTC और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने के अंत तक ही कागजी पिंक टिकट जारी रहेगा। जिन महिलाओं के पास ये पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट लेना होगा। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 15,00,000 से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली की महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली NCR का महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है। ये मार्ग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट महरोली गुरुग्राम रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 148A को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सड़क दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच अंतरराज्यीय यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। चांदनी चौक नागरिक मंच ने दिल्ली सरकार द्वारा शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। मंच के महामंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पुरानी दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से ये मांग थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नाम परिवर्तन के साथ ही पुरानी दिल्ली के संरक्षण, विकास और रखरखाव के कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नजफगढ़ स्थित गोयला डेयरी संपीड़ित जैव गैस CBG प्लांट की प्रगति की समीक्षा की और पश्चिमी जोन की प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की साइबर सेल ने नकली दवाओं के निर्माण और

0: अंतर्राज्यीय आपूर्ति से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण दिल्ली में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आज दक्षिण जिले की दिशा समिति की बैठक भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव से निपटने के लिए नालों की गाद हटाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। ये वार्षिक महोत्सव अनानास उत्पादकों को उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य व्यवसायों और निर्यात बाजारों से जोड़ने का राज्य का प्रमुख मंच बन गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यापार को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक स्तर पर किसानों की क्षमताओं को नई गति प्रदान करते हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे कई दशकों तक आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे। उन्होंने देश विदेश में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हुए रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक बजकर 8:00 ये लीजिए पूरे हुए 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, और इस क्रम में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और उम्मीद करते हैं ये जो गीत हम पिरोकर लाए हैं, ये सभी नगमे जो हैं आप सभी को पसंद आएंगे। तो आइए गीत मालिका का आगाज करते हैं लता जी की आवाज में गाई एक खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम, कार्यक्रम रहा गीतमालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से

0: और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकेंगे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग

0: 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार

0: चार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोज़ा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशोखरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्रआज़मों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर

आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राबतों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मुआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि यह तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन ने मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लूप्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तिसादी और तहफ़ुज़ाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेज़बानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के हमराह ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क़याम में हुई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेनिंग हासिल की हो। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर नीज मस्नूई जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। उम्मान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और उम्मान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आज़ादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने उम्मान में भारतीय निषाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उम्मान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोश व खरोश काबिल तारीफ है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के शहर गया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के बिहार इंस्टीट्यूट में कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में आइंदा मानसून इजलास के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। पार्लियामेंट का यह इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और अगस्त की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मेघवाल ने कहा कि आने वाले इजलास के लिए कानून साजी के उमूर के प्रोग्राम का जामे जायज़ा लिया गया और ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेल ने 680 किलोमीटर तवील शिमाली रेलवे के रास्ते पर हिफाजत और कामकाज में बेहतरी लाने की गरज से 206 करोड़ रुपए लागत के कवच निज़ाम को तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद मकामी हिफाजती निज़ाम को मसरूफ तरीन और कलीदी तौर पर अहम रास्तों पर फैलाना है। रेल की वजारत ने कहा कि कवच विजन 4.0
ओ को दिल्ली डिवीजन के रेवाड़ी दिल्ली और शकूर बस्ती भटिंडा सेक्शन पर लागू किया जाएगा। इस निज़ाम को खतरनाक वाकयात और ट्रेनों के तसादुम के वक्त सिग्नल को रोककर रेलवे की हिफाजत को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए

0: ये डिज़ाइन किया गया है। वजारत ने कहा कि यह निज़ाम ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसल नज़र रखता है, ज़रूरत पड़ने पर खुद ब खुद ब्रेक लगाता है और ट्रेनों को हिफाजत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तक चलने की इजाज़त देता है। ये मनफी मौसमी हालात जैसे घने धुंध के दौरान काबिल एतमाद ट्रेन ऑपरेशन को भी तकवीत देता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए आज मिशन स्ट्रिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निज़ाम में से एक बनकर उभरा है, जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वज़ा किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वज़ा किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाती तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाती सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वज़ीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायज़ा लिया जिनका मकसद ज़्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग इंतज़ामी निज़ाम कायम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: IMD के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जज़ायर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरिकी भारत के बाज़ इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज़ झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज़्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सोमिया शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेम्बरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेम्बरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर में 30 जुलाई को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिज़र्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन ज़खायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के ज़खायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उज़्रदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को 1 रोज़ा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। किया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज BJP ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिज़ाइन हाउसेज ने शिरकत की ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हमनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हमनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़रा मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारी का जायजा लिया। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बर्तानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दो देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा साइबर और एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में अंतरविभागीय सहयोग को बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20

0: जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिन्नर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8 विकेट पर 282 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muanpui Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism, and counter-terrorism.
2: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified, and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So, there are many, many aspects of it, including maritime security.
1: Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for the warm hospitality during his visit. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Omani counterpart, Badr bin Hamad Al Busaidi, in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focus on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defence and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Dr. Jaishankar highlighted that the discussions reflected the trust and strength of strategic partnership between India and Oman. Meanwhile, the Omani foreign minister said,

अभी आप सुन रहे थे श्री अनिमेश देव की आवाज में बंगाली गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री प्रभात मुखर्जी का संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री प्रभात मुखर्जी का संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा

0: on the Rewari-Delhi and Shakurbasti-Bathinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal passed at danger incidents and train collisions. The ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds. It also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston. In Wimbledon tennis, Germany's Alexander Zverev stormed into men's singles final beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:10 हुए हैं और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म. लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत हाजिर हैं आपके दो दोस्त. मैं हूं आपके साथ सविता और मेरे साथ हैं हमारी साथी.
2: मैं हूं आप सभी की साथी और दोस्त वंदना.
1: तो सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिवादन मेरे और वंदना की तरफ से. और आज हम कुछ खास गीत लेकर आए हैं. गीत ऐसे जिसे आप सुनेंगे तो आपको वो सदियां याद आएंगी कि वो सदी से लेके आज तक किस तरह से ये गीत उतने ही प्यारे उतने ही दिल के करीब बने हुए हैं. लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो सभी गीत लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और ऐसे ही गीतों की झड़ी रहेगी इस कार्यक्रम में. तो वंदना करते हैं आगाज पहले गीत के साथ. आगाज और अंदाज और आवाज तीनों ही बहुत खूबसूरत है.
2: बहुत बढ़िया. और तुम्हारी मेहनत पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है क्योंकि जितनी मेहनत तुमने आज इन गीतों को ढूंढ कर निकाल कर हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आने में की है ना, तो उसका रिजल्ट तो मैं भी देखना चाहती हूँ.
1: तो चलो शुरू करते हैं.

0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। और गीत जितना उम्दा उतना ही उम्दा इस गीत में किया गया नृत्य। क्या डांस किया है इस फिल्म में, इस गीत में रेखा जी ने, बहुत ही सुंदर। और जोड़ी तो वंदना है ही,
1: बेमिसाल,
0: सुपरहिट।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बात करें अगर इस फिल्म की, तो ये फिल्म भी 70 के दशक की एक ऐसी फिल्म रही जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। और जो किरदार निभाए गए इसमें, चाहे वो रेखा जी ने निभाया हो या अमिताभ जी ने, वो किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सविता। और वाकई कुछ फिल्में कहते हैं ना, शानदार तरीके से लिखी जाती हैं, उतने ही शानदार तरीके से उन्हें जब अभिनय का साथ मिलता है और कर्णप्रिय संगीत, जो कहते हैं कानों में उतरता हुआ संगीत, जब उसके साथ जुड़ जाता है, तो यकीनन वो फिल्में बेमिसाल बन जाती हैं। और जो कलाकार होता है ना, मुझे लगता है सविता, कभी कभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से, कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरता नहीं, अमर हो
0: हाँ
1: गया।
0: जी।
1: तो चाहे वो गायक हो या फिर जिसने पर्दे पर अभिनय किया हो, वो सभी लोग हमारे जहन में जब जब ये गीत सुनते हैं या फिर फिल्म देखते हैं, एक बार फिर से वो यादें ताजा हो जाती हैं।
0: जी हाँ, सही कहा। 1978 में ये फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, और गीत लिखे अनजान ने, और अनजान ने गीत कुछ इस तरह से जानबूझ के लिखे हैं कि वो हर दिल अजीज बन गए हैं। तो चलिए अब एक और ऐसा ही इसी दशक का गीत सुनवाते हैं आपको, और ये गीत भी बहुत ही खूबसूरत है और फिल्म भी बहुत खूबसूरत है। बड़े लोग जो हैं, अगर बात करेंगे आप इस फिल्म की, तो बड़े लोग इस फिल्म के कायल थे, और इस फिल्म का जो एक सीन है वो तो हर किसी के दिल पर आज भी राज करता है। फिलहाल गीत सुनिए, उसके बाद बात करते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आवाज़ें लता किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी साहब की। और देखिए तीन जो हैं वो मेल सिंगर लिए गए हैं लेकिन फीमेल सिंगर सिर्फ एक ही है वंदना। देखा तीन पर भारी एक,
1: बिल्कुल तीन पर भारी हमारी एक प्यारी सी नारी है ना।
0: जी बिल्कुल। और फिल्म की अगर बात करें तो ये फिल्म एक ऐसे रिश्ते की पहचान रही, एक ऐसे रिश्ते को उसने पर्दे पर बुना जिसमें एक पूरा परिवार जो कि बिखर गया था लेकिन फिर भी वो एक साथ रहा। किस तरह से वो मिला, एक दूसरे को कैसे पहचाना, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाया था कि इंसानी प्रेम किसी भी धर्म, किसी भी जात या किसी भी बात से ज़्यादा बड़ा होता है। और तीन भाई जो अलग अलग जगह पले बड़े, उनकी परवरिश बिल्कुल अलग तरीके से हुई लेकिन एक समय पर जाकर जब वो तीनों मिले तो किस तरह से उनके बीच की जो रिश्ते की जो खास बात रही वो ये रही कि वो तीनों भाई एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। उससे पहले वो दोस्त बन गए और दोस्ती के बाद जब उन्हें रिश्ते का पता चला तो वो रिश्ता और भी खास हो गया, क्योंकि जब किसी भी रिश्ते में दोस्ती आ जाती है, दोस्ती जुड़ जाती है तो वो रिश्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही अजीज बन जाता है।
1: और कहते हैं ना हर रिश्ते में जो है अगर शुरुआत दोस्ती से की जाए तो रिश्ता सांस लेने लग जाता है सविता। और कोई भी रिश्ता हो आपका, आपके जो कहते हैं ना समाज के एक टाइटल लगे हो किसी भी रिश्ते में, चाहे पति पत्नी है, भाई बहन है, दोस्त है, साथी है, लेकिन जहां दोस्ती का पुट आ जाए तो समझ लीजिए रिश्ता जिंदा है, रिश्ता बहुत खूबसूरती से सांस ले रहा है।
0: और यही इस फिल्म की खास बात रही। फिल्म की खास बात और आपको बताएं कि परवीन बॉबी जो कि इस फिल्म की एक हीरोइन थी उस समय एक बड़ा नाम हुआ करती थी, नीतू सिंह और साथ में शबानाज में, तीनों हीरोइनें उस समय अपने करियर के चरम पर थी। और बात करें अगर परवीन बॉबी के कॉस्ट्यूम की तो जो गीत है माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस, ये जो गीत है इसे परवीन बॉबी ने जो लाल रंग की ड्रेस पहनी है, कहते हैं कि इसके बाद इस ड्रेस को कई और फिल्मों में भी रिक्रिएट किया गया लेकिन वो जादू उतना नहीं चल पाया जो इस फिल्म में इस गीत के जरिए परवीन बॉबी की जो ड्रेस थी वो इतनी प्रसिद्ध हुई। और माने कि जब हम किसी भी फिल्म या किसी भी स्टार की बात करते हैं तो उसमें जो खास बात होती है वंदना, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो या उसका कोई डायलॉग हो, वो लोगों के जहन में बहुत समय तक रहता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि जैसा वहाँ पर दिखाया गया था, जैसा वहाँ बताया गया, हम भी वैसा कुछ ड्रेस बनवाने की कोशिश करते हैं अक्सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इमिटेट करते हैं यानी कि उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं,
1: बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है सविता कि चाहे अभिनेता हो या फिर ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया फॉलो करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियन लीडर्स भी बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो वहाँ पर उन पर जिम्मेदारी भी आ जाती है कि वो कुछ ऐसा परोसें जो सभी की बेहतरी के लिए अगर हो तो बहुत बढ़िया बात हो जाए।
0: फिलहाल तो हम परोसते हैं एक ऐसी बात कि हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके संदेश कार्यक्रम लेते हैं। सबसे पहले वो संदेश लेंगे जिसमें आपको और हमें जिन्होंने चुन लिया है, सुन लिया है और उन्होंने शुरुआत से कार्यक्रम में हमारा साथ दिया है। सबसे पहले हमारे पास ये संदेश आया है नवी हसन का जो हमें मारहरा दरवाजा एटा से लिखते हैं। नबी हसन अब्बासी और इनके साथ पूरा अब्बासी परिवार जुड़ा हुआ है और ये कहते हैं कि सविता जी, वंदना जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत से हैं और आपके साथ जुड़े हुए तो वाकई हम बिल्कुल दुरुस्त हो गए। आपका जो संदेश है वो और अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। संदेश के साथ जुड़े हुए हैं सतीश अनेजा जी और साथ हैं बिमला अनेजा जी, ये हमारे साथ हमेशा ही बने रहते हैं। चंडीगढ़ सिटी से इन्हें संदेश लिखकर भेजा है और नमस्कार दिया है और कहा है कि इंद्रप्रस्थ चैनल से इन्हें बहुत बहुत प्रेम है, तो बस यही प्रेम आप हमेशा बनाए रखिएगा क्योंकि हमें आपके इस प्रेम की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास अगला संदेशा जो आया है ये आया है अहमद भाई फूलवाले का जो कि पूरा फूलवाले परिवार हमारे साथ जुड़ा है जो कि छोटी बलिया मुंबई करजत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये संदेशा हमें मिला है सुरेश खुराना का। सुरेश खुराना के साथ हमारे पास ये संदेशा आया है टीडी मल्होत्रा का जो कि हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से संदेशा भेजते हैं। इनके साथ इनके कई दोस्त हैं, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। तो वहीं कालका से हमारे पास संदेशा मिला है हमें शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा का। संदेशे के साथ हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, लिखकर भेजने वाले हैं गांव कल्याण बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में ये जो अगला नाम शामिल कर रहे हैं, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से संदेशा मिला है हमें हिमकेश्वर साहू और पूरे साहू परिवार का। राजपाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, सोमदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हमें पंजाब पटियाला से संदेशा भेज रहे हैं, उनके साथ पूरा परिवार है। जावेद अख्तर भी हमें संदेशा भेज रहे हैं और इन्होंने पहले कह दिया कि कार्यक्रम आपका सुन रहे हैं लेकिन आप इसे शुभ रात्रि भी समझ लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अहमद भगवान हमारे साथ हैं, अनिल मोहन जी हैं हमारे साथ जो कि मुल्तानी धांडा से हमें संदेशा भेजते हैं पहाड़गंज दिल्ली से, अनिल मोहन है, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक हमारे साथ जुड़े हैं। तो नारायण खर्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वंदना जी आप ही के शहर से हैं, वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, ये एयरपोर्ट रोड से लिखकर भेज रहे हैं। नारायण खर्चे, ललिता और कार्तिक ये सभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हाजी अली मजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नारायण खर्चे के अलावा दिलावर खान जो कि रघुवीर नगर दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं, इनके साथ भी पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। संदेश के साथ मुकेश बत्ता जुड़े हुए हैं जो कि हमें कनेरा मोहल्ला पटियाला से संदेशा भेजते हैं। तो संदेशा हमें मिला है ये लिखने वाले हैं गुन्नौर से आदिल कमर तकदीक और अली मजहर अली जो कि कह रहे हैं कि सविता जी और वंदना जी को हमारा प्यार भरा आदाब और कार्यक्रम इन्हें भी बहुत पसंद आ रहा है, परिवार के साथ बैठकर कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बोधराज खोरवाल जो कि संदेशा भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है। सतीश अनेजा जी का एक और संदेशा हमें मिल गया है। पोटिया कला दुर्ग से हमें संजय साहू जी का संदेशा मिला है, ये भी परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अनिल मोहन जी और किशन सपकाल का भी संदेशा मिला है। किशन सपकाल जी भी हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं जो कि हमें बीड शहर शास्त्री नगर से संदेशा भेजते हैं और इनके साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो आप जब हमारा परिवार बन जाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में गीतों की गति को भी बढ़ा लेते हैं।

0: मनहर दास और अनुराधा पोडवाल की आवाज में गीत आपने सुना फिल्म अमृत से। और फिल्म अमृत की अगर बात करें वंदना, एक ऐसे मुद्दे पर ये फिल्म बनाई गई थी जहां पर ये दिखाया गया था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें जो है किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ प्यार और सम्मान की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर बनी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल ने इसमें काम किया और स्मिता पाटिल की ये जो फिल्म है वो आखिरी फिल्म मानी जाती है क्योंकि ये उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी।
1: और बहुत ही बढ़िया, और ये एक संदेश भी देती है कि माता पिता देखिए कितनी दिक्कतों परेशानियों अभाव के बावजूद आपको इतने अच्छे से पालते हैं जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला। लेकिन वही बच्चे जो हैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को जब ट्रीट करने की बारी आती है, रख रखाव की बारी आती है, तो कैसे अनदेखा कर देते हैं। और एक चीज होती है सविता, कर्माज
0: जी, वो बिल्कुल वापस जरूर आपको मिलते हैं, जो आप देंगे वो आपको दोगुनी गति से मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो ये सीख जो थी फिल्म के अंत में बहुत अच्छी थी। और उस समय की फिल्मों की यही खासियत होती थी सविता कि कोई भी फिल्म जो है ना वो बेवजह नहीं बनती थी। हर फिल्म के पीछे कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई सीख होती थी। और चूंकि वो पर्दे पर इतने बढ़िया तरीके से उकेरी जाती थी कि वो समाज को एक बहुत सुंदर संदेश दे के जाती थी
0: जी। और जो समझ जाता था वो जिंदगी में तर जाता था, नहीं तो पता ही है कश्ती बीच में तो डोलती ही रहेगी। फिलहाल तो कार्यक्रम में अब एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जिस फिल्म से एक बेहद ही धमाकेदार फिल्मी फलक पर सितारे ने दस्तक दी और वो सितारा जब तक रहा तब तक चमकता रहा।

साल 1973 में आई फिल्म बॉबी और बॉबी से नवोदित कलाकार ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया का आगाज हुआ और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन अपने अपने किरदार को निभाने में कामयाब रहे। तो वहीं उसके बाद अगर बात करें तो चिंटू यानी कि चिंटू जी

0: एक और बड़ा पॉपुलर हुआ था झूठ बोले कौवा का, है ना।
1: फिल्म के पूरे ही गीत वंदना जितने भी सुने
0: ऑल टाइम हिट रहे।
1: एक सैड सॉन्ग भी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, और अक्सर अगर आज भी उस गीत को आप यहाँ से अगर हम प्ले करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे रहेंगे जो इस गीत को सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। तो इनके गीत जो हैं वो 70-80 के दशक में कुछ ऐसे बने कि वो लोगों के दिल को आज भी छू जाते हैं। तो एक ऐसे ही गीत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ नाम ले लेते हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके हमें अभी अभी संदेश मिले हैं। ये संदेश मिला है हमें रियासत हुसैन का, जो कि हमें जसपुरा उत्तराखंड से संदेश भेजते हैं और पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। तो वहीं प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं और ये हैं कुरासिया कलारी से संदेश भेज रहे हैं हमें इंद्रभान सिंह, और सुदर्शन मुखी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। तो आप सभी के लिए एक और गीत

0: जी हाँ, कुर्बानी फिल्म का ये गीत जो बहुत ही चर्चित भी रहा, लोकप्रिय रहा और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। कुछ ऐसे ही गीत हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपके लिए लेकर आएं। और अब बातों ही बातों में कब हम आखिरी गीत की तरफ आ गए हैं वो हमें पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल। और सविता देखो, इन गानों की विशेषता ये रही कि जो भी लिरिक्स लिखे गए ना, चाहे बात प्यार की हो, इजहार की, इकरार की या फिर तकरार की, बहुत मीनिंगफुल रहे ये गीत।
0: जी,
1: यही वजह है कि ये गीत ऑल टाइम हिट थे, हिट हैं और हिट रहेंगे।
0: तो चलिए, आपको अब कार्यक्रम का एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन सा गीत आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ और सुनवाते हैं आपको ये गीत। और अब मुझे और वंदना को इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार,
1: बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय मध्यरात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कोयला मंत्रालय ने कल वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण तथा 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां खोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश में वाणिज्यिक कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अब से थोड़ी देर में रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को, प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज का सफर आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है उस तिगड़ी को जिसे हिंदी सिनेमा का अमर अकबर एंथनी कहा जाता है। एक ऐसा संगम जहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, वेस्टर्न रॉक और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन एक साथ मिलकर जादू रचते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोसा, यानी शंकर एहसान लॉय की। तो चलिए इस खास शो की शुरुआत करते हैं उस गाने से जिसने साल 2001 में ना सिर्फ युवाओं की धड़कन बदल दी बल्कि बॉलीवुड म्यूजिक का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक।

सचमुच जब ये गाना आया था तो ऐसा लगा जैसे हिंदी सिनेमा के संगीत में एक ताजी हवा का झोंका आ गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन तीनों दिग्गजों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन तीनों का बैकग्राउंड इतना अलग है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी एक साथ आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शंकर महादेवन की। मुंबई के चैंबूर में जन्मे शंकर एक तमिल अय्यर परिवार से आते हैं। बचपन से ही संगीत रग रग में बसा था। 5 साल की उम्र से वीणा बजानी शुरू कर दी थी। पंडित श्रीनिवास खाले जैसे महान संगीतकार से शास्त्रीय संगीत सीखा। लेकिन किस्मत का मोड़ देखिए, शंकर कोई फुल टाइम म्यूजिशियन नहीं बनने जा रहे थे। उन्होंने बकायदा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और ओरेकल वर्जन 6 पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके दिल में सुर बसते हों उसे कोडिंग की दुनिया कैसे रोक सकती है। शंकर ने नौकरी छोड़ी, जिंगल्स गाने और कंपोज करने शुरू किए। इसी जिंगल्स के शुरुआती दौर और फिल्मी सफर की शुरुआत में उन्होंने अपनी बेमिसाल बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शास्त्रीय संगीत की समझ और यूथ की नब्ज पकड़ने की उनकी कला इस गाने में साफ दिखती है, जिसने दिल चाहता है एल्बम को डांस एंथम बना दिया था। सुनिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में, कोई कहे कहता रहे।

आज भी जब ये गाना सुनो तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। ये तो थी शंकर महादेवन की कहानी। अब बात करते हैं इस तिगड़ी के दूसरे स्तंभ की, एहसान नूरानी। एहसान यानी इस ग्रुप के रॉक स्टार। एहसान का झुकाव हमेशा से वेस्टर्न म्यूजिक और गिटार की तरफ था, लेकिन लॉस एंजल्स के प्रतिष्ठित म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट GIT से गिटार और वेस्टर्न म्यूजिक की पढ़ाई की। मुंबई लौटकर उन्होंने पेगासस जैसे लोकल रॉक ब्रांड्स में काम किया और फिर विज्ञापनों की दुनिया में जिंगल्स बनाने लगे। आपको बता दूं, एहसान भारत के इकलौते ऐसे गिटारिस्ट हैं जिनके नाम पर दुनिया की सबसे मशहूर गिटार कंपनी फेंडर ने एक सिग्नेचर गिटार सीरीज लॉन्च की है, द एहसान नूरानी फेंडर स्क्वायर। और इसी जिंगल्स की दुनिया में एहसान की मुलाकात हुई तीसरे जीनियस से, लॉय मेंडोसा। दिल्ली के एक स्कूल में संगीत सिखाने वाले लॉय

पियानो, बास गिटार और हारमोनिका के जादूगर हैं। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक सिद्धार्थ बसु ने अपने मशहूर क्विज शो क्विज टाइम का टाइटल ट्रैक बनाने के लिए दिया था। इसके बाद लॉय ने दूरदर्शन के आइकॉनिक शो द वर्ल्ड दिस वीक और शाहरुख खान के पहले टीवी सीरियल फौजी का टाइटल ट्रैक भी कंपोज किया। जब लॉय मुंबई आए तो उनकी और एहसान की जोड़ी बनी। दोनों जिंगल्स बनाते थे और उन जिंगल्स में हिंदुस्तानी क्लासिकल का तड़का लगाने के लिए वे बुलाते थे एक युवा सिंगर को, जी हाँ, शंकर महादेवन को। यहीं से पड़ी उस ऐतिहासिक तिगड़ी की नींव। तो चलिए इनके इसी शुरुआती दौर के एक बेहद खूबसूरत और रूहानी गाने को सुनते हैं जिसने इनके करियर को एक नई दिशा दी। फिल्म मिशन कश्मीर से बुमरो।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा सिर्फ और सिर्फ शंकर एहसान लॉय के नाम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। दोस्तों, बुमरो गाने ने इन्हें मुख्यधारा के सिनेमा में स्थापित कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऑफिशियल तिगड़ी के रूप में इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी मुकुल एहसानंद की 10, जो कि 1997 में आई थी। बदकिस्मती से डायरेक्टर मुकुल आनंद की अचानक निधन के कारण वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई और बंद हो गई। लेकिन उस फिल्म का एक गाना जो रिलीज हुआ था वो रातों रात एक नेशनल एंथम बन गया। सुनो गौर से दुनिया वालों, इस गाने ने साबित कर दिया था कि ये तीन दिल एक जान बनकर धमाका करने आए हैं। इसके बाद उन्होंने शूल और दिल लगी जैसी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट दिल चाहता है से आया। इस तिगड़ी के संगीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधे आपके मिजाज को बदल देता है, चाहे माहौल सूफियाना हो या फिर एकदम झूमने का। इनका म्यूजिक कभी फेल नहीं होता। चलिए इसी मस्ती और एनर्जी से भरे इनके एक और ब्लॉकबस्टर ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, जो अलीशा चिनॉय और शंकर की आवाज में एक कमाल का फ्यूजन है। फिल्म झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक।

क्या बात है। अगर आप आधी रात को भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन गीतों को एंजॉय कर रहे हैं तो पैर पक्का थिरकने पर मजबूर हो गए होंगे। लेकिन इस मस्ती के बीच शंकर एहसान लॉय दिल के उस कोने को भी छूना जानते हैं जहां थोड़ी सी उदासी और तन्हाई छिपी होती है। फरहान अख्तर की फिल्मों के लिए इनका म्यूजिक हमेशा से स्पेशल रहा है। आइए सुनते हैं दिल चाहता है का वो गाना जो आज भी हर उस इंसान की प्लेलिस्ट में होता है जो अकेलेपन में अपने जज्बातों को टटोलता है।

दिल चाहता है कि भारी सफलता के बाद शंकर एहसान लॉय बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बन चुके थे। अब इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी धर्मा प्रोडक्शंस के करण जौहर ने इन्हें अपनी अगली बड़ी फिल्म के लिए चुना। फिल्म थी कल हो ना हो। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत एक कल्ट क्लासिक बन चुका है, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस फिल्म के निर्देशक निखिल आडवाणी और करण जौहर को टाइटल ट्रैक के लिए एक ऐसी धुन चाहिए थी जो बेहद भावुक हो। लॉय एक दिन पुणे के एक कैफे में बैठे थे और अचानक उनके दिमाग में एक धुन आई। उन्होंने तुरंत उसे गुनगुनाया और रिकॉर्ड किया। जब शंकर और एहसान ने इसे सुना तो उन्हें लगा कि यही वो जादुई धुन है। इस गाने यानी कल होना हो के लिए शंकर एहसान लॉय को उनके करियर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन मिला था। साथ ही इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए आया। आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में सजा ये गीत।

सचमुच चाहे आप जो भी बोलें, कल हो ना हो ये गीत दिल को छू ही जाता है। अब बात करते हैं साल 2005 की। निर्देशक शाद अली अपनी फिल्म बंटी और बबली बना रहे थे। पहले इस फिल्म के लिए एआर रहमान को चुना गया था, लेकिन वो व्यस्त थे। तब ये प्रोजेक्ट शंकर एहसान लॉय के

अलीशा चिनाई, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म बंटी और बबली से ये गीत। अब पुरस्कारों की बात करें तो इनकी झोली हमेशा भरी रही है। नेशनल अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा साल 2019 में भारत सरकार ने संगीत में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए शंकर महादेवन को पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये पूरे ग्रुप और भारतीय संगीत जगत के लिए एक बेहद गर्व का क्षण था। इनकी दोस्ती और काम करने का तरीका भी कमाल का है। तीनों के बीच कभी भी ईगो आड़े नहीं आता। शंकर का क्लासिकल, एहसान का रॉक और लॉय का सिंक फ्यूजन मिलकर एसीएल सेल का सिग्नेचर साउंड बनाते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा गाना जो हमें सिखाता है कि जिंदगी को खुलकर कैसे जिया जाता है। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से एक ऐसा गाना जो आज भी हर रोड ट्रिप की जान है।

शंकर एहसान लॉय सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास है जो हमारे सुख दुख प्यार और तन्हाई के हर पल में हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद है कि आपको इनके जीवन करियर और इनके शानदार अवार्ड्स के सफर की ये दास्तान पसंद आई होगी। मैं आपकी दोस्त कीर्ति अब आपसे विदा लेती हूँ सुरों का सफरनामा प्रोग्राम से। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुनहरे में।

0: रात्रि के 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद ये जत्था आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे मैं आपकी दोस्त कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, जी हाँ, ओल्ड हिल्नी सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म द ट्रेन के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत आर डी बर्मन का है और बोल आनंद बख्शी के हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस गीत को भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक बार कवर और रीमिक्स किया गया है, ये इतना सुपरहिट गीत है। तो चलिए मिलकर आनंद लेते हैं।

अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज में, फिल्म मेरे अपने जो कि 1971 में आई थी। इस गीत को मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखा था और इसका संगीत सलिल चौधरी ने तैयार किया था।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गानों में से एक है। ये गीत 1973 की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात का हिस्सा है और इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। आर डी बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया था और आवाज आशा भोसले तथा मोहम्मद रफी ने दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस गाने में गिटार की जो मशहूर धुन इस्तेमाल की गई थी उसे आर डी बर्मन ने एक कैनेडियन गीत हुश हुश स्वीट शार्लेट से प्रेरित होकर बनाया था।

अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं जो कि भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है और भारतीय सिनेमा के सबसे सदाबहार भाई बहन के गानों में से एक है। जी हाँ, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो कि 1971 में आई थी, इसी फिल्म से आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं। और ये गीत फिल्म में दो बार गाया गया था। पहला वर्जन लता मंगेशकर जी ने गाया था जिसे फिल्म में जीनत अमान पर फिल्माया गया, और दूसरा वर्जन किशोर कुमार ने जो देवानंद पर फिल्माया गया था। तो आपको सुनवाने जा रहे हैं हम किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

इस पंक्ति पर मुहावरा भी बन गया कि अगर बहन भाई की बात आती है तो सिर्फ यही लाइन आती है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। खैर, अब अगला गीत जो आपके लिए आ रहा है वो जिंदगी पर है। जी हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिल्म अंदाज से हिंदी सिनेमा का सदाबहार गीत है और इसे किशोर कुमार ने गाया है, बोल हजरत जयपुरी ने लिखे थे और ये गीत राजेश खन्ना हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के बाद अगला गीत जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं वो है मुकेश की आवाज़ में फिल्म आनंद का। जी हाँ, और ये जो गीत है इसमें

संगीत सलिल चौधरी ने दिया था और योगेश गीतकार जो हैं उन्होंने इस गीत को लिखा था। और दोस्तों आपको बता दें, इस गीत के पीछे की एक छोटी सी बात, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जानबूझकर लेखक गुलजार को निर्देश दिया था कि वे फिल्म की शुरुआत इस गाने से करें ताकि दर्शकों को तुरंत पता चल जाए कि मुख्य किरदार आनंद की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। और ये ही तो एक कला है जो दर्शकों को इस पर्दे पर आई फिल्मों से, गीतों से बांधती है। तो चलिए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म सिलसिला से, जो कि 1981 में आई थी और बेहद लोकप्रिय गीत है देखा एक ख्वाब। दोस्तों, इसकी शूटिंग एम्स्टर्डम के मशहूर कुकनहॉफ, ट्यूलिप गार्डन और कश्मीर के पहलगाम में हुई थी। ये गाना डॉक्टर करण सिंह की एक डोगरी एल्बम से प्रेरित है और आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग का लोकेशन खुद अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया था क्योंकि वे पहले भी वहां जा चुके थे। आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत। संगीत शिवहरि का था और बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे।

ऐसे सदाबहार गीत सुनकर कई बार लगता है कि काश वक्त यहीं रुक जाए और इन गीतों के बाद जो समा आने वाला है वो ना आए और यही गीत हम हमेशा सुनते रहें। अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म मेरे नसीब से। और ये गाना 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब का है। जी हाँ, मनमोहन देसाई जो कि इस फिल्म के निर्देशक थे। इस गाने की धुन भले ही भारतीय संगीत पर आधारित थी लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिदम और क्लब सिंथ बीट्स का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि 1980 के दशक की शुरुआत में पारंपरिक संगीत और मॉडर्न डिस्को पॉप को जोड़ने वाला ये एक अनोखा गाना बन गया था। और दोस्तों, गाने के अंत में एक आवाज़ सुनाई देती है जो बैकग्राउंड डांसर्स का जोश बढ़ाने के लिए, दैट इज एवरीबॉडी कम ऑन, चिल्लाती है। ये आवाज़ किसी सिंगर की नहीं बल्कि खुद निर्देशक मनमोहन देसाई की थी जिन्होंने गाने में एक कमर्शियल और वेस्टर्न एनर्जी जोड़ने के लिए ऐसा किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब समय है इस कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म शराबी से। और ये सदाबहार गानों में से एक है, 1984 में ये फिल्म आई थी। आइए सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने के दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें एयर लाइव न्यूज 24x7 पर। और 2:10 पर गीत बहार कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। फिलहाल रात्रि के 2:00 हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों के प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमरीका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए, जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वॉन्ग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland yesterday, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher

0: इसी के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है।

0: न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा है कि जनवरी 2025 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अमरीका और अन्य प्रमुख दानदाताओं द्वारा सहायता में कटौती के कारण अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी है और दुनिया भर में कार्यक्रमों को सीमित करना पड़ा है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के विदेश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के इंगलवुड स्थित लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल गीत कार्यक्रम। प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। माफ कीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में प्रस्तुति मिनी एन की।

अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कार्यक्रम में मिनी एन का राग कल्याणी।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक्षम वत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026, सुबह के 4:54 और 22 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, प्रस्तुत है इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय 5:20 है। आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम। 5:30 पर देशभक्ति गीत हिंदी फिल्मों से आप सुनेंगे।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के उपरांत 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप राहुल संस्कृतायन के जीवन की प्रसंग सुनेंगे। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ प्रसारित होगा, जिसमें आप बालकांड का भाग 113 सुनेंगे। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सात बजकर 30 मिनट का समय संगीतिका कार्यक्रम का रहेगा। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये संक्षिप्त जानकारी थी। हम आपको बता दें 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। हिंदी समाचारों के उपरांत 5:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। वहीं न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। वहीं बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरने उत्पन्न खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों में निमंत्रण भेजा गया है। ये सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस के इंगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 2:30 पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland today. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Modi arrived in Auckland yesterday on the third and final leg of his three-nation tour after concluding his successful visits to Australia and Indonesia. In a special gesture, New Zealand Prime Minister personally received Mr. Modi at the airport. Members of the Indian community were also turned out in large numbers to accord him a warm welcome. Prime Minister Modi praised the Indian diaspora in New Zealand for preserving India's rich cultural heritage across generations and continents. In a series of social media posts, Mr. Modi also lauded the cultural performances presented during the community reception, saying that they reflected India's rich diversity and civilizational heritage. As India prepares to commission the indigenous stealth frigate Prahendragiri into the Indian Navy, Defence Minister Rajnath Singh has reaffirmed that India remains the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. Addressing a naval personnel during the Barakana in Vishakhapatnam yesterday, he said, "The Indian Navy is playing a vital role in safeguarding the nation's maritime interests amid an increasingly complex global security environment." The defence minister said that the growing geopolitical competition and the increasing presence of extra-regional powers have made maritime vigilance more important than ever. He said the Indian Navy is securing India's maritime borders, protecting vital sea lanes and safeguarding the country's interests across the region. External

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्ध ऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहां हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसी पोस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस तीन नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना ही ओके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़ें, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, डब्बे का भोजन यानी पैक्ड फूड अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें, और साथ में चीनी जो सफेद चीनी होती है उसे अपनी डाइट से हटा दें, रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के कार्यक्रम में